नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 8वीं तिथि, तदनुसार 29 मई 2026। हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

हम आपको बता देंगे, हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति जनजातीय सुरक्षा मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वो आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावणगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। मॉस्को में आयोजित इस बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कल अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ खेल और ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश में विश्व स्तरीय खेल अवसंरचना और अत्याधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रही है। अहमदाबाद वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
1: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। भारतीय जनता पार्टी ने केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। 76 वर्षीय केवल ढिल्लो पंजाब भाजपा के पहले जाट सिख अध्यक्ष होंगे। 2 बार कांग्रेस विधायक रह चुके केवल सिंह ढिल्लो वर्ष 2022 में भाजपा में शामिल हुए थे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा दहेज हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक दिन पहले उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। दिल्ली में वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारती
3: वंदन वार।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वंदनवार। आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का चिंतन। विद्वानों का कथन है, मुस्कान एक ऐसा उपहार है जिसे बिना कुछ खर्च किए भी किसी को खुशी दी जा सकती है। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रही हैं। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों पर झरोखा में। अब से कुछ ही पलों में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ का भाग 203। 6:45 पर संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला कर्नाटक संगीत पद्धति के राग। कलाकार हैं शकुंतला नरसिंहन। सुनिए इस श्रृंखला का 7वां भाग। प्रस्तुति है रूपाली रूपक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज शाम 6:45 पर। 7 बजे सुनिए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर वंदे मातरम एक जय घोष। सुनिए इस कार्यक्रम का भाग 30। लेखन है मिलिंद सबनीस का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे आज दोपहर 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक कार्यक्रम। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार पृथ्वीराज कपूर पर। प्रस्तुति है रमेश गोखले की। सुबह 10 बजे पिटारा में सुनिए हेलो फरमाइश। संवादन है मंदाकिनी जोशी का। प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की। 11 बजे सुनिए रंग तरंग कार्यक्रम। 12:05 से सजेगी यादों की महफिल। 1 बजे से तय करेंगे सुरीला सफर। 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3 बजे आज सुनिए हेलो सहेली। 7:00 कार्यक्रम में संवादन होगा चंचल वर्मा का। प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 4 बजे पिटारा में सुनिए गीतों भरी कहानी। कहानी है रिश्ते। लेखन है विधि जैन का। संपादन है काजल भद्रगी का। प्रस्तुति जुबैर खान की। 5:30 पर सुनिए तराने नए पुराने। 6:30 पर संध्या रंजन। 7 बजे सुनिए जयमाला कार्यक्रम। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिए गुलदस्ता। 8 बजे हवा महल में सुनिए झलकी एक दिन का प्यार। लेखन है V.M. आनंद का। निर्देशन है सुदर्शन कुमार का। 8:15 पर रात्रि चित्रलोक। 9 बजे सुनिए आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता पंकज कपूर पर। प्रस्तुति रमेश गोखले की। 10 बजे सुनिए छाया गीत। आलेख और स्वर है

तीगौर का, प्रस्तुति राघवेंद्र नेगी की, और 10:30 पर आप सुनेंगे ढलती जाए रात। ये था आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का झरोखा।

मर्मस्थल पर कैसी चोट खाकर और मर्मांतक पीड़ा की किस स्थिति में भरत, छोटे भाई शत्रुघ्न तथा दल बल सहित तीर्थराज प्रयाग पहुंचे हैं, इसकी कथा वो भरद्वाज ऋषि को सुना चुके हैं। अयोध्या से उनके साथ आया जनसमूह अब भरद्वाज जी का अतिथि है। इतने बड़े समाज के स्वागत सत्कार की ऋषि की चिंता देख सभी रिद्धि सिद्धियों ने उपस्थित होकर सारे प्रबंध कर दिए। वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंधित वायु प्रवाहित है, सबको सभी कुछ उपलब्ध है। भरद्वाज ऋषि की आज्ञा का आदर करने के लिए भोग ऐश्वर्य के सभी साधनों के साथ भरत रहे अवश्य, किंतु उन्होंने उनका स्पर्श तक नहीं किया।

0: श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में आजकल आप सुन रहे हैं शकुंतला नरसिम्हन द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम, जिसमें कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा की जा रही है। कल आपने सुना था राग दरबारी, आज प्रस्तुत है राग भैरवी।
1: संगीत सरिता के श्रृंखला में आपका एक और बार स्वागत है। आजकल मैं बता रही हूँ हिंदी भाषा में महाराजा स्वाति तिरुनाल की कुछ कृतियाँ, जिनमें उत्तर और दक्षिण का संगम है। स्वाति तिरुनाल थे दक्षिण के केरला प्रांत के, और इन कृतियों को गाने की विधि कर्नाटक पद्धति से जुड़ी हुई है, लेकिन साहित्य है हिंदी में और राग हैं हिंदुस्तानी पद्धति के। मैं राग वृंदावनी सारंग, दरबारी और धनाश्री में कृतियाँ पेश कर चुकी हूँ, तो लीजिए आज सुनाती हूँ भैरवी राग में एक रचना। उससे पहले महाराजा स्वाति तिरुनाल के बारे में दो चार शब्द और भी कह दूँ। स्वाति तिरुनाल और संत त्यागराजा, मुत्तुस्वामी दीक्षितर और श्यामा शास्त्री, जो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहलाते थे, सब समकालीन वाग्यकार थे। स्वाति तिरुनाल तिरुवांकूर प्रांत के महाराजा थे, और उन्होंने संगीत के क्षेत्र में अपने शिष्य नहीं तैयार किए। महाराजा थे तो शिष्य नहीं ले सकते थे शायद, लेकिन उनकी रचनाएं उतनी ही श्रेष्ठ माने जाते हैं जितने त्रिमूर्ति वाग्यकारों का। कहा जाता है कि वे अपनी मातृभाषा मलयालम के अलावा अंग्रेजी, हिंदी, मराठी, तेलुगु, तमिल, उर्दू और फारसी में भी बहुत ही निपुण थे। एक पुस्तक है ग्रेट मास्टर्स ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक, जिसमें स्वाति तिरुनाल का भी नाम शामिल किया गया है। उनके दक्षिणवासी होते हुए भी उन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में काफी रुचि और पांडित्य दिखाई। उत्तर के तीन मशहूर संगीतकार स्वाति तिरुनाल के दरबार में यानी कोर्ट म्यूजिशियन के रूप में जुड़े हुए थे। वे थे ग्वालियर के अलाउद्दीन और लक्ष्मण दास, और पंजाब के

सुलेमान। यह था सन 1829 से 47 तब की बात। स्वाति तिरनाल ने शास्त्रीय संगीत के बारे में एक पुस्तक भी लिखी, खास करके मोहिनीअट्टम और कथकली नृत्य के लिए इन्होंने काफी बंदिशें बनाई हैं। हाँ, यह बताना भूल गई कि स्वाति तिरनाल ने न केवल ध्रुपद बल्कि टप्पा भी कंपोज किए थे, लेकिन ये मिल नहीं रहे हैं आजकल। तो आज आपको सुनाना चाहती हूँ भैरवी राग में एक कृति जो कहरवा ताल में है। एक और बात यहाँ बताना चाहूँगी कि भैरवी जो दक्षिण में गाते हैं वो उत्तर भारतीय भैरवी से एकदम अलग है। कर्नाटक पद्धति में जो भैरवी गाते हैं उसमें काफ़ी ठाट के स्वर लगते हैं। मैं अब तो कृति जो पेश करने जा रही हूँ वह उत्तर भारतीय पद्धति के भैरवी राग में रचित है। तो सुनिए रामचंद्र प्रभु राग भैरवी में।

0: पैरवी पर आधारित था। आवाजें थीं लता मंगेशकर और दिलराज कौर की। कर्नाटक संगीत पद्धति में स्वाति तिरुनाल की हिंदी कृतियों की चर्चा के अंतर्गत ये था राग भैरवी।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता रूपा

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रही हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं प्रेसिडेंट फिल्म के इस गाने के साथ, केएल साइगल की आवाज में आरसी बुराल की बोल।

सब घोड़े का मुंह घेरा, घनी छाओ देखी जिस जा, उस जा पर काला डेरा। इतने में एक परियों की शहजादी उस जा आई, राजे के बेटे संग खेले यही उसके मन भाई। अच्छा, अब यही कहानी गाकर तुम्हें सुनाता हूँ।

0: अच्छा बच्चों, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बहुत देर तक आपस में दोनों जी भर कर खेले। दोनों ने खाए मिलजुल कर सेब, अनार और केले। अच्छा बच्चों, अगर तुम्हें वो शहजादी मिल जाए तो उसके साथ खेलोगे? वो बच्चों को बड़ी उम्दा उम्दा चीजें खिलाती है। कहो हाँ।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज पृथ्वीराज कपूर की याद का दिन है। अभी आपने उनके द्वारा अभिनीत फिल्म रुस्तम सौराब का गाना सुना। इस गाने को गाया था सुरैया ने, कमर जलालाबादी के बोल और सज्जाद हुसैन का संगीत।

0: आप सुन रहे थे हरिश्चंद्र तारामती। इस फिल्म से ये गाना हेमंत कुमार की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से बना ये गाना बोल थे प्रदीप के।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते

0: थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद

शमशाद बेगम और मुबारक बेगम की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना योगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। कार्यक्रम के बाकी गाने संतराल के बाद।

आप सुन रहे थे फ्लाइंग सर्कस फिल्म से ये गाना, कमल बुरात की आवाज में, योगेश के बोल रॉबिन मुखर्जी का संगीत। आज गीतकार योगेश की याद का दिन है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में कई बेहतरीन गाने लिखे। अगला गाना सजा है गीतकार योगेश की बोलों से, टार्जन और डेलीवे फिल्म से, महेंद्र कपूर और कमल बुरात की आवाजों में, रॉबिन बनर्जी के बोल।

0: अभी आप सुन रहे थे टार्जन और डलाइला फिल्म से ये गाना। और अब एक बहुत ही अहम सूचना।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे एक रात फिल्म से ये गाना, योगेश के बोल उषा खन्ना का संगीत। इसी के साथ आज का भूले बिसरे गीत कार्यक्रम संपन्न होता है।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हमेरा ही प्यार के। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बातों बातों में इस फिल्म के गाने के साथ, अमित कुमार और आशा भोसले की आवाजों में, योगेश के बोल राजेश रोशन का संग।

0: क्यों लगा
1: लगा
0: लगा
1: लगा के धूप में खिला है चांद, दिन में रात हो गई।
0: प्यार की मिला के सुने ही बात हो गई।
1: ओहो ओहो ओहो।

आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम सजा है योगेश के बोलो से। गीतकार योगेश को याद कर रहे हैं छोटी सी बात इस फिल्म के इस गाने के साथ। येसुदास की आवाज सलिल चौधरी के बोल।

0: येसुदास और आशा भोसले की आवाजों में आप सुन रहे थे ये गाना, योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

सखी रॉबिन फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना। मन्ना डे और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में योगेश के बोल, रॉबिन बैनर्जी का संगीत। इस कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं मेरे भैया फिल्म से, लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजों में योगेश के बोल सलिल चौधरी का संगीत।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

0: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया। कहा, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। और आईपीएल क्रिकेट में आज न्यू चंडीगढ़ में दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का सामना गुजरात टाइटंस से। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अवैध घुसपैठ और अन्य अस्वाभाविक कारणों से होने वाले कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति एक वर्ष में अपनी रिपोर्ट देगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे देश के बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसांख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी। और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
1: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तृणमूल कांग्रेस सरकार की आलोचना की और कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद स्थिति बदली है। उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की सराहना करते हुए कहा कि सीमा पर बाड़ लगाने के लिए 7 दिनों में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई।
2: भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन कच्छ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हरामीनाला और खाड़ी क्षेत्रों का दौरा करेंगे। ये क्षेत्र सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील माना जाता है। इस दौरान गृह मंत्री सीमा सुरक्षा बल के सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा करेंगे और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीमा सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। श्री शाह सीमा चौकी G7 का उद्घाटन करेंगे और बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे। श्री अमित शाह का पिछले 6 महीनों में कच्छ का ये

0: दूसरा दौरा है। रूस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मंच को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं अपनाए जा सकते। मॉस्को में आयोजित बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि जिम्मेदार देशों को यह तय करना होगा कि वे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों का साथ देंगे या उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
1: आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरों में से एक है। राष्ट्रपति पुतिन ने हाल ही में इसे बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रेखांकित किया है। उन्होंने महसूस किया है कि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सभी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञों को ध्यान देने की जरूरत है। ये मानवता के सभी मूल्यों पर प्रहार करता है। भारत खुद ही इस प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा है। अप्रैल 2025 में पूरी दुनिया ने जम्मू कश्मीर में 26 निर्दोष नागरिकों की जघन्य हत्या देखी है।
0: श्री डोभाल ने पश्चिम एशिया की स्थिति का उल्लेख करते हुए होर्मुज जलडमरू मध्य और लाल सागर जैसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों में व्यापार की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। इस दौरान उन्होंने रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगू से भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए नए प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को पार्टी का दिल्ली इकाई अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉ अर्चना गुप्ता को हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और श्री केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री अभिषेक देवराय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन नियुक्तियों के साथ ही श्री नवीन ने राज्यों और राष्ट्रीय स्तर पर नए पदाधिकारियों के चयन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केरलम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर आज विधानसभा को संबोधित करेंगे। ये 10 वर्षों बाद केरलम में नई यूडीएफ सरकार का पहला नीति संबोधन है। राज्यपाल के संबोधन के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। सदन राज्यपाल के संबोधन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए 1 जून को एकत्रित होगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने कल त्रिशा शर्मा हत्या मामले में भोपाल से गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरिबाला त्रिशा की सास और सेवानिवृत्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: भोपाल में एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा की मौत के मामले में सीबीआई ने कल रिटायर्ड जज और त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार किया। करीब 7 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने ये कार्रवाई की है। आज उन्हें सीबीआई कोर्ट में पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी से एक दिन पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी। कोर्ट का कहना था कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए उन्हें राहत नहीं दी जा सकती। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में त्रिशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वालों ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
3: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान

0: उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे आज बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद उपराष्ट्रपति दावटगेरे में यूनिवर्सिटी बीडीटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्लेटिनम जुबली समारोह में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। आज दौरे के दूसरे दिन वे विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। दौरे के पहले दिन देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय में राज्य मंत्री समूह और कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष ने की। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण एयरलाइंस को महंगे ईंधन और हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे परिचालन लागत बढ़ गई है। उधर उड़ानें बंद होने से इसराइल में रह रहे 40,000 से अधिक भारतीयों की चिंता बढ़ गई है। सीमित उड़ान विकल्पों के कारण यात्रा खर्च भी काफी बढ़ गया है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। पिछले 3 दिनों में यह दूसरी बार है जब अमरीका ने ईरान पर कार्रवाई की है। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला खेलेगी। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बनाई, जबकि गुजरात टाइटंस पहले क्वालिफायर मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से हार का सामना करना पड़ा। 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय महिला टीम ने 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। पहले मैच में भारत ने इंग्लैंड को 38 रन से हरा दिया। ये मुकाबला चेम्सफोर्ड स्थित काउंटी क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि अगले 5 वर्षों में वैश्विक तापमान रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में बादल गरजने और बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। कल रात राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बारिश ने उमस और भीषण गर्मी से राहत दिलाई। विभाग के अनुसार आज बिहार, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में तेज हवाएं चलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और कर्नाटक में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। हिंदुस्तान ने सीबीएसई प्रकरण में शिक्षा मंत्री के बयान को प्रमुखता दी है, समस्याओं का समाधान करेंगे, दोषियों को नहीं बख्शेंगे। राजस्थान पत्रिका ने 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों पर लिखा है, सरकार सख्त, पहली बार सेना पहुंचाएगी नीट के पेपर, हालांकि अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है। अमर उजाला ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को अहमियत दी है, सिद्धरमैया ने छोड़ी मुख्यमंत्री की कुर्सी, कर्नाटक में अब शिवकुमार का होगा राज। दैनिक ट्रिब्यून ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, ट्रॉमा केयर का अधिकार जीवन के अधिकार का अभिन्न अंग। न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 3 महीने के भीतर आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए हेल्पलाइन नंबर 112 पर शुरू करने और एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करने का निर्देश दिया है। जनसत्ता ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर सीमा सुरक्षा का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, आज भी सीमा पर भारत को अक्सर घुसपैठ और आतंकी हमलों का सामना करना पड़ता है। इसकी बड़ी वजह सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था के तार और निगरानी तंत्र का अपेक्षित स्तर पर मजबूत न होना माना जाता है। दैनिक जागरण ने मौसम में हुए बदलाव पर लिखा है, तेज हवा और वर्षा ने तोड़ा गर्मी का गुरूर। नवभारत टाइम्स ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन की खबर प्रथम

0: पृष्ठ पर दी है और फिर जिंदगी की शाम हो गई, थम गया अल्फाज का जादू, अलविदा बशीर बद्र। दैनिक भास्कर ने हार्वर्ड के एक शोध को विशेष खबर बनाया है, जीन क्लॉक बताएगी किस उम्र में थमेगी जिंदगी।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कृत्रिम जनसांख्यिकीय बदलावों पर केंद्र की उच्च स्तरीय समिति इस मुद्दे से निपटने के लिए कानून की आवश्यकता का आकलन करेगी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई का आह्वान किया, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और त्रिपुरा के लिए प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए। एयर इंडिया ने पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच इसराइल के लिए अपनी उड़ानें जुलाई के अंत तक स्थगित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

0: राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,
1: राजपुत्र आए, मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
2: इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था।

निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं, परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

0: वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाता।

0: जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
1: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
0: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
1: 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वागबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे, परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
2: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
3: मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
4: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली।

0: विशेष सखी 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
1: जन्मदिन तुम्हारा मिलेंगे लड्डू हम।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आज के पेड़ पे पक चुके हैं, जिंदगी के पेड़ पे पक चुका है आज का फल। तो कल के फल की गुठली हटाइए और आज के फल का मजा उठाइए। आखिर आज का फल कल से हमेशा मीठा होता है। शुरुआत हो रही है कल हो न हो फिल्म के इस गाने के साथ। सोनू निगम की आवाज, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 29 मई को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया में शांति बनाए रखने वाले सैनिकों के साहस और सेवा को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। साथ ही ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाती है।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे यंगिस्तान फिल्म से गाना। अरिजीत सिंह की आवाज में कौसर मुनीर के बोल, अजीत गांगुली का संगीत।

आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक बेहतरीन कलाकार का बर्थडे, जिन्होंने मकबूल, एक डॉक्टर की मौत, गांधी हल्ला बोल जैसी फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ इनका टेलीविजन सीरियल ऑफिस ऑफिस भी बहुत चर्चित रहा। हम बात कर रहे हैं एक्टर पंकज कपूर की। सुखविंदर सिंह और रंजीत बोराट की आवाज में आप सुन रहे हैं मटरू की बिजली का मंडोला। फिल्म से गाना गुलजार के बोल, विशाल भारद्वाज का संगीत।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अरिजीत सिंह की आवाज में सुन रहे हैं आप गाना डियर जिंदगी फिल्म से, कौसर मुनीर के बोल, अमित त्रिवेदी का संगीत।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे।

0: ये सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने सुनिए इस अंतराल के बाद।

उर्दू गजल को आसान और आम बोलचाल की भाषा में लोगों तक पहुंचाने वाले मशहूर शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हो गया। उनकी खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली गजलों का इस्तेमाल जुनून, मसान, जीरो और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में किया गया है। हमारी अधूरी कहानी के टाइटल ट्रैक की शुरुआत उनकी बेहद खूबसूरत गजल की पंक्तियों से शुरू होती है। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, वक्त कुछ मेरे चेहरे को पड़ जाएगा।

अरिजीत सिंह की आवाज में आप सुन रहे थे हमारी अधूरी कहानी फिल्म से ये गाना, रश्मि विराग के बोल, जीत गांगुली का संगीत। इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

0: दोस्तों हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। आज के फनकार में उनकी चर्चा जिनके बुलंद आवाज और रोबदार अभिनय की दुनिया कायल है।
1: मालूम होता है बदहवासी ने तुझे अंधा कर दिया है, हमारे इंसाफ और कानून को नहीं पहचानती।
2: अपनी दी हुई इस निशानी को पहचानिए दिल इलाही, याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में एक बार जो जी चाहे मांग लेना। आज मैं आपसे अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ।
1: लो देखो
2: अनारकली।
1: देखो ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत की सरहदों के पार ले जाएगी, और ये राज कि अनारकली जिंदा है तुम्हें राज रखना होगा, ताकि सलीम जिंदगी भर ये समझता रहे कि उसकी अनारकली मर चुकी।
2: ऐसा ही होगा, इसे जिंदगी देकर शहीशाह ने अपने इंसाफ को जिंदगी दी।
1: अनारकली बखुदा हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, अपने उसूलों के गुलाम है। एक गुलाम की बेबसी पर और करो की तो शायद तुम हमें माफ कर सको।
0: जिन्होंने भारतीय सिनेमा और रंगमंच को अपने उत्कृष्ट अभिनय से समृद्ध किया। रंगमंच और अभिनय के इतिहास पुरुष कहे जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, वो है आज के फनकार पृथ्वीराज कपूर।

पृथ्वीराज कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी कड़क आवाज, रौबदार भाव भंगिमाओं और दमदार अभिनय के बल पर लगभग 4 दशकों तक सिनेमा के दर्शकों पर राज किया।

0: सन 1960 में बनी फिल्म मुगले आजम में अकबर के किरदार को कालजयी बनाने वाले पृथ्वीराज कपूर आज भी फिल्मी दीवानों के दिलों पर राज करने वाले शहंशाह हैं। रोबीले शहंशाह का मुगले आजम फिल्म का ये संवाद भला किसे नहीं याद होगा।
1: सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुंघाना होगा ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दें।
2: मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा।
1: अगर ऐसा न हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम मनारकली तुझे जीने नहीं देंगे।
2: कनीज तो कब की मर चुकी है।

पंजाब के लायलपुर में एक जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्हें रंगमंच का चस्का पेशावर के एडवर्ड कॉलेज में पढ़ते समय ही लग गया था। 18 बरस में ही उनका विवाह कर दिया गया, लेकिन अपने 3 बच्चों को अपनी पत्नी के सुपुर्द कर वे पेशावर से सपनों की नगरी मुंबई आ गए और यहाँ वे इम्पीरियल फिल्म कंपनी से जुड़ गए। 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा में पृथ्वीराज कपूर ने सह अभिनेता का किरदार निभाया। सन 1933 में पृथ्वीराज कपूर कोलकाता के मशहूर न्यू थिएटर से जुड़ गए। 1933 में ही प्रदर्शित फिल्म राज रानी और 1934 में देवकी बोस की फिल्म सीता की कामयाबी के बाद पृथ्वीराज कपूर ने बतौर अभिनेता अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने न्यू थिएटर की कई फिल्मों में अभिनय किया, मिसाल के तौर पर 1936 की फिल्म मंजिल और 1937 की फिल्म प्रेसिडेंट। सन 1937 में आई फिल्म विद्यापति, जिसमें पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की खूब प्रशंसा हुई। रंजीत मूवी टोन के बैनर तले निर्मित 1940 में आई फिल्म पागल में उन्होंने एंटी हीरो की भूमिका निभाई। सन 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर के बाद पृथ्वीराज कपूर अभिनय की बुलंदी पर पहुंच गए।

1968 की एसएस वासन की फिल्म तीन बहुरानियां पृथ्वीराज कपूर के अभिनय की वजह से यादगार मानी जाती हैं। फिल्म तीन बहुरानियां में बच्चों के साथ डांस और मौज मस्ती करते नजर आते हैं पृथ्वीराज कपूर।

0: मुगले आजम में इस कलाकार ने शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के किरदार को अमर कर दिया। कितनी भी बार देखी ये फिल्म, हर बार उसी तन्मयता से देखी जाती है।
1: क्या इस लैला ही बागी का कसूर बख्शने के लिए तशरीफ लाए?
2: ये बदनसीब बाप से दुनिया शहंशाह कहती है, अपने रूठे हुए बेटे को मनाने आया है, उससे मोहब्बत मांगने आया है।
1: बेटे की मोहब्बत बर्बाद करके मोहब्बत चाहते हैं आप। शहंशाह बाप का भेस बदल कर आया।
2: शहंशाह रोया नहीं करते शेखू, बाप की आंखों में आंसू है। शेखू ये गरीब बाप शहंशाह अकबर के उसूलों से मजबूर है।
1: और सलीम अपनी मोहब्बत से।
2: शेखू मोहब्बत दिलों को फर्क कर सकती है, फौजों को नहीं। तुम्हारे जज्बात शहंशाह की बेपनाह ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते।
1: इसका फैसला जंग करेगी।
2: सलीम, शहंशाह के फैसले को जंग का इंतजार नहीं, जंग के नकारे की पहली चोब अनारकली की मौत का ऐलान कर देगी।

रंगमंच पृथ्वीराज कपूर का पहला प्यार था, इसीलिए वे 1931 में शेक्सपियर के नाटक पेश करने वाली ग्रांट एंडरसन थिएटर कंपनी से जुड़ गए। 1944 में उन्होंने अपनी लागत से खुद की ही थिएटर कंपनी पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। दीवार, पठान, गदर, दहेज, पैसा उनके प्रमुख नाटक थे। उनके अभिनय को उनके परिवार ने विरासत में पाया। पृथ्वीराज कपूर के बेटे हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता और निर्देशक राज कपूर की फिल्म आवारा में भी उन्होंने सशक्त अभिनय किया।

0: कपूर खानदान की कई पीढ़ियां एक साथ एक फिल्म में नजर आईं। फिल्म थी कल आज और कल। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और रणधीर कपूर।
1: टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक टिक।

दोस्तों रुपहले पर्दे पर अभिनय के कई बारीक पहलुओं को अपने सशक्त अभिनय से साकार करने वाले इस बेमिसाल फनकार को कैंसर जैसे भयंकर मर्ज ने घेर लिया और 29 मई 1972 को इस फानी दुनिया को वे अलविदा कह गए।

0: शोध आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है कि शोधन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: शोधन ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे की शोधन आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में।

0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हेलो फरमाइश कार्यक्रम एक ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम है जहां आप अपने पसंदीदा गाने सुनना पसंद करते हैं, हमसे बातचीत करना पसंद करते हैं, अपनी भावनाएं, अपने संदेश दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, क्यों है ना? तो आज इस हेलो फरमाइश में ऐसी ही हल्की फुल्की बातें हमने की हैं हमारे श्रोताओं से। तो शुरू करते हैं आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम और देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: हाँ जी, नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, हमारा नाम नरेंद्र कुमार पटेल है, हम बजहा गांव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं।
0: हाँ नरेंद्र जी, स्वागत है आपका।
1: जी, हम विविध भारती जो है सन 2000 सुन रहे हैं, कक्षा 2 में थे तब से।
0: अरे वाह, क्या बात है, कक्षा 2 में थे तब से लेकर अभी तक सुन रहे हैं।
1: जी, हमारे घर में ऐसा संस्कार था कि रेडियो हमारे चाचा लोग सुनते थे, जब हम लोग बैठते थे, खड़े खड़े चलते थे, परे परे चलते थे, तब से रेडियो सुनते थे, तो उसी माहौल में थे इसलिए सुनने लगे। खाना पीना बनता था, सभी लोग कम्बाइंड परिवार था, खाते थे और उधर टहलते थे, वही खेलते थे, तो रेडियो चलता रहता था।
0: तो आज तक सुनते हैं आप रेडियो?
1: जी जी, अब रेडियो तो नहीं रह गया, अब मोबाइल ऐप से सुनते हैं, हमेशा सारा दिन सुनते रहते हैं।
0: कैसा लगता है उस समय आप जब कक्षा 2 में सुनते थे या थोड़े बड़े हुए?
1: वो तब जी हम जो क्लास वर्क होता था शाम के करते थे, रेडियो चलता रहता था, अपना फेयर पूरा करते रहते थे, फिर खेत में टहलने जाते थे, गांव के अगल बगल पूरा हमारे चरी लगे हुए, भिंडी उर्दी, इतने समय गेहूँ कट गया है, बढ़िया हरियाली चारों तरफ है।
0: तो अब आप हरियाली के बीच में बैठकर रेडियो सुनते हैं मोबाइल ऐप के जरिए?
1: जी जी, वो रेडियो हम लेकर खेत के मेड़ों पर टहलते थे शाम समय, जो गाय भैंस चराया करते थे स्कूल से आने के बाद, तो बड़ा अच्छा लगता था पूरा कार्यक्रम जितना चलता है, भाते शुरू से सुबह से लेकर हम 11 बजे रात तक आपको बता सकते हैं।
0: तो हमारी पक्की लिसनर हैं आप।
1: यही जान लीजिए कि हम इस समय 36 साल के हैं, मान लीजिए हम 6 साल जब से, यानी हम बहुत संभाल हैं, सब से सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, और हमें हमारे इन सभी श्रोताओं पर फख्र है जो इतनी शिद्दत के साथ कार्यक्रम सुनते हैं और उसका जिक्र भी करते हैं। तो बताइए नरेंद्र जी, वैसे हाँ, आप
1: जी,
0: क्या जी, करते हैं, खेत में काम करते
1: जी,
0: हैं?
1: पढ़े लिखे हैं लेकिन अब इतने डेली वेज मजदूरी काम करते हैं, काम करने जाते हैं, इस समय गर्मी टाइम है, सुबह 6 बजे जाते हैं, 10 बजे चले जाते हैं, फिर 3 बजे 6 बजे तक उस टाइम हमारा जो है मोबाइल ऐप से विविध भारती हमेशा बजता रहता है, सुनते रहते हैं, अभी दोपहर में हम लगाने लगे।
0: काम कहाँ करते हैं?
1: गांव में अगल बगल में जो घर पक्के मकान बनते हैं उसी में।
0: बहुत अच्छा लगा नरेंद्र जी आपसे बात करके, बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: जी, हमें जो है थानेदार पिक्चर का एक गाना है, जीना है तो हंस के जियो, जीवन में एक पल भी रोना ना।
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम।
1: हेलो मंदा किनी जी।
0: नमस्कार
1: मैडम, खांजी पीर से जब्बार मोहम्मद।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: ये मैडम खांजी पीर उदयपुर से, झीलो की नगरी है उदयपुर, वहाँ से बोल रहा हूँ मैडम।
0: जी कैसे हैं आप, बताइए उदयपुर के बारे में बताइए। अभी गर्मी के मौसम में उदयपुर का क्या हाल है?
1: मैडम क्या कह रहे हैं, उदयपुर तो वैसे बहुत अच्छी नगरी है, झीलों की नगरी है।
0: जी
1: अभी 40 और 45 डिग्री के आसपास गर्मी है उदयपुर में।
0: अच्छा, गर्मी इतनी पड़ रही है?
1: जी मैडम, गर्मी तो है उदयपुर में, लेकिन यहाँ झीलें हैं, चारों तरफ झीलें फैली हुई है और हरियाली बहुत है, तो इससे कुछ गर्मी का असर कम रहता है।
0: जी
1: और काफी टूरिस्ट वगैरह आते हैं यहाँ, कई अच्छी जगह देखने लायक जगह है, यहाँ झीलें हैं काफी, क्या कह रहे, धार्मिक नगरी भी, कई दर्शनीय स्थल है, श्रीनाथ जी का मंदिर है, जगदीश जी का मंदिर है, और दो दरगाहें भी देखने लायक है यहाँ, मस्तान बाबा की दरगाह फतेहसागर के आसपास, और एक अंबावगढ़ पे भी एक गन शहीदा की दरगाह है, पहाड़ी पे काफी अच्छी दरगाह है, काफी जायरीन वगैरह आते हैं। उदयपुर से कुछ दूर श्रीनाथ जी का मंदिर भी बहुत फेमस है, यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और झीलें भी अच्छी है।
0: जी आपने उदयपुर की सारी दुनिया हमारे सामने साकार कर दी है कि टूरिस्ट
1: जी
0: जब
1: जी
0: आते हैं तो किन किन चीजों को देखकर जाते हैं।
1: जी
0: तो मुझे बताइए कि बकरीद का जो त्योहार है वो असल संदेश उसका त्याग है। आपने अपनी जिंदगी में कभी कोई ऐसा अपनों की खुशी के लिए त्याग किया?
1: मैडम, त्याग तो ये है कि गरीबों की मदद करना चाहिए, जो गरीब अन्य बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, करते हैं क्या।
0: जी
1: बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, और मैं फिल्म मर्यादा का गीत सुनना चाहता हूँ,
0: कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मोहम्मद रफी साहब का है, मोहब्बत के सुहाने दिन।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत चुना है आपने। चलिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: Robin.
1: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
2: मैम नमस्कार।
1: नमस्कार, नाम बताइए अपना।
2: जी मैम, मैं कृष्ण कुमार डाबी बोल रहा हूँ, गांव टोंकिया, जिला बालोतरा, राजस्थान से।
1: अरे
2: आपसे तीसरी बार बात हो रही है।
1: क्या बात है।
2: नियमित सुनते हैं बस आपके प्रोग्रामों को। अभी मनसा गीत शुरू हुआ, उसको भी मैं नियमित सुनता रहता हूँ। और अभी दो दिन पहले ही आपकी प्रस्तुति को सुना हूँ मैं।
1: जी क्या बात है। तो सुरीला सफर के लिए आप लिखते हैं कि नहीं लिखते फेसबुक पेज पर?
2: हाँ लिखता हूँ मैम, पर क्या कि दिन को एक बजे जो प्रोग्राम आता है उस समय क्या थोड़ा काम में बिजी होता हूँ, तो सोशल मीडिया पे थोड़ा कमेंट कम कर पाता हूँ। बाकी जब भी पोस्ट देखता हूँ तो उसके बारे में प्रोग्राम सुनता हूँ, तो लिखता जरूर हूँ मैं।
1: लिखा कीजिए ताकि हमें क्या उन संदेशों को पढ़ने में बड़ा आनंद भी आता है और श्रोताओं के विचार।
2: और पत्र भी भेजे अभी विविध भारती के स्टूडियो में।
1: अच्छा,
2: धीरे धीरे जैसे समय मिलेगा वैसे भेजते रहेंगे तो शामिल होते रहेंगे।
1: जी मनचाहे गीत के लिए बिल्कुल आपका स्वागत रहेगा हर कार्यक्रम में।
2: बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा।
1: जी बताइए थोड़ा मौसम के बारे में कि बालोतरा में कितनी गर्मी हो रही है।
2: बताइए कि मरुस्थली इलाका है तो इन दिनों तो गर्मियों के दिनों में मौसम कैसा होगा। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और तेज आंधी और गर्म लू से भरी हवाएं चल रही है, बस वही मौसम है रेगिस्तान में।
1: जी तो दिन भर जो गृहिणी है उनका वक्त तो घर की सफाई करने में निकल जाता होगा, क्योंकि जब हमारे
2: देखो
1: राजस्थान में जब आंधी तूफान आता है तो वो पूरा छप्पर फाड़ आता है। फिर
2: वही बात है कि सुबह जब घर की साफ सफाई होती है और शाम तक होते होते पूरा घर वापस रेत के कणों से और धूल से भर जाता है, क्या करें। सफाई तो करनी पड़ेगी सुबह शाम दोपहर, क्या ये तो दिन को थोड़ी गर्मी तेज रहती है, बाहर इधर उधर निकलना नहीं होता है क्योंकि गर्मी का मौसम है। और टेम्परेचर भी अभी अपने यहाँ इधर हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और ये सब बालोतरा साइड का कम से कम 46 से 47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, बस वही बात है।
1: गजब चल रहा है और भयंकर गर्मी के, इसमें अपना ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य का।
2: बिल्कुल और वैसे प्रोग्रामों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा कि जो भी प्रोग्राम इन दिनों आ रहे हैं बहुत अच्छे आ रहे हैं, और ये फोनिंग प्रोग्राम भी आ रहे हैं, आपने जो नए कुछ प्रोग्राम शुरू किए हैं उनका भी स्वागत है। और मैंने खास करके मैं छायागीत प्रोग्राम का बहुत सुबह और शाम को फिर ये वापस आता है 5 बजे रिपीट, तो मैं उसको सुनना जरूर पसंद करता हूँ क्योंकि मैं दो बार सुनता हूँ, कभी कभी नहीं सुन पाऊँ तो मिस हो जाता, तो फिर वापिस यूट्यूब पे जाकर कहीं कहीं मिल जाता तो सुन लेता हूँ।
1: क्या बात है, इतना पसंद है आपको छायागीत।
2: छायागीत में दीदी आप जो ये प्रोग्राम अपनी भावनाओं जो व्यक्त करती हैं और उस हिसाब से गीत भी उसी अनुरूप होते हैं, तो वो क्या कि फिर थोड़े दिल को छू लेने वाले होते हैं। और आपके समय जब प्रोग्राम आता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। बताइए कौन सा गीत सुनवाए आपको
2: दीदी। आज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का, उनका अपने जो संगीतकार जुड़ी थी उनका दिन है, तो उस उपलक्ष्य में मैं उन्हीं के संगीतबद्ध किया एक गाना सुनना चाहूंगा। हम जोली फिल्म से हैं, आशा जी और रफी साहब की बुलंद आवाज में गाना है, ढल गया दिन हो गई शाम, जाने दो जाना है।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
3: ढल

0: देना चाहते हैं मैडम के, मतलब ये जो अपना भारतवर्ष ये तो त्योहारों का देश है और सभी को मतलब अपने अपने त्योहार मनाने का अधिकार है, तो शांति और मतलब स्वभाव से त्योहार मनाए।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आप अपना त्योहार सुख और शांति के साथ मनाए, हम ये उम्मीद करते हैं। और आप हमारे पुराने श्रोता हैं, क्या क्या सुनना पसंद करते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों में?
0: विविध भारती के प्रोग्राम तो मैडम जो अभी 90 साल पूरे हुए हैं, तो हम तो 1980 से आकाशवाणी जुड़े हुए हैं मैडम।
1: 1980 से सुन रहे हैं?
0: हाँ 1980 से ही सुन रहे हैं, वो रेडियो पे प्रोग्राम सुनते हैं ज्यादातर, तो अभी भी मेरे पास रेडियो ही है।
1: तो आप बताइए कौन सा गीत सुन रहे हैं आपको?
0: ये रंजा फिल्म का गीत है, रफी साहब की आवाज में, ये दुनिया में फिल्म मेरे काम की नहीं।
1: बहुत ही सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम।
1: नमस्ते मैडम।
0: नमस्कार।
1: कभी कभी खामोश रहकर भी नेक काम किए जा सकते हैं। मैंने देखा है अक्सर पेड़ों को छांव देते हुए।

0: बात है, क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मोहम्मद रफी मंसूरी, इंदौर से। कैसे हैं आप?
0: हम अच्छे हैं, आप बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं मैडम।
0: अच्छा होना ही चाहिए,
1: जी
0: हमारे कार्यक्रम सुनते हैं लगातार।
1: हाँ हाँ सुनते ना मैडम
0: जी, तो आप बताइए, बकरीद मनाएंगे आप,
1: जी, जी,
0: तो
1: जी।
0: बकरीद का असली महत्व क्या है, ऐतिहासिक महत्व क्या है आपकी नजरों में?
1: मैडम इसका ऐतिहासिक महत्व है कुर्बानी और आपस में मिलजुल कर रहना और प्यार बांटना और दूसरों को भी खुशियाँ देना।
0: जी बहुत सही कहा आपने, और
1: जी
0: इसी भावना को मद्देनजर रखते हुए हम अपना हर त्योहार मनाते हैं। क्यों,
1: जी
0: बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: हम सिलाई करते हैं मैडम।
0: अच्छा, सिलाई करते हैं घर पे या किसी दुकान में जाके?
1: नहीं, बाहर गोडाउन पे जाके।
0: दिन भर सिलाई का काम होता है?
1: हाँ, दिन भर सिलाई का काम भी होता है और अपना रेडियो भी चलता रहता है।
0: रेडियो तो खैर आप लोगों की खुराक में शामिल है।
1: हाँ, खुराक में यही का आप।
0: भाई मुझे लगता है हमारे श्रोता खाना भले ही कभी खा लेते होंगे लेकिन विविध भारती सुनना नहीं भूलते।
1: जी
0: तो क्या सिलते हैं आप?
1: मैडम हमारा घनी बैग का जूट का काम, बारदान बारदान जिसमें अनाज भराता है, गेहूँ, चना, दाल,
0: हाँ,
1: उसको रिपेयर करते हैं हम कुएं और इससे सुतली।
0: अच्छा, जूट के जो बैग हैं जिन्हें हम बोरा कहते हैं
1: हाँ,
0: लोकल
1: बोरा,
0: भाषा में,
1: बड़े बड़े।
0: उसको आप जूट के उससे सिलाई करते हैं,
1: जी
0: तो नए
1: जी
0: बनाते हैं या पुरानों को रिपेयर करते हैं?
1: मैडम पुराने जैसे कोई कट लगी रहती है या चूहे काट देते हैं तो उसको रिपेयरिंग करते हैं हम।
0: तो ये अच्छे से रिपेयर हो जाता है क्या? क्योंकि वो तो सुतली जो होती है वो कहीं ना कहीं से कट जाती है, उसको सिलना आसान होता है? पैबंद लगाते समय ध्यान रखते हैं?
1: हाँ मैडम, थोड़ा पक्की सिलाई करना पड़ती है और फिर बाद में तो फिर वैसे उठा पटक होती है, अनाज भराता है तो फिर वो फट जाते हैं, तो फिर हमारे पास डबल से आते हैं, फिर हम रिपेयरिंग करते हैं उसको।
0: इस तरह से उसको बना के रखते हैं ना, क्योंकि बोरी है वो फट भी जाती है कई जगह से,
1: जी जी
0: कट फट जाती है। अच्छा बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: फिल्म का नाम है काला पत्थर और गाने के बोले एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं।
0: वाह क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हाँ जी मैडम जी, हमारा पहली दफा कॉल लगा है विविध भारती में।
1: स्वागत है आपका फिर तो।
0: बिल्कुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा कॉल अटेंड किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: नाम बताइए अपना, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: नाम मैडम जी सरवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
1: कैसे हैं आप, बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं?
0: बहुत बढ़िया है मैडम जी, मालिक की दया है, बाकी हम तो खेती बाड़ी का काम करते हैं, जमींदार आदमी है।
1: बिल्कुल अच्छी बात है ये तो।
0: हाँ जी
1: तो अभी क्या पैदावार हो रही है खेतों में? मौसम इतना गर्म है, आपके पंजाब में भी तो गर्मी हो रही होगी।
0: बिल्कुल जी, गर्म दिन बहुत चल रहे हैं, बाकी धान का पौध बोआ है, वो अब 20 दिन के बाद में पटकर दोबारा लगाएंगे।
1: क्यों, मतलब इसको हटा देंगे?
0: अभी वो जैसे संगना बीजा हुआ है, संगना थोड़ी दूर में,
1: हाँ
0: उसको फिर उखाड़ कर फुट फुट की खेती पर लगाएंगे दोबारा।
1: अच्छा, दोबारा लगेगा, तो इस दोबारा लगाने की प्रक्रिया में थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है।
0: मेहनत तो है मैडम जी।
1: हाँ, और गर्मी के इस मौसम में क्या ख्याल रखना पड़ता है फिर?
0: मैडम जी, हम तो बागड़ी आदमी है, ये राबड़ी हमारे बनाते हैं,
1: बाजरी के आटे की।
0: हाँ, बाजरी का, मोठ का।
1: अच्छा, मोठ का भी।
0: हाँ, उसमें छाछ डालकर सुबह पीते हैं 10 बजे, शाम को दलिया बनाकर रख देते हैं, वो सुबह ठंडा होता है, वो छाछ दही के साथ में खाते हैं, ये गर्मी का बहुत बढ़िया उपाय है ठंडे के लिए।
1: अरे वाह, क्या बात है। तो रात को आप मोठ का दलिया बना देते हैं और उसको सुबह खाते हैं छाछ के साथ?
0: हाँ जी, हाँ जी, सवेरे ठंडा मिलेगा।
1: हाँ।
0: रात को वो बनकर तैयार हो जाता है।
1: क्या बात है, बहुत स्वादिष्ट बनता होगा फिर तो, है ना?
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। वैसे खेत के अंदर मकान बना है, वहाँ थोड़ा सब्जी वगैरह लगा रखा है, कोई ककड़ी मिल जाती है, कभी खरबूजा मिल जाता है, कभी कोई तर वगैरह हरी मिर्ची मिल जाती है, वो बहुत बढ़िया है।
1: बिल्कुल, बहुत सही कहा, बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहे हैं प्रकृति के बीच में और शुद्ध खाना खा रहे हैं अपने ही खेत का।
0: हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल
1: जी। चलिए तो अब बता दीजिए आपकी पसंद का कोई गीत।
0: मैडम जी, रवार की फिल्म से सुना देना है मेरे साथ यह गीत, तू कोई गा, लता और मोहम्मद अजीज की आवाज।
1: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना नाम बताइए।
1: ग्राम कटारिया खेड़ी, जिला राजगढ़, मध्य प्रदेश से विविध भारती का नियमित श्रोता मैं राम नरेश बोल रहा हूँ। मैम
0: स्वागत है आपका राम नरेश जी।
1: जी जी, और हम विविध भारती को बहुत पसंद करते हैं, इससे आने वाले प्रोग्राम चाहे हेलो फरमाइश हो, सेलोलाइट के सितारे हो, आज की फनकार हो, यह नया प्रोग्राम शुरू किया गया है मन चाहे गीत। हम विविध भारती से सन 2000 से जुड़े हुए हैं, जब सुबह 9:15 पर पॉप हंगामा प्रोग्राम आया करता था।
0: तो 26 साल हो गए आपको इस कार्यक्रम से, इस सभा से जुड़े विविध भारती से।
1: जी, विविध भारती से जुड़े हुए और कई दौर देखे हैं, देखा जाए तो 2 दशक से अधिक समय हो गया है।
0: कैसा लगता है आपको इतने समय से विविध भारती सुन रहे हैं, अपने जीवन में कोई परिवर्तन होता लगा आपको?
1: विविध भारती सुनने से हमें जानकारियाँ मिली और ज्ञानवर्धक बातें मिली, किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए अपने से बड़े लोगों से, उस तरह की सीख मिली, अपने से छोटे लोगों को किस तरह का प्रेम करना चाहिए इस तरह की सीख मिली। विविध भारती ने हमें जानकारियों के साथ में जीवन जीने का तरीका, नजरिया सब कुछ सिखाया। और शुक्रिया विविध भारती, जो आपके सहारे हम 26 वर्षों तक अभी लगातार प्रोग्राम सुन रहे हैं और विविध भारती से सुन सुन कर सीखा। ये जो सिंगर गा रहा है ये मोहम्मद रफी है, ये जो सिंगर गा रहा है ये किशोर कुमार है, अब जो सिंगर गा रहा है वो कुमार सानू है, ये आवाज उदित नारायण की है। क्योंकि सिंगरों की आवाज पहचानना हमने विविध भारती के कार्यक्रमों में गीतों के माध्यम से सुन सुन कर ही सीखा। चाहे उद्घोषक सिंगर का नाम नहीं ले तो भी हम पहचान लेते हैं फला फला सिंगर गा रहे हैं।
0: अपने
1: उद्घोषक कहते हैं सिंगर की आवाज है तो हम करेक्ट कहते हैं, बिल्कुल हमने सही पहचाना।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत कुछ सीखा आपने।
1: जी जी,
0: जी। तो चलिए अपनी पसंद का गीत बताइए।
1: फिल्म का नाम है हम आपके हैं कौन, और गाने के बोले आज हमारे दिल में अजब सी हलचल है, सामने संघन है, इस तरह से गाने की लाइन है।
0: चलिए तो सुनते हैं इस गीत को।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार
1: जी मैडम, मैं रघुवीर से राजपूत बोल रहा हूँ, महाराणा प्रताप चौक छिपावड़ तहसील खिरकिया जिला हरदा मध्य प्रदेश से।
0: रघुवीर जी बोल रहे हैं, कैसे हैं रघुवीर जी?
1: जी मैडम हम अच्छे हैं, आप लोग कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं, आप बताइए क्या करते हैं?
1: मैडम हमारे खेती किसानी का काम है और होटल वगैरह है।
0: अभी क्या चल रहा है आपके खेत में?
1: मैडम अभी गेहूं के बाद तो खाली रहता खेत, कुछ नहीं लगाते, पानी की व्यवस्था नहीं है। और 2019 के बाद आज मेरा कॉल पहली बार लगा, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: चलिए अच्छी बात है।
1: और पुराने कार्यक्रम जो SMS के बहाने, VVS के तराने और सुहाना सफर कार्यक्रम, हवा महल, आज के फनकार सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मैडम।
0: सुरीला सफर में आप अपनी बात लिखते हैं हमारे फेसबुक पेज पर?
1: मैडम मैं अभी 2019 के बाद मैंने रेडियो सुनना बंद कर दिया था।
0: क्यों?
1: दोबारा चालू किया कोरोना काल से मैंने बंद कर दिया था।
0: तो इतना लंबा समय क्यों लिया बंद करने के बाद शुरू करने में?
1: कार्यक्रम बंद हो गए थे विविध भारती से, तो फिर धीरे धीरे मैंने भी सुनना बंद कर दिया था मैडम।
0: चलिए अब लगातार सुनिए और अपनी राय देते रहिए और फेसबुक पेज से जुड़िए, अपने विचार व्यक्त कीजिए ताकि आपकी टिप्पणियों को हम स्थान दें, पढ़ें।
1: जी जी मैडम,
0: हमारे श्रोताओं से ही हमारे कार्यक्रम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत, बताइए।
1: आम्रपाली फिल्म का नील गगन की छांव में दिन रैन गले से मिलते हैं।
0: क्या बात है, गर्मी के इस मौसम में बड़ा सुंदर गीत सुनना चाहते हैं।
1: अच्छा गाना है और शंकर जयकिशन का संगीत भी बहुत अच्छा है लता जी के आवाज के साथ।
0: जी सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: नमस्ते मैम, मेरा नाम टिंकू दास, जिला खासाराम से बोल रहा हूँ मैम।
0: अरे वाह, क्या प्यारा नाम है आपका टिंकू। ये तो घर का नाम होगा।
1: जी मैम, घर का नाम है।
0: तो बाहर का नाम क्या है आपका?
1: मेरा बाहर का नाम है राजदास।
0: अरे वाह, दोनों नाम बहुत अच्छे हैं आपके। टिंकू जी, अपने बारे में बताइए, कैसा चल रहा है आपका जीवन?
1: जी मैम, बहुत अच्छा चल रहा है, स्वस्थ है, मस्त है, बहुत मजे में है। आप कैसी हो मैम?
0: अच्छे हैं हम भी। तो बताइए, आप कहाँ रहते हैं?
1: जी मैम, मैं सिलचर पे रहता हूँ।
0: माँ, मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: मौसम 4 दिन से बारिश हो रही है मैम।
0: अरे बारिश आ गई है?
1: जी मैम।
0: तो कुछ ठंडा हुआ मौसम?
1: जी मौसम अच्छा है, सुहाना है मैम मौसम।
0: अच्छा, तो इस बारिश आने से क्या फायदा हुआ वहाँ?
1: जी पहले तो बहुत धूप था, आप राहत मिली है गर्मी की।
0: कुछ गर्मी से राहत मिली है ना?
1: जी मैम।
0: क्या काम करते हैं आप टिंकू जी?
1: जी मैम, मैं तो फिलहाल घर का काम काज करता हूँ, और अभी तक तो कुछ तो करना पड़ेगा आगे से।
0: अरे क्यों नहीं करते अभी तक? क्या उम्र है आपकी?
1: जी फिलहाल तो मेरा 19 साल की उम्र है।
0: अच्छा, पढ़ाई की है आपने?
1: जी मैम, मैंने तो ओनली 10th कम्प्लीट किया है। मेरा एक उद्देश्य भी है, मैं CRPF कमांडो में जाना चाहता हूँ।
0: हाँ हाँ,
1: फिलहाल यही तैयारी चल रहा है।
0: क्या तैयारी कर रहे हैं? फिजिकल फिटनेस का ध्यान रख रहे हैं आपने?
1: जी मैम, अच्छे से रख रहे हैं मैम।
0: बिल्कुल, खाना पीना और सब कुछ आपको सही तरीके से करना पड़ेगा।
1: जी मैम,
0: तभी तो कमांडो बन पाओगे, है ना? कितना मुश्किल होता है वो फिजिकल फिटनेस, मेंटली इतना मजबूत बनना पड़ता है।
1: जी मैम।
0: बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आप युवा हैं और कार्यक्रम सुनते हैं, कौन सा गाना सुनवाएं आपको टिंकू जी?
1: जी मैम, मुझे सिर्फ तुम अभी से पहली पहली बार ये गाना सुना दीजिए मैम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम है ये विविध भारती से।
1: नमस्कार मैडम,
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोनामर्ग से लतीफ अहमद रैना।
0: कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा मैडम, आप ठीक है?
0: हाँ, हम ठीक हैं। और कश्मीर के मौसम बताइए।
1: कश्मीर के मौसम अभी सुहाना है, मौसम ठीक है। अभी ठंडे ठंडे मौसम है यहाँ पे, सुबह शाम ठंडे, दिन में गर्मी रहता है।
0: काफी टूरिस्ट
1: हाँ
0: आ रहे होंगे घूमने इन दिनों।
1: हाँ पर्यटक तो बहुत सारे आते हैं यहाँ सोनामर्ग में। अब लगभग 15,000 से ऊपर ऊपर तो पर्यटक आते हैं यहाँ पे
0: अरे वाह,
1: दिन
0: क्या बात है, बहुत खूब। अच्छा एक बात
1: में।
0: बताइए मोहम्मद रैना साहब, बकरीद पर आप क्या कहेंगे? अब तो बकरीद का जो असली मकसद है, असली संदेश क्या है, क्या सोचते हैं आप? जो हजरत साहब है, उनकी परंपरा, उनकी कुर्बानी की परंपरा हमें क्या सिखाती है?
1: हमें सिखाता है वो ईमानदारी, ईमानदारी हर चीज में, जो भी ईमानदारी करेगा वो आगे बढ़ेगा।
0: अच्छा एक बात बताइए, जो बकरीद का त्योहार है, हमें समाज में जरूरतमंदों की मदद और दान करना, सहायता
1: गरीबों
0: करना
1: गरीब
0: सिखाता है।
1: ये तो गरीबों के बांटना है, हर किसी को भी बांटना है ये
0: आपसी प्रेम और
1: हमें।
0: भाईचारे का बनाए रखने का एक बहुत बड़ा त्योहार है ये।
1: हाँ हाँ ये तो बड़े त्योहार है
0: आप ऐसा सोचते हैं
1: हमें।
0: कि सभी
1: हाँ
0: समुदायों के बीच आपसी प्रेम और भाईचारा बना रहे?
1: हाँ सही बात, हिंदू मुस्लिम तो एक ही भाई भाई है।
0: चलिए तो इस त्योहार को अच्छे से मनाइएगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको?
1: हमें सुने गाना पत्थर की फूल, लता मंगेशकर की आवाज में, कभी तो छल्लिया लगता है
0: सुनते हैं आपकी
1: आपको।
0: पसंद का ये गीत।
2: कभी तू

0: तो ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं के कॉल आज लग चुके हैं उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि कृपया आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें। हेलो फरमाइश से जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। हमारे टेलीफोन नंबर है 4002462286027288 और हमारा STD कोड नंबर है 022, यानी आप हमें 022400024662 साथ ही 022287028 पर कॉल कर सकते हैं। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का सफर आज अपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: बरसात की रात, इस फिल्म से ये कव्वाली अभी आप सुन रहे थे मन्ना डे, आशा भोसले, सुधा मल्होत्रा और साथियों की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था, रोशन का संगीत था।
1: कुछ बातें अनकही दिल में दबी रह जाती हैं, जो कभी तपिश, कभी खलिश और कभी घुटन बनकर हमेशा सताती हैं। इसीलिए जो कहना है कह दो, वरना ये अनकही यादें बनकर तमाम उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी।

मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम ओ

0: ये गीत अभी आप सुन रहे थे वक्त फिल्म से, मनाडे की आवाज में साहिल लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग। अलीशा की आवाज में ये गीत अलीशाज लव नोट्स एल्बम से।

अलीशा की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे अलीशाज लव नोट्स एल्बम से। अलीशा और नितिन रायकवार ने इसे लिखा, संदीप चौटा का म्यूजिक।

0: अशोक खोसला की आवाज में ये गजल अभी आप सुन रहे थे जब तेरे शहर से। अशोक खोसला की गजल्स की एल्बम से ये गीत अभी हमने चुनकर आपको सुनवाया।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

फिल्म लेकिन से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, गुलजार ने इसे लिखा था। और अब सोनू निगम की आवाज में ये गीत जान एल्बम से। निखिल विनय का संगीत है, फैज अनवर ने इस गीत को लिखा है।

सोनू निगम को आप सुन रहे थे जान एल्बम से, और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं समाप्त होता है।

0: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश। उमंग कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार। आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल जी ने सुविचार भेजते हुए लिखा है,
2: परीक्षा अक्सर अकेले की होती है लेकिन परिणाम सबके सामने आता है।

0: इसलिए कोई भी काम करने से पहले हमें परिणाम का विचार जरूर करना चाहिए।
1: आपका बहुत बहुत आभार इतना सुंदर विचार भेजने के लिए। आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तहसील ठियोग, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
0: ठाणे महाराष्ट्र से शोभा राणे जी,
1: जालंधर पंजाब से संदीप कौर, प्रभा कौर, राधिका कौर और प्रभा जटोलिया,
0: गांव ढाणी कुतुबपुर, जिला हांसी हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, प्रियांशी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, अनाया गुर्जर, गुरदीप गुर्जर और प्यारी बिटिया किरत,
1: और बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओ। संदेश भेजने के लिए निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम से। अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओ, कल हमने चर्चा की थी रजनीगंधा के बारे में, जो बहुत ही सुगंधित फूल है, लेकिन हमारी चर्चा अधूरी ही रहेगी
0: यदि हम फूलों का राजा कहे जाने वाले गुलाब की चर्चा न करें।
1: जी, ये बात तो है।
0: श्रोताओ, इसे दुनिया का सबसे अधिक प्रिय फूल माना जाता है। गुलाब को इसकी सुंदरता और खुशबू के कारण विदेशी साहित्य में किंग ऑफ ऑल फ्लावर्स भी कहा जाता है। गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग 100 प्रजातियां पाई जाती हैं।
1: जी हाँ, और जहाँ तक इसकी उत्पत्ति का प्रश्न है तो आपको बता दें कि गुलाब लगभग 4 करोड़ वर्ष पुराना फूल माना जाता है।
0: जी,
1: क्योंकि वैज्ञानिकों को इसके जीवाश्म भी मिले हैं जो करोड़ों वर्ष पुराने हैं। विमलेश जी, वे खास बात ये बताइए कि गुलाब फूल मूल रूप से किस देश का है?
0: अजीत जी, गुलाब फूल मूल रूप से किसी एक देश का नहीं है। वनस्पति वैज्ञानिकों के अनुसार गुलाब एक जंगली प्रजाति है जो मुख्य रूप से उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, मुख्य रूप से चीन, भारत और मध्य एशिया में।
1: जी, एक रोचक तथ्य ये भी है कि लगभग 5000 वर्ष पहले चीन में गुलाब की खेती के प्रमाण मिलते हैं।
0: जी,
1: गुलाब की कई प्रजातियां चीन से ही विकसित हुई हैं और धीरे धीरे ये प्रजातियां पूरी दुनिया में फैल गई।
0: अजीत जी, अक्सर हम काले गुलाब के विषय में सुनते हैं।
1: काले गुलाब?
0: जी, जिसे ब्लैक रोज भी कहते हैं। क्या गुलाब काले रंग का भी होता है?
1: नहीं विमलेश जी, वैज्ञानिक तथ्य ये है कि जो गुलाब हमें काला दिखाई पड़ता है ना, वो दरअसल गहरे लाल या सुर्ख रंग का होता है।
0: जी,
1: जिसमें थोड़ा थोड़ा बैंगनी रंग भी मिला होता है, इसलिए यह काला दिखाई पड़ता है।
0: जी,
1: वास्तव में यह काला गुलाब है नहीं। वैसे मैंने कई बार विमलेश जी नीला गुलाब भी देखा है।
0: अजीत जी, वैज्ञानिक सत्य ये है कि प्राकृतिक रूप से नीला गुलाब होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने जैव तकनीक की सहायता से नीला गुलाब विकसित किया है।
1: विमलेश जी, कल हमने रजनीगंधा फूल की चर्चा करते हुए बताया था कि इस फूल की खुशबू रात के समय सबसे अधिक होती है।
0: जी,
1: लेकिन एक बार श्रोताओं को बता दें कि गुलाब के फूलों के साथ ये बात बिल्कुल विपरीत। गुलाब के फूलों की खुशबू प्रातः काल सबसे तीव्र मानी जाती है, क्योंकि इस समय इसकी पंखुड़ियों में सुगंधित तेल सबसे अधिक सक्रिय होते हैं।
0: अजी जी, जब आपने सुगंध की बात की है तो एक बात और मुझे याद आ गई। वो ये कि गुलाब के फूलों के इत्र दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हैं।
1: जी, वो तो है।
0: सबको जानकर आश्चर्य होगा कि मात्र एक बूंद इत्र या परफ्यूम बनाने में हजारों गुलाब की पंखुड़ियां लगती हैं।
1: जी बिल्कुल सही आपने कहा विमलेश जी, यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से निकला हुआ रोज ऑयल बहुत महंगा होता है।
0: जी,
1: हम सब जानते हैं कि गुलाब खाने और पीने के काम भी आता है। गुलाब का शरबत, गुलकंद वगैरह कौन नहीं जानता।
0: बिल्कुल,
1: आइए बात करते हैं गुलाब के फूलों के रंगों की।
0: गुलाब कई रंगों के होते हैं और हर रंग की अपनी मानवीय भाषा होती है। जैसे लाल गुलाब प्रेम का, सफेद गुलाब शांति का,
1: जी
0: पीला गुलाब मित्रता का, और गुलाबी गुलाब सम्मान और प्रशंसा का। और आपको पता है, मधुमक्खियों का भी सबसे प्रिय फूल है गुलाब।
1: जी विमलेश, कई ऐसे फूल हैं जिनमें कांटे नहीं होते।
0: जी,
1: लेकिन प्रश्न मेरा ये है कि गुलाब के पौधे में कांटे क्यों होते हैं?
0: बड़ा मजेदार लेकिन विज्ञान सम्मत प्रश्न है। इसका जवाब है, गुलाब के पौधे में कांटे उसकी रक्षा के लिए होते हैं, ताकि जानवरों से आसानी से न खा सकें।
1: जी, तो श्रोताओ, ये थी जानकारी हमारे आपके सबके चहेते फूल गुलाब की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न सुन लीजिए। हमारा प्रश्न है, गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: गुलाब फूल की दुनिया भर में लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं पहला कार्यक्रम। शीर्षक है खेल संध्या।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की एक सुंदर कविता का संगीत रूपांतरण है। कार्यक्रम में भारत के पारंपरिक खेलों का उल्लेख किया गया है।
1: खेल संध्या। तो आइए

0: सबसे पहले सुनते हैं इस कविता का वाचन बच्चों के साथ। संध्या को हम खेलने जाते,
1: संध्या को हम खेलने जाते,
0: मित्रों संग आनंद मनाते,
1: मित्रों संग आनंद मनाते,
0: कभी दौड़ना और उछलना,
1: कभी दौड़ना और उछलना,
0: कभी गेंद के खेल खेलना,
1: कभी गेंद के खेल खेलना,
0: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
1: कभी कबड्डी खो खो खेलें,
0: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
1: गुट्टे आँख मिचौनी खेलें,
0: गिल्ली डंडा सबको भाता,
1: गिल्ली डंडा सबको भाता,
0: सतोलिया भी मजा दिलाता,
1: सतोलिया भी मजा दिलाता,
0: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
1: या फिर पेड़ों पर जा चढ़ना,
0: या हंस हंस के बातें करना,
1: या हंस हंस के बातें करना,
0: जब अंधेरा होने लगता,
1: जब अंधेरा होने लगता,
0: सबको कुछ डर लगने लगता,
1: सबको कुछ डर लगने लगता,
0: तब हम घर को वापस आते,
1: तब हम घर को वापस आते,
0: कल खेलेंगे यह कह जाते,
1: कल खेलेंगे यह कह जाते।
0: अभी आपने सुना इस कविता का वाचन। आइए अब सुनते हैं इसी कविता की संगीतमय प्रस्तुति।

तो बच्चों, अभी आपने सुना ये खेल गीत, अच्छा लगा ना? सच है, मित्रों के साथ खेलने कूदने में कितना मजा आता है ना? खेलने कूदने से व्यायाम तो होता ही है और शरीर में भी चुस्ती फुर्ती आ जाती है। लेकिन भाई, सभी बातों का एक समय होता है, खेलने का समय और खूब मन लगाकर पढ़ने का भी समय। तो समय से खेलिए और समय से पढ़िए। अब आपके लिए एक बड़ी रोचक जानकारी। इस गीत में आपने सुना था, गिल्ली डंडा सबको भाता, सतोलिया भी मजा दिलाता। गिल्ली डंडा तो सबको मालूम है, लेकिन सतोलिया क्या होता है? सतोलिया उत्तर भारत, मुख्यतः राजस्थान का एक पारंपरिक देसी खेल है जो बच्चों में बहुत लोकप्रिय है। सतोलिया यानी सात। यह सात कंचों या सात गोल पत्थरों की डिस्क और गेंद से दो टीमों के बीच खेला जाता है। इसमें एक टीम द्वारा सात कंचे या पत्थर एक स्थान पर रखे जाते हैं और दूसरी टीम

0: गेंद से उन्हें मारकर गिराने की कोशिश करती है। यदि कंचे या पत्थर गिर जाते हैं तो जीतने वाली टीम चिल्लाती है सतोलिया। अब आपके लिए कुछ करने को, मालूम कीजिए कि हमारे देश में और कौन कौन से परंपरागत खेल हैं और उन्हें कैसे खेलते हैं। खेल संध्या, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, कविता वाचन स्वर सोहम, वान्या और मनन, गायन स्वर एंजल और वान्या, निर्माण सहयोग जगबंधु जाना, संगीत तथा मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये संगीतमय कार्यक्रम खेल संध्या, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे।
1: परमवीर चक्र विजेता मनोज कुमार पांडे के जीवन और भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके अपार शौर्य का वृत्तांत इस कार्यक्रम में दिया गया है।

0: यदि मौत मेरे खुद को साबित करने से पहले आती है तो मुझे सौगंध है कि मैं मौत को भी मात दे दूंगा।
1: ये शब्द हैं कारगिल युद्ध के महापराक्रमी योद्धा और परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे के, जो उन्होंने अपनी डायरी में लिखे थे। निस्संदेह ये शब्द उनकी साहसिक प्रवृत्ति को अभिव्यक्त करने के लिए पर्याप्त हैं।
0: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय सेना के जांबाज सैनिक लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे की, जिन्होंने कारगिल युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया। उन्हें बटालिक का हीरो भी कहा जाता है। बटालिक कारगिल युद्ध का एक महत्वपूर्ण सामरिक क्षेत्र है।
1: जून 1975 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर सीतापुर के निकट रुधा गांव में उनका जन्म हुआ था। वो श्री गोपी चंद्र पांडे और श्रीमती मोहिनी पांडे के सबसे बड़े पुत्र थे। सेना में जाना उनका सपना था। वो हमेशा ही सेना की प्रतिष्ठित वर्दी पहनकर अपने देश के शत्रुओं से लड़ने के सपने देखा करते थे।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश सैनिक विद्यालय लखनऊ में हुई। स्कूली जीवन में उन्हें अत्यंत प्रतिभाशाली छात्र माना जाता था। खेलों में उनकी गहरी रुचि थी। बॉक्सिंग, शारीरिक सौष्ठव और वॉलीबॉल में उन्हें महारत हासिल थी।
2: गोविंद, तू सब इसका पीछे जा, हाँ, और सब इस सीधा सेंटर में डालना, ओके?
0: उत्तर प्रदेश में वो राज्य स्तर पर नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट चुने गए।
3: श्री मनोज पांडे को उत्तर प्रदेश राज्य स्तर पर एनसीसी का सर्वश्रेष्ठ कैडेट घोषित किया जाता है।
1: प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने सेना में जाने की अपनी अदम्य इच्छा को साकार करने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए में दाखिला लिया। उनके बारे में एक घटना बहुत ही

0: रोचक और प्रेरक है। उस दिन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती होने वाले नौजवानों का साक्षात्कार चल रहा था।
1: तो मनोज पांडे जी, आप बहुत अच्छे अंकों से एनडीए की चयन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं और इसलिए आपको इस साक्षात्कार में बुलाया गया है।
2: धन्यवाद श्रीमान।
1: तो आप ये बताइए कि आप भारतीय थल सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं?
2: श्रीमान, मैं परमवीर चक्र प्राप्त करना चाहता हूं।
1: वेरी एम्बिशियस। लेकिन क्या आपको लगता है कि परमवीर चक्र एक खिलौना है?
2: श्रीमान, मुझे निश्चय है कि अपने कार्यकाल में मैं अवश्य ही इस लक्ष्य को प्राप्त कर लूंगा।
1: बेस्ट ऑफ लक।
3: और उन्होंने ऐसा ही किया भी। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उन्हें एक कमीशन मिला और वो लेफ्टिनेंट के पद पर 11 गोरखा राइफल्स में शामिल हो गए। सेना की ये इकाई अपनी वीरता और पराक्रम के लिए विख्यात है। सेना में कमीशन मिलने के बाद उनकी पहली नियुक्ति कश्मीर घाटी में हुई।
0: मई के महीने में कारगिल और आसपास के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठ की खबर दी गई थी। उन दिनों लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ने सियाचिन में अपनी तैनाती के 1.5 वर्ष पूरे कर लिए थे और रेजिमेंट को शांति क्षेत्र पूना भेजा जा रहा था। लेकिन इस घुसपैठ का पता चलने के बाद लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को उनके अद्भुत नेतृत्व कौशल के मद्देनजर सियाचिन के ही बटालिक सेक्टर जाने के निर्देश मिले।
3: युद्ध शुरू हो चुका था।

0: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। अभियान था सियाचिन की सबसे ऊंची चोटियों में से एक जोबार टॉप पर कब्जा करना। भीषण युद्ध के बाद यह अभियान सफल रहा। अब उनकी टुकड़ी को जोबार टॉप के पास वाली एक और चौकी खालूबार पर कब्जा करना था। वो अपनी टुकड़ी के कमांडर थे।
1: 3 जुलाई 1999 को गोरखा रेजिमेंट के निडर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने पूरी ताकत से अपनी टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी चौकियों पर आक्रमण किया।
2: बहादुर साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार आप सबने जोबार टॉप की लड़ाई में अपना युद्ध कौशल दिखाया है, उसी प्रकार खालूबार में भी दिखाएंगे।
3: हम तैयार हैं।
2: लेकिन साथियों, दुश्मन तक पहुंचना आसान नहीं है। वे ऊंची चोटियों पर पोजीशन लिए बैठे हैं और हमारी हर कार्यवाही पर नजर रख रहे हैं। उन तक पहुंचने के लिए हमें इस बार वो करना होगा जो कठिन तो है पर असंभव भी नहीं है।
4: वो क्या साहब?
2: इस मैप को देखिए, सीधी चढ़ाई करने में खतरा है, इसलिए हम यहां से पहाड़ के इन दुर्गम दर्रों को पार करते हुए उन तक पहुंचेंगे और फिर अचानक उन पर हमला करेंगे। ये देखिए, यहां दो दर्रे हैं जिनसे चोटी तक पहुंचा जा सकता है। यह है नंबर 1 और यह है नंबर 2।
4: तो इसका मतलब है कि हम दो दिशाओं से उन तक पहुंचेंगे।
2: बिल्कुल सही। दुश्मन का ध्यान भटकाने के लिए हमने वायुसेना से अनुरोध किया है कि उनके विमान थोड़ी थोड़ी देर में खालूबार टॉप पर मंडराते रहे। दुश्मन का ध्यान विमानों की ओर रहेगा। इसी बीच आधी टुकड़ी पहाड़ के इस ओर से और आधी पहाड़ के उस ओर से पर्वत शिखर पर पहुंचेगी, और जब सब पहुंच जाएं तो मैं सबको संदेश भेजूंगा। कूट संदेश मिलने का इंतजार करना।
3: जी साहब।
2: संदेश मिलते ही सबको दुश्मन पर टूट पड़ना है। आक्रमण करने का संकेत होगा गोरखा राइफल्स का युद्ध घोष।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली, जय महाकाली, आयो गोरखाली।
2: तो शुरू करते हैं अभियान। सब तैयार हो जाओ, शाम होते ही हम सब मिशन पर निकल पड़ेंगे।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
1: और फिर शुरू हुआ सैन्य अभियान। खालूबार टॉप पर समय समय पर वायुसेना के विमान मंडराते रहे और जो बंकर निशाने पर आए उन्हें उड़ाते रहे। इसी बीच लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में रणबांकुरों की टुकड़ी खालूबार टॉप की ओर इंच इंच करके बढ़ रही थी।
0: मार्ग दुर्गम था। खून जमा देने वाली ठंड और अत्यधिक ऊंचाई के कारण ऑक्सीजन की मात्रा भी धीरे धीरे विरल होती जा रही थी, लेकिन इन सैनिकों के मनोबल और दृढ़ निश्चय के सामने वस्तु स्थिति भी परास्त होती दिखाई दे रही थी। 4 घंटों की दुर्गम चढ़ाई के बाद आखिरकार उनका लक्ष्य सामने आ गया था। दुश्मन इस बात से बेखबर था कि स्वयं महाकाल उनके सरों पर मंडरा रहा है।
1: आक्रमण हुआ
0: और लेफ्टिनेंट मनोज पांडे के नेतृत्व में वो पलक झपकते ही दुश्मनों पर टूट पड़े।
3: जय महाकाली, आयो गोरखाली।
0: पाकिस्तानी सैनिकों के लिए यह हमला अप्रत्याशित था। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हमला इस प्रकार होगा। दुश्मन के सैनिक इधर उधर भागने लगे, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मशीन गन के प्रहार से उनका काम तमाम कर दिया।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे पूरी तत्परता और असीम शौर्य के साथ सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। इस बीच दुश्मन भी संभल गया था और उनके बंकरों से भी भारी गोलीबारी होने लगी, जिसके कारण भारतीय सैनिक हताहत होने लगे।
2: जब तक दुश्मन की मशीन गनों को शांत नहीं किया जाता, तब तक हमारे जवान हताहत होते ही रहेंगे। मुझे हर कीमत पर उन बंकरों पर हमला करना होगा।
0: उन्होंने हथगोले लिए और गोलीबारी से स्वयं को बचाते हुए सैनिकों का उत्साह बढ़ाते हुए स्वयं उनके बंकरों पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने दुश्मन के दो बंकरों का सफाया कर दिया। उनकी इस कार्यवाही में दुश्मन के बहुत से सैनिक मारे गए। अब वो तीसरे बंकर की ओर बढ़ने लगे।
1: इसी बीच गोलियों की बौछार ने उनके कंधे और पैरों को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। चोट बहुत गहरी थी और खून बहुत बह चुका था, लेकिन युद्ध के इस वीर नायक ने हार नहीं मानी। वो भारी गोलीबारी के बीच ऐसी घायल अवस्था में भी सैनिक साथियों को आक्रमण जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
0: इस बीच जो भी शत्रु सामने आया, लेफ्टिनेंट मनोज पांडे ने हथगोलों से उसे मौत की नींद सुला दिया और तीसरे बंकर में घुसकर उन पर हथगोलों से भीषण आक्रमण कर दिया। वो आमने सामने के युद्ध में दुश्मनों से भिड़ गए।
1: तीसरे बंकर को नष्ट करने के बाद वो शत्रु के चौथे बंकर की ओर बढ़ने लगे। वो चौथे बंकर के पास पहुंचे ही थे कि दुश्मनों की मीडियम मशीन गन की एक गोली उनके माथे के बीचों बीच जा लगी। गिरते गिरते भी उन्होंने हथगोलों के भीषण प्रहार से उस बंकर के भी कुछ और सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया।
0: बहुत अधिक मात्रा में खून बह जाने के कारण अब उनकी सांसें डूब रही थी। उनके मुंह से नेपाली भाषा में ये शब्द निकले,
5: ना छोड़नू, ना छोड़नू।

0: जिसका अर्थ है उन्हें छोड़ना मत। इन अंतिम शब्दों के साथ वो चिर निद्रा में लीन हो गए।
1: लेफ्टिनेंट मनोज पांडे की इस अपूर्व वीरता के कारण ही भारतीय सेना सामरिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण चौकी खालुबार पर कब्जा कर सकी और इस प्रकार कारगिल क्षेत्र के बटालिक सेक्टर में भारत की विजय का मार्ग खुल गया।
0: एक महीने बाद 1999 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इस शौर्य के लिए उन्हें मरणोपरांत परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
1: देश ने इस महावीर की स्मृति को विस्मृत होने नहीं दिया। द्रास कारगिल युद्ध संग्रहालय, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी पुणे और देश में अन्य कई जगहों पर उनकी स्मृति में स्मारक बनाए और अपने भवनों का नाम रखा।
0: राष्ट्र श्रद्धा सहित इस असाधारण शौर्य के स्वामी और मूर्धन्य युद्ध नायक को नमन करता है।
2: अभी आप सुन रहे थे वीर गाथा श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल। कलाकार अश्विनी वालिया, बाबला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर और आर.एस. रघु। शोध व आलेख अजीत होरो। तकनीकी समन्वय बटी लैंग लिंगो। ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम। निर्माण सहयोग तनु गुप्ता। निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम मनोज कुमार पांडे और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर
6: वर्षगांठ पर 2 जून को।
7: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
8: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
7: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
8: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
7: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
9: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: कुमार सानू अनुराधा पौडवाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। नदीम श्रवण का संगीत और समीर ने इसे लिखा था।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद

जिंदगी इत्तफाक है, ये गीत अभी आप सुन रहे थे आदमी और इंसान फिल्म से आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाजों में। रवि ने संगीत दिया था और साहिर लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था।

0: दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

फिल्म आंधी से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था और संगीत दिया आरडी बर्मन ने।

फिल्म हम दोनों से गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और जयदेव का संगीत था। इसके साथ ही यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका आज के इस प्रोग्राम सुरीला सफर में। मैं हूं अनुराधा और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जैसे कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक टेक्स्ट या इबारत लिखी जाती है, पोस्ट की जाती है, उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं और साथ ही उन शब्दों से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं ये बताना होता है। आपके प्यार भरे संदेश और गानों की लिस्ट मुझ तक पहुंच चुकी है। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज इसके प्रोग्राम की और साथ ही ये भी देखते हैं कि आपके गीतों की लिस्ट कितनी मेल खाती है हमारी लिस्ट से। लेकिन जो गीत आप चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं उन शब्दों से, चाहे वो लिस्ट में शामिल हो या ना हो। हो सकता है कि मैसेजेस देखते देखते उनको भी शामिल कर लिया जाए, लेकिन एक बार इबारत ज़रूर फिर से पढ़ देते हैं, है ना? हमारे उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, उनके लिए इस इबारत को फिर से पढ़ दें और फिर शुरुआत करेंगे आज के इस प्रोग्राम की। इबारत कुछ इस प्रकार है, तुम्हारी जुल्फों की छाओ में ये दिन क्या रात भी ठहर जाए, निगाहों का काजल मेरे दिल में उतर जाए, कजरे की महक जब हवाओं में खो जाए, मेरा प्यार तुम्हारे इशारे पे हर हद से गुजर जाए, बिंदिया की चमक जैसे चांदनी का सफर, पायल की छनक लगे कोई मीठा सा असर, जब तुम्हारी निगाहें मुझे चुपके से पुकारे, दिल की हर धड़कन बस तेरा ही नाम गुनगुनाए, तुम्हारे ख्यालों का मौसम अब रुकता ही नहीं, ये दिल तुम्हारे बिना कहीं लगता नहीं, वादा किया था तुम्हारे साथ चलने का कभी, पर्वत भी झुक जाते जब होती तुम पास कभी, तुम्हारे इशारों में ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, तुम्हारे इशारों ने ऐसा जादू मुझ पर कर दिया, इस प्यार ने मुझे शायर कर दिया। चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ और उसके बाद लेते हैं आपके संदेश।

किस्मत फिल्म से ये गीत आशा भोसले और शमशाद बेगम की आवाजों में आप सुन रहे थे। एसएच बिहारी ने इसे लिखा, ओपी नैयर का संगीत था। ये खूबसूरत गीत के डिटेल्स मैं आपको दे चुकी हूँ और आपके मैसेजेस भी बता रहे हैं कि आपने इस गीत के सभी डिटेल्स कौन सी फिल्म से है, किसने गाया है, सब कुछ मुझे बताया है। और एक हमारे श्रोता हैं जिन्होंने ये भी बताया है कि हारमोनियम का बेहतरीन इस्तेमाल प्रिलूड में मैंडोलिन के साथ इस गीत में किया गया है और साइड रिदम में खंजरी का प्रयोग भी किया गया है। तो बहुत अच्छा लगता है आपके इस तरह के मैसेजेस देख के कि आप गीतों के साथ जुड़े हैं, संगीत के साथ जुड़े हैं, और संगीत अगर जिंदगी में हो तो जिंदगी खुशहाल हो जाती है। साथ ही सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यारे से संदेशों का। और हमारे जो साथी है फेसबुक के, वो भी एक दूसरे का स्वागत करते हैं। एक श्रोता कहते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, विविध भारती के सभी कार्यक्रमों में व्यस्त रहें, यही शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप एक दूसरे का भी अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐसा लगता है एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम सब मिल बैठे हैं इस वक्त और बातें कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा ये अनुभव है और बहुत ही प्यारा ये एहसास है। हमारे श्रोता कहते हैं कि प्रेम में ऐसा ही होता है, सारी दुनिया हसीन नजर आने लगती है, प्रेम से गुंधे गाए कुछ शब्द अपने आप जुबान पर चढ़कर महकने लगते हैं, ये जुल्फ ये काजल कविता बनकर दिल में उतर आते हैं और गीत की शक्ल में कब ढल जाते हैं पता ही नहीं चलता। हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि आज के शब्दों के आधार पर गाने चुनने का मजा ही कुछ और है। विविध भारती को सुनते रहिए और मजे लेते रहिए। हमारे एक और श्रोता ने आंखों का काजल, पायल की खनक, उसकी बिंदिया

का आकर्षण, चांदनी आदि आदि इन शब्दों को चुना है और कहा है कि मोहब्बत से पूर्ण शायराना इबारत, इबारती सफर का इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सफर का इंतजार खत्म हुआ और हम सफर में हैं। कभी कभी मन इतना उदास होता है कि किसी काम में मन नहीं लगता और न ही संगीत से कोई खुशी मिलती है, तब दिल में उस ईश्वर को याद करना चाहिए, उनके पास बैठकर रोना चाहिए, उन्हें अपनी उलझने बतानी चाहिए। लेकिन आज जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत से शुक्राने निकले, बहुत सारी चीज़ों के लिए उन्होंने शुक्रिया अदा किया और फिर हमें ऐसा लगता है कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं जिनसे हमें तकलीफ़ है या जो हमारी ज़िंदगी में नहीं है। ये बहुत ही खूबसूरत मैसेज है, खूबसूरत संदेश है आप सभी के लिए कि क्यों ना हम उन चीज़ों का शुक्रिया करें ज़िंदगी में, हर रोज़, हर सुबह सबसे पहली चीज़। और कहते हैं ना कि जब हम धन्यवाद करते हैं ऐसी चीज़ों का और गिनते हैं कि हमारी ज़िंदगी में कितनी अच्छी चीज़ें हैं, तो भगवान हमें वो ही और देता है, भर भर के देता है। हमारे साथी लिखते हैं कि बहुत बढ़िया और खूब इबारत उकेरा है, किसी शायरा से आप कम नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके साथ रहकर संगत का सर है ऐसा कहूंगी मैं। और साथ ही हमारे और श्रोता हैं जिन्होंने कहा है कि आज का ये जो गद्यांश है श्रृंगार रस में सरोवार है और बहुत सारी शब्द जो इनको नजर आ रहे हैं, जुल्फ, निगाह, काजल, कजरा, महक, बिंदिया, पायल, चांदनी, वादा, इशारा, ख्याल, धड़कन, दिल, इनमें पिरोकर मोहब्बत के एहसास को दर्शाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, श्रृंगार रस में आज की इबारत ज़रूर है और गीत भी बहुत ही खूबसूरत होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ। लेकिन ये जो गीत अभी आपने सुना कजरा मोहब्बत वाला, यहाँ पर मीना बाजार की बात की गई थी, है ना? मीना बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार खूब लगते थे और खूब आज भी पॉपुलर हैं, आज भी उनके नामों से हम पहचान जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि जब से ये मॉल या सुपरमार्केट्स या ऑनलाइन सामान हम घर पे मंगवा लेते हैं, चाहे हमें एक चीज़ की ज़रूरत हो चाहे 100 चीज़ों की ज़रूरत हो, तो कहीं ना कहीं ये बाज़ारों का जो चलन है या बाज़ारों की परंपरा कहीं खो गई है। आप मुझे लिख भेजिए ना कि आपने ऐसे कौन कौन से बाज़ार घूमे हैं और क्या क्या शॉपिंग की है, कौन कौन से ऐसे बाज़ार हैं जो हम भूलते चले जा रहे हैं। मुझे आपके संदेशों का इंतज़ार है। आप मैसेजेस भेजिए तब तक ये गीत।

प्रेम पर्वत इस फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर को, और जान निसार अख्तर ने इस गीत को लिखा था, जयदेव का संगीत था, और इस गीत के लिए बहुत से संदेश मुझ तक पहुंचे। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी में ये ठंडी छांव की तरह आया है ये गीत, है ना। मैं भी इससे इत्तफाक रखूंगी बिल्कुल। साथ ही साथ हमारी एक साथी लिखती है कि ये मेरा पहला संदेश है मगर सुनती हमेशा ही हूँ, देर से आने के लिए माफी चाहूंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप बिल्कुल देर से नहीं आए, आप इस प्रोग्राम में हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। साथ ही साथ जब हम बात कर रहे थे बाजारों की, तो दिल्ली का लाल किला, मीना बाजार घूमा है इन्होंने, एक साथ ही लिखते हैं, और बार बार यही नाम फिर से आ रहा है, लाल किला, मीना बाजार, दिल्ली का पहाड़गंज, पालिका बाजार घूमे हैं, और बड़े मॉल में भी मीना बाजार नाम की दुकान दिखी जाती है। बिल्कुल बाजारों की अगर बात की जाए तो कुछ और बाजारों के नाम अगर आ जाएं तो मजा

जाएगा, और वहां पर आप क्या क्या शॉपिंग करना पसंद करते हैं, या फिर आपको यही आरामदायक लगता है कि चलो ऑनलाइन हम लोग करवा लेते हैं ऑर्डर और सामान घर पर आ जाएगा। मॉल में घूमने का मजा कुछ और है, और सुपरमार्केट्स में एक ही जगह से हर तरह की चीजें खरीदने का भी मजा कुछ और है। तो आपकी राय इसमें क्या है, मैं ये जानना चाहती हूँ। साथ ही ये जो गीत अभी आप सुन रहे थे, प्रेम पर्वत से ये दिल और उनकी निगाहों के साए, ये किन पर फिल्माया गया है, आप इसका जवाब भी मुझे दें, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले गीत की तरफ, और आपके इन दो जवाबों का इंतजार, यानी कि प्रेम पर्वत किस पर फिल्माया गया है, और साथ ही साथ बाजारों के नाम और वहां पर क्या शॉपिंग कर सकते हैं, मुझे लिख भेजिए। चलिए

आ गले लग जा इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा था और आरडी बर्मन की तर्ज। और बाजारों की बात हुई थी और खूब सारे संदेश मुझ तक पहुंच गए हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारे शहर जयपुर का जौहरी बाजार खरीदारी शौकीनों के लिए स्वर्ग समान है, खरीदारी के शौकीनों के लिए। जी हाँ, और यहाँ आभूषण और कपड़ों की दुकानों से भरे पड़े हैं, आभूषण और कपड़ों की दुकान भरी पड़ी है। यहाँ साड़ियों, लहंगों और पारंपरिक जूते चप्पल का अद्भुत संग्रह मौजूद है, और साथ ही रेस्टोरेंट भी है वहाँ पर, LMB। जी हाँ, बिल्कुल घूमा हुआ है मैंने जौहरी बाजार भी। और एक और हमारे साथी लिखते हैं कि साप्ताहिक बाजार लगते हैं वहाँ जहाँ वो रहते हैं, जहाँ घूमने का आनंद ही कुछ और है। साथ ही हमारे एक साथी है जो ओडिशा से लिखते हैं कि वहाँ भी मेला लगता है, बाली यात्रा कहा जाता है उसे, और ये मेला महानदी के किनारे लगभग 4 किलोमीटर लंबे इलाके में लगता है, और लाखों दुकानें इसमें लगती है, करोड़ों की भीड़ जुड़ती है, और बहुत सी बातें इन्होंने लिखी है कि बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत अच्छी बात है। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हमारा ये बड़ा घर ही तो है विविध भारती, और सभी श्रोता आपस में सखा मित्र भाई बहन हैं, फेसबुक पर हमारा पोस्टकार्ड समझ लीजिए, जिसके माध्यम से हम सुख दुख की चर्चा, आपस में हालचाल पता कर लेते हैं। हमारे एक साथी ने मीना बाजार दिल्ली के बारे में चर्चा की है और काफ़ी कुछ लिखा है कि यहाँ पर पारंपरिक कपड़े, हस्तशिल्प और काफ़ी लजीज स्ट्रीट फूड के लिए जाना जाता है, और ऐतिहासिक छत्ता बाजार भी लगता है यहाँ पर लाल किले के अंदर। जी हाँ, और वहाँ पहुँचने के लिए भी कैसे पहुँचा जाए, बहुत खूबसूरती से उन्होंने पूरा गाइडेंस दिया है, पूरा रास्ता समझाया है कि कैसे आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही सूरत से हमारे साथी लिखते हैं कि चौरा बाजार है वहाँ पर, जहाँ पर ना घूमे तो बेचैनी सी लगती है, तो वो काफी घुमक्कड़ है और घूम के आते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं कि शिमला का माल रोड घूमे हैं और वहाँ से दुपट्टे खरीदे हैं, और वहाँ पर लकड़ी के भी काफ़ी सामान मिलते हैं, बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के पर्स मिलते हैं। जी हाँ, मैं काफ़ी पहले घूमी हूँ तो काफ़ी कुछ लिया है वहाँ से, की चेन वगैरह तो है ही, लेकिन साथ में पर्स भी मिलते हैं लकड़ी के, और बहुत सी दूसरी चीज़ें मिलती हैं माल रोड शिमला में। लखनऊ में अमीनाबाद का गड़बड़ झाला यहाँ भी घूमा हूँ, शॉपिंग भी की है, रेवड़ी और गच्चक भी खाई है। अरे वाह, सर्दियों में इसका मज़ा ही कुछ और होता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का नाइट बाजार जो कि रात भर खुला रहता है, और वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम की दुकानें रहती है, एक बार जाने का मौका मिला था। और इसके अलावा दिल्ली के पास पंचकूला में भी हाट बाजार लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिए और हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लेकिन वो बात कहा मोहम्मद रफी को आप सुन रहे थे, फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। मजरू सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था और ओपी नैयर का संगीत। साथ ही इन गीतों को सुनते हुए हमारे एक श्रोता कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतनी भरी चिलचिलाती धूप में ठंडे गानों की बौछार हो रही है और विविध भारती को सुनते हुए मन प्रसन्न हो रहा है और सुखद प्राप्ति हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इन प्यारे संदेशों के लिए। जिस तरह से हम गीतों की बौछार कर रहे हैं ठंडक दिलाने के लिए, और आपके जो संदेश है वो हम तक पहुँच कर हमें ठंडक दिला रहे हैं। बिल्कुल। और बाज़ारों की बात अगर हम करते हैं तो हमारे निमाड़ का एक प्रसिद्ध हाट है जो भगोरिया हाट कहलाता है, जो होली के 7 दिन पहले से लगता है। भगोरिया हाट का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि ये आदिवासी समाज को अपनी जड़ों से जोड़ता है। और यहाँ पर क्या क्या मिलता है, यहाँ पर पान खिलाना और गुलाल एक दूसरे पर रंग डालना सामाजिक भाईचारे को प्रगाढ़ करता है। जी हाँ, देखिए आज कितना कुछ पता चल रहा है हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं ज़्यादातर अपने लोकल मार्केट या मॉल से ही शॉपिंग करती हूँ। शॉप पर जाकर चीज़ों को हाथों से चुनना, परखना और चीज़ों को खरीदने का एहसास कुछ अलग होता है, संतुष्टि भी मिलती है इससे। और ऑनलाइन मंगाते हैं तो बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी आ जाती है जिसकी एक्चुअली ज़रूरत नहीं होती है, और नई चीज़ों को एक्सप्लोर भी कर लेते हैं वहाँ जाकर ज़रूरत पड़ने पर। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी साथी ने बहुत ही सटीक सा जवाब दिया है। साथ ही एक और बाज़ार के बारे में बात हो रही है। हमारे साथी लिखते हैं कि मेरा शहर वडोदरा, यहाँ गुजरात का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र है और यहाँ के बाजार और मेले इस शहर की जीवंत परंपराओं और समृद्ध इतिहास को दर्शाते हैं। जी हाँ, यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स भी मिलता है, कपड़े भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बेहतरीन डाइनिंग विकल्प मिलेंगे यहाँ पर।

बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी लंबा मैसेज दिया है इन्होंने, और ज़रूर आप पढ़ें और ज़रूर यहाँ पर घूमने जाएं। साथ ही साथ एक और साथी लिखते हैं कि प्रसिद्ध बाज़ार अजमेर के डिगी बाज़ार, नाला बाज़ार, दरगाह बाज़ार, नया बाज़ार, और भीलवाड़ा के भी प्रसिद्ध बाज़ार है सांगानेर बाज़ार, पवन बाज़ार, आज़ाद बाज़ार। जी हाँ बिल्कुल, मैं वाकिफ हूँ इससे भी, क्योंकि यहाँ पर भी मैं घूमी ज़रूर हूँ। तो कितना अच्छा लगता है ना, अलग अलग जगह की जानकारियाँ मिल रही हमें। हमारे एक और साथी कहते हैं कि साप्ताहिक घाट तो हर जिला गांव में लगते हैं। बिहार के बांका जिले में एक जगह कपड़ों की हाट लगती है, जहां हाथ के बने हुए कपड़े मिलते हैं। महाराणा हाट बुनकरों द्वारा बनाए हुए सिल्क और सूती कपड़े गमछे वो ले लेती हैं। भोपाल हाट भोपाल में एक प्रमुख बाजार है, जहां विभिन्न प्रकार के सामान मिलते हैं। यहां जड़ी बूटियां और आयुर्वेदिक दवाओं के साथ साथ मिट्टी के बर्तन, टेराकोटा और जूट उत्पादों जैसे स्थानीय रूप से बने सामान मिलते हैं। और यहां पर काफ़ी सारे हस्तशिल्प और वैकल्पिक चिकित्सा विकल्पों का पता लगाने के लिए एक शानदार जगह बताता है। जी हाँ, यहाँ पर जाकर आपको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो बहुत ज्ञानवर्धक मैसेज मुझ तक पहुँच रहे। चलिए, आप चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ और आपके मैसेजेस पर मैं आती हूँ।

फिल्म मोहरा से गीत अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम और पंकज उदास की आवाजों में। इंदिवर ने इसे लिखा था और बीजू शाह का संगीत था। आपके संदेशों तक पहुंची हूं मैं, और साथ ही साथ ये भी जानना चाहती हूं कि कौन कौन से शब्द और कितने गीत आपके लिस्ट के हमारे साथ मैच किए, ये भी तो हमें जो बताइए। बाजारों की बातें तो चलती है, चलती रहेगी। चलिए बाजारों की बात चलिए तो कुछ उस बारे में बताया जाए कि एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारे शहर इंदौर में सराफा बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ये राजबाड़ा के नज़दीक है, जिसमें ज्वेलरी, फैशन के सामान के साथ कचौड़ी, समोसे, मिठाई सभी कुछ मिलता है। बहुत ही स्वादिष्ट, और खरीदारी का मज़ा तो बाजार में ही है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऐसा बाजार लगता है जहाँ मुर्गों की लड़ाई कराई जाती है। जी हाँ, ये भी हमारे एक श्रोता लिखते हैं। और एक श्रोता ये भी लिखते हैं कि बाजार तो अब गांवों तक पहुंच रहे हैं, फिर शहरों की बात ही क्या। हमारे एक और साथी लिखते हैं कि अमृतसर में गुरुद्वारे में दर्शन किए उन्होंने, गोल्डन टेंपल में, और उसके आसपास काफी घूमे हैं। वहां पर अमृतसरी नान और लस्सी भी पी है, वहां का पापड़ बढ़िया भी, क्या बात है, स्वाद आ जाता है। बिल्कुल, अमृतसरी नान वहां का बहुत ही स्वादिष्ट है। राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा बाजार है, जहां हस्तशिल्प, अच्छी डिजाइन की मोजड़ियां, सांगानेरी प्रिंट के कपड़े, लकड़ी से निर्मित वस्तुएं भी मिलती है। हमारे एक और साथी हमें लिखते हैं कि हमारे शहर कटक में चांदी की महीन कारीगरी की जाती है, तारकशी इसे कहते हैं शायद, और लोग दूर से चांदी के कोणार्क, चक्र आदि महीन वस्तुएं खरीदते हैं। दूर से आते हैं और ये वस्तुएं यहां से खरीद के जाते हैं। साथ ही हमारे एक और साथी ने लिखा है कि कुछ समय पहले वे नैनीताल गए थे और वहां के मशहूर मार्केट माल रोड, बड़ा बाजार, भोटिया मार्केट से गरम स्वेटर, बैग्स, बैंगल्स और शोपीस खरीदे थे। बहुत भीड़ वाला मार्केट था वो। इटारसी में भी एक मार्केट है, बाजार है, जिसे पटवा बाजार कहा जाता है शायद, अगर मैं सही से इसे बता पा रही हूं तो। और यहाँ पर शादी के काफी सारे सामान मिलते हैं, शादी की शॉपिंग की जाती है, और श्रृंगार का भी काफी कुछ सामान मिलता है। ऐसे ही भोपाल में गौहर महल है, जहां पर लगभग पूरे साल हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से संबंधित क्राफ्ट्समैन को प्रोत्साहन देने के लिए मेला लगाया जाता है, और ये जगह तालाब के पास होने से बहुत ही सुंदर है। ऐसे ही पीपली गांव, जो कि पूरी जिले में है, वहां पर भी काफी प्रसिद्ध रंगीन छतरियां, गृह सज्जा का सामान और कैनोपी से बने जो चीजें हैं वो मिलती है। कैनोपी खरीद कर लेकर जाते हैं लोग बाग, लैंप कवर आदि। जी हाँ, बाजारों की बात की जाए तो भिंडी बाजार बॉम्बे, इसका भी जिक्र आया। हमारे श्रोता लिखे कि बहुत पहले यहाँ पर आए थे और घूमे थे, लेकिन इसका नाम क्यों पड़ा है वो कुछ समझ नहीं आया। काफ़ी सारे एंटीक्स यहाँ पर मिलते हैं, और काफ़ी लंबा मैसेज है तो मैं बहुत लंबा ये पूरा मैसेज नहीं पढ़ूंगी, लेकिन हाँ, भिंडी बाजार को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही एक और श्रोता लिखते हैं कि हैदराबाद का बेगम बाजार बहुत मशहूर है, यहाँ छोटी से छोटी चीज यानी कि सुई से लेकर बड़े से बड़ा सामान भी मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, इतने सारे बाजारों के बारे में आज पता चला मुझे। और चलिए हम चलते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

कश्मीर की कली इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में और आप सब ने इस गाने की डिटेल्स तो लिखी दी है मुझे। बाजारों की बातें तो हो ही रही है तो ऐसे में एक हमारे साथी लिखते हैं कि लखनऊ का अमीनाबाद एक अच्छा बाजार है, सस्ता महंगा हर कैटेगरी की दुकानें हैं यहाँ पर, कपड़े बर्तन जूते सोने चांदी, अच्छे रेस्टोरेंट भी हैं यहाँ पर और हर तरह के सामान मिलते हैं, स्कूल की ड्रेसेस आदि भी बहुत मिलती है यहाँ पर, उसका भी बड़ा बाज़ार है। और साथ ही साथ बाज़ारों की बात की जाए, जी हाँ, कहने को गोरखपुर में हिंदी बाज़ार माया बाज़ार है, लेकिन सिंगार के सामान कपड़े और आभूषण हिंदी बाज़ार में और इलेक्ट्रॉनिक के सामान माया बाज़ार में मिलते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि मैं दिल्ली की करीब करीब सभी मार्केट में घूमी हूँ, चांदनी चौक की गलियों में बहुत घूमी हूँ मैं। गानों की बात की जाए तो हमारे श्रोता कहते हैं कि अभी तक मेरे बताए कोई भी गीत नहीं आए हैं और उन्हें इस चीज़ का दुख हो रहा है, लेकिन देखिए ना, एक से बढ़कर एक गीत आ रहे हैं और साथ ही साथ कितनी सारी बातें हो रही है, ये क्या काम है। आप हमारे साथ बने हैं और हम आपके साथ बने हैं। विक्टोरिया मार्केट की बात भी हुई है यहाँ पर, जिसमें पहले चाट की दुकानें थी लेकिन अब किताबों का मार्केट है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि गानों की कोई लिस्ट उन्होंने जारी नहीं की है, बस वो हमारे साथ हैं, हमारा साथ दे रहे हैं और जो भी गीत बज रहे हैं वो बस बड़े अच्छे मन से सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही कश्मीर की कली का शानदार गीत, इसकी प्रशंसा की है और ये भी लिखा है कि शम्मी कपूर का अनोखा अंदाज देखने को मिलता है इस, खासकर इस गीत में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और गीत तो हम एक से बढ़कर लेकर आए हैं आपके लिए और अब इसी फहरिस्त में ये अगला गीत।

फिर वही दिल लाया हूँ इस फिल्म से। ये गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ों में, मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा था। और साथ ही आपके बहुत खूबसूरत प्यारे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे हैं, वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: सुरीला सफर का वक्त अब खत्म होने को है, लेकिन आपके प्यारे प्यारे संदेश अब तक है मेरे पास। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज पूरे 1,000 कमेंट तक पहुंचने वाले थे लेकिन थोड़े से रह गए, लेकिन किसी दिन इतने सारे कमेंट्स के साथ जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। गोरखपुर में गोलघर भी है, नौका विहार भी है, भारत का सबसे लंबा स्टेशन रामगढ़ ताल भी घूमकर आए हैं ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। और हमारे एक श्रोता लिखते हैं, SH बिहारी के लिखे बोल बहुत ही सीधे और दिल में उतरने वाले होते हैं, और ये जो गीत अभी इन्होंने सुना ये बहुत ही अच्छा लगा। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको इतने प्यारे और मीठे संदेशों के लिए। और मैं अनुराधा इजाजत चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम से, जिसका नाम है सुरीला सफर। आप बने रहें विविध भारती के संग।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनिस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 30वीं कड़ी।

राष्ट्रीय सभा का 21वां अधिवेशन 27 दिसंबर 1905 को बनारस में हुआ। नरमपंथियों के नेता, नामदार और प्रखर देशभक्त गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगस्त महीने से बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन भड़का हुआ था। उसी समय प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। कुछ रियासतों के साथ ब्रिटिश समर्थक प्रतिष्ठित लोगों ने खुशी जताते हुए उनका स्वागत किया। इतना ही नहीं, इस वाराणसी अधिवेशन में उनके भारत आगमन पर आनंद व्यक्त करते हुए इस आशय का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे रविंद्रनाथ को कांग्रेस की यह राजभक्ति बिल्कुल पसंद नहीं आई। वे लिखते हैं,

0: राजपुत्र आए। मुल्क के सभी पात्रों के पुत्रों ने उन्हें घेर लिया। अन्य कोई भी वहां प्रवेश न पा सका। इस घेरे पर कोतवाल पुत्रों का पहरा लग गया, इसलिए उन्हें शिरोपा प्राप्त हुआ। इसके बाद ढेर सारे पटाखे छूटे और राजपुत्र जहाज पर चढ़कर वापस चले गए।
1: फिर भी इस अधिवेशन से राजसत्ता के विरुद्ध उपयोग की जाने वाली नेताओं की नरम भाषा धीरे धीरे बदलने लगी। बंग भंग विरोधी आंदोलन की शुरुआत में ही अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों की खबरें देश भर में पहुंच चुकी थीं। इस आंदोलन में बंगाली जनता के पीछे देश की संपूर्ण भारतीय जनता खड़ी है, इसका एहसास इस अधिवेशन से हुआ। इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर बंगाल के विभाजन को रद्द करने का आह्वान ब्रिटिश राजसत्ता से किया गया।

वंदे मातरम की दृष्टि से यह अधिवेशन स्मरणीय रहा। रविंद्रनाथ की बड़ी बहन स्वर्ण कुमारी की बेटी सरला देवी चौधरानी और उनके पति रामभुज दत्त इस अधिवेशन में उपस्थित थे। सरला देवी का हाल ही में विवाह हुआ था। भगिनी निवेदिता और उनकी सहकर्मी अबला बसु भी अधिवेशन में उपस्थित थीं। अधिवेशन शुरू हुआ और दर्शकों में से आग्रह होने लगा कि सरला देवी चौधरानी वंदे मातरम गीत गाएं। सरला देवी चौधरानी एक उत्तम कवियत्री और गायिका भी थीं। श्रोताओं के इस आग्रह से अध्यक्ष नामदार गोखले चिंतित हो गए। बंग भंग विरोधी आंदोलन की पृष्ठभूमि के कारण वंदे मातरम शब्दों के उच्चारण पर भी जिलाधीश ने प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे समय में मंच से ही वंदे मातरम का गायन होना नरमपंथी गोखले जी को खतरनाक लगने लगा। अंततः श्रोताओं के आग्रह के कारण उन्होंने सरला देवी से कहा कि वंदे मातरम की शुरुआती कुछ पंक्तियां ही गाएं। परंतु सरला देवी ने अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम गाना शुरू किया और पूरा गाकर ही समाप्त किया।

वंदे मातरम की घोषणाओं से सारा अधिवेशन गूंज उठा। इसी समय सरला देवी ने ये गीत गाते हुए सप्त कोटि कंठ इन शब्दों की जगह त्रिशत कोटि कंठ शब्द बदल दिए। वंदे

0: मातरम के शब्दों में किया गया ये पहला बदलाव था। इस अधिवेशन में एक और ऐतिहासिक घटना घटी, वो ये कि भारत के पहले राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन इसी अधिवेशन में पहली बार हुआ। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भी एक ध्वज के नीचे नहीं लड़ा गया था। ब्रिटिश राज सत्ता से जूझते समय अपनी स्वतंत्र पहचान वाला भारत का राष्ट्रध्वज होना चाहिए, ये विचार सन 1900 के बाद सामने आया। 1905 में बनारस में हुए इस कांग्रेस अधिवेशन में पास के एक अलग मंडप में स्वदेशी वस्तुओं की एक प्रदर्शनी लगाई गई थी। इस प्रदर्शनी के बीचों बीच भारत का कहा जाने वाला पहला ध्वज जानबूझकर प्रदर्शित किया गया था। विशेष बात ये कि पूरी तरह भारतीय संकल्पना वाले इस ध्वज की मूल परिकल्पना जन्म से विदेशी और मन से पूरी तरह भारतीय बन चुकी मार्गरेट नोबल यानी भगिनी निवेदिता की थी।
1: लाल रंग के इस वर्गाकार ध्वज पर बीच में इंद्र के वज्र का पीले रंग का चित्र था। इस चिन्ह के एक ओर वंदे और दूसरी ओर मातरम, ये बांग्ला लिपि के शब्द थे। ध्वज के किनारों पर 108 पीली ज्योतियां थी। यह ध्वज उस प्रदर्शनी में केवल प्रदर्शित हुआ, उसे कहीं भी फहराया नहीं गया, इसलिए इसे पहले ध्वज का दर्जा नहीं मिल सकता। फिर भी तैयार किया गया यह आद्य राष्ट्र ध्वज ही माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन रहे वंदे मातरम शब्दों का इस पहले ध्वज पर उपयोग किया जाना सबसे महत्वपूर्ण बात है। वंदे मातरम शब्दों का महत्व और सामर्थ्य जैसे जैसे सामान्य जनता के ध्यान में आने लगा, वैसे वैसे अंग्रेज सरकार को उसका उपद्रव महसूस होने लगा। सरकार ने वंदे मातरम गाने या शब्द उच्चारने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के कारण वंदे मातरम का प्रभाव और बढ़ने लगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन को वंदे मातरम, स्वदेशी का समर्थन, विदेशी माल का बहिष्कार, इन बातों ने और अधिक बल दिया।
0: अगस्त को टाउन हॉल में हुई सभा के कारण बंगाल के विभाजन का आम जनता में जो विरोध था, उस सभा में उसकी हुई तीव्र निंदा और स्वदेशी का आग्रह, ये बातें पूरे देश में फैल गईं। उसमें से पहली बड़ी चिंगारी महाराष्ट्र के पुणे में गिरी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में बंगाल के विभाजन पर और कर्जन पर अत्यंत कठोर शब्दों में टीका की थी। स्वतंत्रता वीर विनायक दामोदर सावरकर उस समय पुणे में फर्ग्यूसन महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। 1 अक्टूबर को एक सभा बुलाकर युवा सावरकर ने पुणे के लोगों से विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया।
1: इस सभा में समाचार पत्र काल के संपादक शिवराम महादेव परांजपे और नची केड़कर उपस्थित थे। इस सभा के बाद बाहर गांव से लौटे लोकमान्य तिलक तक ये बात पहुंची तो उन्होंने विदेशी कपड़ों की होली और बड़े पैमाने पर करने का सुझाव दिया। 7 अक्टूबर 1905 के दिन लकड़ी पुल के पास मुठा नदी के किनारे पूरे पुणे में घूमकर इकट्ठा किए गए और जुलूस के साथ बड़ी गाड़ी पर लादकर वहां लाए गए विदेशी वस्त्रों की होली की गई। इस होली की आग ब्रिटिशों के लंदन स्थित राज सिंहासन तक पहुंचे बिना नहीं रहेगी, ऐसा भाषण उस समय लोकमान्य तिलक ने दिया। वंदे मातरम की घोषणाओं के बीच जलती लपटों ने पूरा वातावरण उज्जवल कर दिया। पुणे में हुई विदेशी वस्त्रों की उस विशाल होली के बाद पूरे देश भर में ऐसी होलियां जलने लगी।
0: 1905 के अंतिम 4 महीने ऐसे ही जबरदस्त हलचल के बीते। विभाजन विरोधी आंदोलन की तीव्रता बढ़ी, फिर भी नए आए लॉर्ड मिंटो ने कर्जन की ही नीति आगे चलाई। कर्जन और फुल्लर के जैसे वागबाण न छोड़ते हुए इस आंदोलन के नेताओं को कभी मीठी मीठी बातों से फुसलाकर तो कभी धमकी देकर कार्रवाई का डर दिखाकर इस आंदोलन की हवा निकालने का वे प्रयास कर रहे थे। परंतु आंदोलनकारियों का निश्चय और पक्का होता गया, जिससे लॉर्ड मिंटो भी दमन की नीति और कड़ाई से लागू करने लगे। इसी आंदोलन के कारण पूरे विश्व को ब्रिटिश राजसत्ता के उन्मत्त, अमानवीय और हिंसक व्यवहार का दर्शन हुआ। उसके लिए निमित्त बने वे वंदे मातरम शब्द और बारिसाल में हुआ राष्ट्रीय सभा के युवाओं का अधिवेशन।
1: आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम एक जय घोष, इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 30वीं कड़ी। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रिकर और मंदाकिनी जोशी, गायिका अपर्णा केलकर, संगीतकार अजय पराड़, तकनीकी सहयोग किरण बंग और अनुश्री गुप्ता, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल, इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान, कई राज्यों में लू की संभावना। हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। एक रिपोर्ट।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के सम्पन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
0: छात्रों को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी चिंताओं को समझती है और उन्होंने स्वीकार किया कि छात्रों के विश्वास को ठेस पहुंची है। श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि परीक्षा प्रक्रिया को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच त्रुटि रहित परीक्षा आयोजित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
2: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है। जो रक्षक था वही भक्षक हुआ। जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए, उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र के शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
0: परीक्षा प्रक्रिया में भविष्य में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए उठाए जा रहे ठोस कदमों के बारे में श्री प्रधान ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सबस्ट्रेट निर्माण तकनीक को भारत में लाने के लिए समझौता करने पर ओडिशा सरकार, इंटेल और 3DGS को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री वैष्णव ने कहा कि इससे भारत में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को और बढ़ावा मिलेगा। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और सुधारों तथा नीतिगत समर्थन के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है। आंध्र प्रदेश के 2 दिन की यात्रा के दौरान आश्रय सिंह ने कृष्णा जिले के मल्लावल्ली औद्योगिक पार्क में स्थित मोहन स्पिनटेक्स कंपनी का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भारत के वस्त्र बाजार का कारोबार 15 लाख करोड़ रूपये से अधिक है और सरकार वर्ष 2030 तक इसे बढ़ाकर 25 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक पहचान मिली है।
3: 12 साल अगर कंपेयर करूं मैं तो एक ही चीज कहा, इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो जो बेसिक चीजें हैं एजुकेशन में, IIT, एम्स, मेडिकल कॉलेज, ये कई ऐसे सवाल हैं। मोदी ने बेसिक चीजों को 12 साल में ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत अब तक 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि ये योजना सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा की पहल नहीं है, बल्कि नागरिकों को बिजली उपभोक्ता से बिजली उत्पादक बना रही है। इस योजना से परिवारों को बिजली के खर्च में कमी लाने, सरकारी सब्सिडी का लाभ उठाने और शून्य बिजली बिल की ओर बढ़ने में मदद मिल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर एक अभूतपूर्व सफलता थी, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 4 दिन में ही युद्ध विराम के लिए विवश कर दिया। ये भारत के अब तक के लड़े गए सभी युद्धों से अलग था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर स्मृति प्रकाशन जारी करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये प्रकाशन केवल ऐतिहासिक विवरण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वीर सैनिकों के व्यक्तिगत अनुभवों को भी समाहित किया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आधुनिक युद्ध के मानवीय पहलू की भी झलक देता है, जहां नेतृत्व, साहस, दबाव में निर्णय लेने की क्षमता और प्रतिबद्धता रणनीति को सफलता में बदल देती है। रक्षा मंत्री ने इस प्रकाशन से प्रेरणा लेने और देश की सुरक्षा तथा संप्रभुता को सुनिश्चित करने और बलिदान योग्य नागरिक बनने का आग्रह किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आंतरिक और वैश्विक शांति प्राप्त करने के लिए भक्ति और ध्यान को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया है। आज बंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन इंटरनेशनल सेंटर के 45वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भक्ति स्वयं, परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता के प्रति समर्पण का प्रतीक है। रिजर्व बैंक ने आज अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि ऊर्जा की

0: की कीमतों, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और वैश्विक बाजार में अस्थिरता जैसी चुनौतियों के बाद भी मजबूत व्यापक आर्थिक बुनियादी कारक चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास गति को बनाए रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉरपोरेट और बैंकिंग क्षेत्रों की स्वस्थ बैलेंस शीट, साथ ही पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर ध्यान आर्थिक विकास को मजबूती प्रदान करेगा। इसमें भू राजनीतिक संकट और पश्चिम एशिया संघर्ष वैश्विक विकास तथा मुद्रास्फीति को प्रभावित करने वाली प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरे हैं। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज संसद भवन परिसर में संसदीय कार्य मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मेघवाल ने कहा कि बैठक में सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी कार्यों में हिंदी के प्रभावी, सरल और व्यापक उपयोग पर सार्थक चर्चा हुई। श्री मेघवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिंदी भाषा को सुशासन, जनभागीदारी और लोकतांत्रिक संवाद का एक सशक्त माध्यम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज बंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। हालांकि श्री सिद्धारमैया को कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। इस दौरान उन्हें कोई भी कार्यकारी निर्णय लेने से मना किया गया है। श्री सिद्धारमैया ने कल लोकभवन में अपना इस्तीफा सौंपा था। भारत के लिए पेट्रोलियम ला रहा एक टैंकर होर्मुस जलडमरू मध्य से सफलतापूर्वक निकल चुका है। ये जानकारी समुद्री यातायात पर नजर रखने वाली कई वेबसाइट से मिली है। टैंकर निसोस केरोस होर्मुस जलडमरू मध्य को पार कर विशाखापट्टनम की ओर बढ़ रहा है। इसके 3 जून को वहां पहुंचने की उम्मीद है। ईरान की सरकारी ईरान एजेंसी ने बताया है कि ईरान के प्रस्तावित पारगमन शुल्क को लेकर जारी तनाव के बीच इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने 24 घंटों में 23 वाणिज्यिक जहाजों को जलडमरू मध्य से गुजरने की अनुमति दी। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA पर बातचीत इस वर्ष के अंत तक पूरी कर लेने की प्रतिबद्धता दोहराई है। व्यापार और निवेश मंच पर भारत कनाडा संयुक्त वक्तव्य में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने महत्वाकांक्षी और परस्पर लाभकारी CEPA समझौते के लिए प्रतिबद्धता दोहराई। सशस्त्र सीमा बल ने 2 थाई महिला नागरिकों को भारत नेपाल सीमा के खारेबारी क्षेत्र से नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार कर लिया। ये महिलाएं फर्जी आवेदन मोहरों का इस्तेमाल कर नेपाल में प्रवेश करने की कोशिश कर रही थीं। जांच जारी है। दिल्ली सरकार 21 जून को होने वाली नीट UG परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को दिल्ली परिवहन निगम की सभी बसों में मुफ्त यात्रा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उम्मीदवार वैध प्रवेश पत्र दिखाकर मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली एकीकृत अगली पीढ़ी की विमानन, मौसम और कोहरे की निगरानी प्रणाली स्काईकास्ट का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन मिशन मौसम के अंतर्गत किया गया है। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि इस नई प्रणाली का उद्देश्य हवाई अड्डे पर मौसम की निगरानी और कोहरे के पूर्वानुमान को मजबूत करना है।
1: आज हम विमानन क्षेत्र के जरिए देश को एक इंटीग्रेटेड मौसम निगरानी सिस्टम समर्पित कर रहे हैं। यह सिस्टम हवाई यात्रियों, एयर क्रू और पायलटों को मौसम का सटीक अनुमान लगाने में सक्षम बनाएगा, खासकर उस समय जब कोहरे और धुंध वाले मौसम में प्रदूषण और हवा में मौजूद अन्य कणों के कारण दृश्यता काफी प्रभावित होती है। यह एक इंटीग्रेटेड उपकरण स्काईकास्ट के माध्यम से संभव होगा।
0: मौसम विभाग ने जून से सितंबर के बीच दक्षिण पश्चिम मॉनसून के मौसम में देश भर में सामान्य से कम वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। मीडिया को संबोधित करते हुए विभाग के महानिदेशक डॉ. मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून माह में देश की औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की सबसे अधिक संभावना है।
2: 2026 के जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। अभी जून महीने के तापमान की

0: बात करें तो हरियाणा, पंजाब, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गुजरात और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ क्षेत्र में सामान्य से अधिक हीट वेव कंडीशन डेवलप होने का उम्मीद किया जा रहा है। हालांकि राजस्थान और झारखंड में सामान्य से कम उष्ण लहर होने का संभावना है।
1: मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों के लिए तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। तटीय आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ के कुछ हिस्सों में आज भी लू चलने की आशंका है। रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी में गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीटों ने ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। महिला वर्ग में 100 मीटर दौड़ में निपम ने कांस्य पदक जीता। इस स्पर्धा में पदक जीतने वाली वे पिछले 25 वर्ष में पहली भारतीय महिला बनी। वहीं महिला ट्रिपल जंप में साधना रवि ने रजत पदक जीता। नितिन गुप्ता ने पुरुष वर्ग में 5000 मीटर पैदल चाल का खिताब जीता। पुरुषों के अंडर 18 एशिया कप में भारत ने आज जापान के काका मिगाहरा में कजाकिस्तान पर 13-0 की शानदार जीत दर्ज की। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिवंगत नेता की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर फैसला सुनाने का निर्देश दिया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई और योग्य छात्रों के हितों की सुरक्षा का आश्वासन। पीएम सूर्य घर योजना को महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल। इसके अंतर्गत 40 लाख मकानों की छत पर सौर पैनल लगाए गए। मौसम विभाग का जून में पूरे देश में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान। कई राज्यों में लू की संभावना। और हांगकांग में आयोजित अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलीट निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: झनक झनक पायल बाजे, इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी ने से लिखा, वसंत देसाई का संगीत था।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली।

0: की खनक, जादू की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती की सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो, बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
3: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

गीत गाया पत्थरों ने, ये था फिल्म का नाम। किशोरी अमोनकर और सखियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे विविध भारती से।

0: ने इसे लिखा और नौशाद ने संगीत दिया इस गीत का।
1: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जो शहीद हुए हैं जरा याद करो कुर्बानी।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे।

फिल्म प्यासा से ये गीत अभी आप सुन रहे थे। गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और एसडी बर्मन का संगीत था।

0: फिल्म बंदिनी से आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार ने इसे लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: आप सभी सुनने वालों को आपकी सखी चंचल वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सखियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है, जिसे हम एक बार गवा दें तो फिर वापस कभी नहीं पा सकते। सखियों, वो अनमोल पूंजी है समय। दुनिया भर की दौलत लुटाकर भी हम गुजरा वक्त नहीं खरीद सकते। बीता हुआ एक भी पल कभी वापस नहीं आता। सखियों, हम भी आपके समय की कीमत को समझते हैं। आप सब लगातार प्रयास करती हैं हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए। आप अपना सारा काम छोड़कर लगातार अपना समय हमें देती हैं। और देखिए ना, स्टूडियो के फोन की घंटी लगातार बज रही है, तो देखें पहला कॉल कहाँ से आया है और किस सखी ने हमें ये कॉल किया है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली जी, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रही हैं और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: मैं संगीता फुलमाली बात कर रही हूँ, इंदौर से, न्यू चित्रा नगर वेलोसिटी के पीछे से।
0: संगीता जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: जी, मेरा बुटीक है, मैं ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड भी कटिंग मास्टर है, जो रेडीमेड फ्रॉक उनकी कटिंग करते हैं फैंसी।
0: तो आप दोनों का काम अलग अलग रहता है या एक साथ मिलकर काम करते हैं आप?
1: जी, वो मतलब मार्केट भी जाते हैं तो वहीं पे दुकान पे मतलब कटिंग वगैरह करते हैं, कारीगर उन बनाते हैं माल।
0: अच्छा,
1: और मैं घर पे ब्लाउज वगैरह बनाती हूँ।
0: तो आप ऑर्डर्स किस तरह लेती हैं, किस तरह से आपको ऑर्डर्स मिलते हैं, इस बारे में कुछ बताएंगी हमें?
1: जी, मेरा तो गिराकी काम है मैम, मैं मतलब ब्लाउज वगैरह लेडीज होनी आती है बनवाने के लिए। हाँ, सूट सलवार राजस्थानी पोशाक सब बना लेती हूँ मैम।
0: आपने कहीं से सीखा था या?
1: जी, सीखा था मैम, और मेरे पति भी सीखे हुए पहले से, तो उन्होंने और मुझे

0: गया था, ट्रेन कर दिया।
1: और पिछले कितने सालों से आप इस काम को कर रही हैं?
0: मैं कम से कम 6-7 सालों से कर रही हूँ।
1: अच्छा, इसके अलावा हाँ। जिस तरह से आजकल बैग बनाने का काम भी बहुत चल रहा है, ऐसे काम भी करती हैं सिर्फ जो महिलाओं की पोशाकें हैं वही बनाती हैं आप?
0: सिर्फ पोशाक होने ना वही बनाती हूँ, ब्लाउज सब।
1: अच्छा, आपके अलावा घर में और कौन कौन है आपके?
0: मेरे पति है और मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है 10 साल का पूरा कंप्लीट।
1: अच्छा, और काम करते करते आप रेडियो भी सुनती रहती हैं?
0: जी मैम, रेडियो तो मैं कई सालों से सुन रही हूँ, कम से कम 10-15 साल से ज्यादा ही हो गए, और मेरा पहली बार कॉल लगा है इसमें।
1: आपको बहुत बहुत बधाई, आपका कॉल लग गया। अब ये बताइए कि आप आज गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: जी थानेदार फिल्म का, और भला क्या मांगू मेरा रब से, मुझे तेरा प्यार मिला।
1: आपकी
0: मैं मेरे
1: पसंद
0: पति का नाम लेना चाहूंगी मैम।
1: हाँ जी मैम, ले लीजिए।
0: उनका नाम है गुड्डू फुलमाली, और राजवाड़े पे मतलब मास्टर है, कटिंग करते हैं।
1: तो आपको सुनवाते हैं थानेदार फिल्म का, आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो
0: आप कौन बात कर रही हैं?
1: सहेली, हम प्रेरणा प्रलखन लरे नांदेड़ से बात कर रहे हैं।
0: नांदेड़ से प्रेरणा बात कर रही हैं।
1: हाँ,
0: प्रेरणा जी, कैसी हैं आप?
1: बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं?
0: मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेरणा जी, मुझे बताइए आप क्या
1: मुझे भी
0: करती
1: बहुत,
0: हैं?
1: मैं घर पे हूँ। मेरे बीए तक पढ़ाई हुई है
0: जी
1: और मुझे अभी अंधत्व आया है। मैं 100% अब अंधी हो गई हूँ। उसके
0: जी
1: बाद मैंने एक्यूप्रेशर एंड मसाज का कोर्स किया। अभी मैं हजारों पेशेंट अच्छे करती हूँ
0: बहुत अच्छी बात
1: और
0: है।
1: घर का सारा काम भी करती हूँ।
0: देखिए, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि कई बार हमारे अंदर ऐसी कोई कमी आ जाती है, चाहे अनचाहे, लेकिन उससे उबर कर हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन पाते हैं। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, खुद को भी संभाल रही हैं, अपने परिवार को संभाल रही हैं, और कितने अन्य लोग हैं जिन्हें आप अपनी सेवाएं दे रही हैं।
1: हाँ, बहुत सारे लोग गए, उनकी बहुत पीड़ा मैंने बहुत अच्छी तरह से ठीक किया उनको।
0: तो किस तरह का काम होता है आपका, बताएंगी?
1: कौन से भी पेशेंट आए, मैं लेडीज को ही देखती हूँ, और
0: जी
1: स्पर्श किया तो किस नाड़ी में क्या प्रॉब्लम है ये मुझे समझ में आता स्पर्श करने के बाद ही। तो मैंने
0: सिर्फ नाड़ी
1: नाड़ी
0: देखकर आप रोग का पता
1: देख,
0: लगा लेती हैं।
1: हाँ, नाड़ी देखकर सिर्फ मैं स्पर्श कर सकती हूँ। उसके बाद का कोई मुंह टेढ़ा होना, अर्धांग वायु, पेट का दर्द, घुटनों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसे सब मैंने ठीक किए हैं। ज्यादा
0: और जो रोगी होते हैं ना, ठीक होने में कितना समय लग जाता है?
1: दिन से रोगी है तो ज्यादा दिन लगेंगे, कम है तो कम लगेंगे। एक लड़का मेरे पास आया था, 6.5 साल का बच्चा था, वो जन्म से ही कभी चलता ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको 1.5 महीने में अपने पैरों पे खड़ा किया और 3 महीनों में वो काठी के सहारे चलना सिखाया।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। उन माता पिता को कितना अच्छा लगा होगा आपके उपचार के बाद में, कि जो बच्चा चल नहीं
1: हाँ,
0: सकता था उसे आपने अपने पैरों पर खड़ा कर दिया।
1: बहुत उनको अच्छा लगा, उन दोनों ने बहुत दुआई दी।
0: उपचार के लिए आप
1: अब
0: कोई दवाइयां देती हैं या?
1: नहीं, दवाइयाँ नहीं, मैं सिर्फ अपने स्पर्श से नाड़ी देखती हूँ और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाती हूँ और मसाज करती हूँ।
0: आप रेडियो किस वक्त सुनती हैं फिर, क्योंकि मरीजों को देखने के बाद में आपको कब समय मिलता है रेडियो सुनने के लिए?
1: वो चालू ही रहता है रेडियो, क्योंकि मैं घर पे ही मरीज को देखती हूँ, दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं कभी नहीं जाती बाहर।
0: अच्छा,
1: घर का खाना बनाना, बच्ची को स्कूल भेजना, पेशेंट देखना, काम करते करते ये सुनती भी हूँ और काम भी करती हूँ।
0: आपकी बच्ची कितनी बड़ी है?
1: मेरी बच्ची अभी 8 साल की है।
0: तो फिर तो बड़ी मुश्किल होती होगी आपको उसे भी संभालने के लिए।
1: नहीं, मुझे कुछ मुश्किल नहीं होती, अंदर से मुझे बहुत सारी निसर्ग ने शक्ति दी है। बीच में ही ऐसे अंदर तो आने के बाद कोई भी ऐसे ही हो जाता, लेकिन मैं अपने हिम्मत से खड़ी हुई और मैंने 2 साल की बच्ची अडॉप्ट की वाली है।
0: प्रेरणा जी, आपका जो नाम है आप इसे सार्थक कर रही हैं। आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बन रही हैं और हमें भी बहुत अच्छा लगा आपके बारे में जानकर, आपकी कहानी सुनकर। अब ये बताइए कि आप कौन सा गीत आज सुनना चाहती हैं?
1: मेरे बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और यादों की बारात का चिरा लिया है मैंने ये दिन को।
0: आपको सुनवाते हैं यादों की बारात फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: नमस्ते सहेली जी, बताइए कौन बोल रही हैं और कहाँ से आप बात कर रही हैं?
1: मैं उत्तराखंड से पुष्पा डोबरियाल बोल रही मैम।
0: पुष्पा डोबरियाल
1: जी,
0: उत्तराखंड से बात कर रही हैं?
1: जी मैम।
0: उत्तराखंड के कौन से शहर से बात कर रही हैं?
1: देहरादून शहर से बोल रही मैम।
0: अरे बहुत खूबसूरत शहर है आपका।
1: जी मैम, थैंक यू। और मैम तो आपके प्रोग्राम सारे सुनते हैं मैम।
0: मैडम हमें देहरादून के बारे में कुछ बताइए। बहुत खूबसूरत शहर है और ये ऐसा शहर है इस समय पर खास तौर पर वहाँ चहल पहल रहती होगी क्योंकि जब गर्मी से लोगों को
1: आजकल तो बहुत ट्रैफिक इतना है मैम कि बहुत मतलब यात्री कई कई टूरिस्ट आते रहते हैं। मसूरी है यहाँ से और ऋषिकेश, राम झूला, लक्ष्मण झूला और हरिद्वार, यहाँ से सारे आते रहते हैं यहाँ पे।
0: आपने जितनी भी जगहों के अभी नाम लिए ना, ये सब वो जगह हैं मध्य भारत में और उत्तर भारत में गर्मी बहुत तेज हो जाती है ना, तो उस गर्मी से राहत के लिए ऐसी जगह पर ही जाना लोग पसंद करते हैं। और वहाँ का जो वातावरण है ना,
1: मसूरी मसूरी हो गया, केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ हो गया, हेमकुंड साहिब हो गया और हरिद्वार, ऋषिकेश, यहाँ पे तो टूरिस्ट बहुत ज्यादा आ रखे मैम आजकल।
0: अच्छा आप बताइए आप क्या करती हैं?
1: मैं तो घर पे ही रहती मैम।
0: पुष्पा जी, घर पर समय काटने के लिए आपका सबसे पसंदीदा काम कौन सा होता है?
1: मेरे को तो साफ सफाई अच्छी लगती है मैम और रेडियो सुनना।
0: अच्छा, रेडियो के कौन से प्रोग्राम आपको सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: सखी सहेली, हेलो फरमाइश।
0: आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: पतंग फिल्म का गाना सुना दीजिए।
0: तो आपको सुनाते हैं पतंग फिल्म का गाना जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैडम।
0: हाँ बताइए, आप कौन बोल रही हैं?
1: हम आरती वर्मा बोल रहे हैं कानपुर से। हाँ
0: कानपुर से आरती जी बात कर रही हैं। आरती जी, कानपुर में तो बहुत गर्मी होगी ना इस समय,
1: हाँ मैं भी, गर्मी तो पड़ रही बहुत।
0: और अभी गर्मियों की छुट्टी भी चल रही होंगी बच्चों की,
1: हाँ छुट्टी चल रही है।
0: तो बच्चों को बाहर जाने से रोकना पड़ता होगा ताकि वो धूप में जाकर परेशान ना हो जाएं।
1: हाँ मैडम जी, घर ही में रखते हैं, निकलने नहीं देते, बाहर बहुत धूप रहती है, इसी वजह से अंदर रखते हैं बच्चों को।
0: आरती, आप क्या करती हैं बताइए?
1: हम घर ही में रहते हैं मैडम, घर ही के काम काज करते हैं।
0: अच्छा, आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं आज?
1: हम नगीना का सुनेंगे, तेरी दुश्मन दुश्मन तू मेरा।
0: नगीना फिल्म का ये गीत आपको सुनवा
1: हाँ
0: रहे हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, कौन सी सखी बात कर रही हैं हमसे?
1: मैं त्रिपुरा से, मैं बुल्टी दास बोल रही हूँ। जी
0: बुल्टी दास त्रिपुरा से बात कर रही हैं। क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउस वाइफ।
0: जी, मुझे बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं?
1: जी जी मैम सुनती है। हेलो सहेली, हेलो फरमाइश।
0: इसके अलावा आपके परिवार में और कौन कौन हैं?
1: एक बेटा, दुई बेटी,
0: एक बेटा और दो बेटियां हैं आपकी।
1: हस्बैंड।
0: अच्छा, मुझे बताइए त्रिपुरा जो शहर है, इसका मौसम कैसा रहता है? यहाँ सर्दी गर्मी ज्यादा होती है या बारिश ज्यादा होती है?
1: बारिश बारिश बारिश होती है मैम, ज्यादा बारिश।
0: तो अभी तो बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, फिर वहाँ बहुत बारिश होंगी।
1: ओह जी मैम, बहुत बारिश चलते हैं। फिल्म
0: सखी, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: का नाम अंधा कानून, गाने का भूल है रोते रोते हंसना।
0: रोते रोते हंसना सीखो, ये अंधा कानून फिल्म का गाना है जो आज आप सुनना चाहती हैं।
1: जी
0: आपको सुनवाते हैं बुल्टी दास जी, आपकी पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और शुरू करते हैं सिलसिला सखियों के फोन कॉल्स का। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: सहेली अपना नाम बताइए, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से आपने कॉल किया है हमें?
1: मेरा नाम मोनिका साहू है, मैं बोरिया खुर्द रायपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: मोनिका साहू जी, अपने बारे में कुछ बताइए हमें कि आप क्या करती हैं?
1: मैं बीएससी फोर्थ सेम में हूँ अभी और मेरे अभी फोर्थ सेम के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं।
0: अच्छा, आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर रही हैं और आपको रेडियो सुनने के लिए समय मिल जाता है अपनी पढ़ाई, स्कूल कॉलेज वगैरह सबसे?
1: हाँ, कभी कभी नहीं मिल पाता तो फिर मैं मोबाइल में सुन लेती हूँ, और जब मिलता है फोन तो मतलब या फिर नहीं मिलता घर में सुनती हूँ। हमारे घर में हम लोग सभी रेडियो में सुनते हैं विविध भारती।
0: और मोबाइल पर जब आप सुनती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप पर सुनती हैं?
1: नहीं, मैं ज्यादातर तो यूट्यूब पे ही सुनती हूँ क्योंकि उसमें लाइव और सारे वीडियोस मिल जाते हैं मुझे मेरे सुनने वाले पे, जैसे सखी सहेली, हेलो फरमाइश, ये सब मैं सुनती हूँ।
0: तो जो पुराने प्रोग्राम है उन्हें सुनती हैं या लाइव सुनती हैं यूट्यूब पर आप?
1: लाइव भी सुनती हूँ और पुराने प्रोग्राम भी सुनती हूँ मैं।
0: आप लाइव सुनना चाहती हैं तो न्यूज ऑन एयर ऐप के जरिए आप सभी प्रोग्राम सुन सकती हैं।

0: नौकरी वगैरह करना चाहती हैं?
1: मैं वैसे तो टीचर बनना चाहती हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मैं अभी भी मेरे भाई को और मेरे आस पड़ोस में जितने भी लोग हैं उनको पढ़ाती हूँ, समझाती हूँ।
0: तो ये आप ट्यूशंस लेती हैं या इसी तरह बस यूं ही मदद करने के लिए आप पढ़ाती हैं?
1: नहीं, मैं ट्यूशंस नहीं लेती हूँ, बस ऐसे ही कभी किसी को डाउट हो जाता है तो
0: अच्छा।
1: उन्हें क्लियर करती हूँ, और अपने लिए भी करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है किसी को किसी चीज़ के बारे में अच्छे से बताना और समझाना।
0: बहुत अच्छा काम होता है एक शिक्षक का, और आप इस काम को चुनना चाहती हैं। बहुत सारे लोगों को राह दिखाएंगी, और शिक्षक वो काम है जो बहुत सारे लोगों के लिए एक खुद जलकर रोशनी फैलाता है। और आप बताइए कि आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मुझे मासूम पिक्चर का लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा सॉन्ग सुनना है।
0: क्या बात है, आपकी उम्र के हिसाब से जो छोटे बच्चों वाली सोच है और जैसी पसंद है आपकी, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। सुनवाते हैं आपको अपनी पसंद का ये गीत, जिसे हमने लिया है मासूम फिल्म से।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो, नमस्ते मैम
0: नमस्ते, मुझे बताइए आप कौन सखी बात कर रही
1: जी।
0: हैं?
1: मैं इंदौर से बोल रही हूँ, जीनत परवीन
0: इंदौर से जीनत परवीन बात कर रही हैं।
1: जी।
0: जीनत जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: हाउस वाइफ मैम
0: तो घर पे करने के लिए काम बहुत सारे होते हैं, जो शायद बाहर
1: जी
0: महिलाएं जाती हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम एक घर में काम करने वाली महिला को होते हैं। और आपके घर में कौन कौन है जीनत जी?
1: जी हस्बैंड है, मैं हूँ और बच्चे हैं, तीन लड़के। सबसे छोटे वाला 13 साल का है बस, और एक 15 साल के और एक 21 साल का।
0: तो अभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तीनों?
1: जी दो पढ़ाई कर रहे हैं और बड़े वाले उनके पापा के साथ जाते हैं ड्यूटी।
0: तो अपने पिताजी के काम है उसमें वो हाथ बटाते हैं।
1: जी वो
0: आपके पति क्या काम करते हैं?
1: आरओ का प्लांट ये बनाते हैं, जो उस पर फैक्ट्रियों में लगते हैं ना बड़े बड़े,
0: जी
1: तो बाहर का काम है सब, अमेरिका और यहाँ जाते हैं तो

0: बड़े प्लांट बनते हैं।
1: और आप बताइए, आप घर में समय काटने के लिए क्या क्या करती हैं?
0: अपना काम निपटा लेती हूँ 1 बजे तक,
1: हाँ
0: और रेडियो सुनती रहती हूँ। सुबह से चालू जाता है रेडियो 7 बजे से, तो रात के 11 बजे तक चलता है। और फिर अपने काम निपटा के 3 बजे रेस्ट करती हूँ, तो अपने लिए समय निकालती हूँ थोड़ा। जी
1: जब आप अपने लिए समय निकालती हैं तब आपका पसंदीदा काम क्या होता है?
0: नहीं, बस यही रेडियो सुनती रहती हूँ, और उसमें कभी नींद आ जाती है, थोड़ी देर लेट जाती हूँ।
1: आज कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
0: शान पिक्चर का सुनूंगी, यम्मा यम्मा यम्मा यम्मा ये खूबसूरत समा।
1: सुनवाते हैं आपको शान फिल्म का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली।
0: अपना नाम बताइए, आप कौन बात कर रही हैं और कहाँ से आपने हमें कॉल किया है?
1: हाँ, मैं सोनू बोल रही हूँ, भोपाल से। जी
0: भोपाल मध्य प्रदेश से सोनू बात कर रही हैं। सोनू जी, अपने बारे में बताइए, आप क्या करती हैं?
1: घर में ही रहती हूँ मैं, आपके प्रोग्राम सुनती हूँ और एक ब्यूटिशियन भी हूँ।
0: अच्छा, ब्यूटिशियन का काम भी करती हैं और आपको खाली समय में रेडियो सुनना पसंद है?
1: हाँ, रेडियो तो पूरा ही टाइम सुनती हूँ, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक।
0: आप ये बताइए, आपका जो ब्यूटी पार्लर है वो आपने घर में ही किसी हिस्से में बनाया है या कहीं अलग से आपका ब्यूटी पार्लर है?
1: घर में ही है, साइड
0: अच्छा
1: में बनाया है, शॉप जैसा।
0: अच्छा और कितने समय से आप अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं?
1: हाँ, पार्लर चलाते हुए तो 22 साल हो गए मेरे को। जी,
0: फिर तो आपका बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ होगा।
1: सारे काम कर लेती हूँ, इस टाइम के भी, पुराने टाइम के भी, सभी आता है मुझे।
0: अपने काम में अपनी एक पहचान बनाना ये बहुत जरूरी होता है और आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लोगों को सजा संवार रही हैं, खूबसूरत बनाती हैं। और गीत किस तरह के सुनती हैं, संगीत किस तरह का पसंद है आपको? जैसे विविध भारती के सारे ही प्रोग्राम आप सुनती हैं, तो कौन से?
1: भारती के तो सभी प्रोग्राम

0: बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन पुराने गाने ज्यादा पसंद है मुझे।
1: आपका पसंदीदा कार्यक्रम
0: हेलो
1: कौन सा है?
0: सहेली फेवरेट है मेरा, हेलो फरमाइश फेवरेट है।
1: ये बताइए कि गीत कौन सा सुनना चाहती हैं?
0: 20 साल बाद पिक्चर का गाना है, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे कि लोग हमें याद करेंगे। अनुराधा जी और मोहम्मद अजीज की आवाज में है ये, और मिथुन वाली 20 साल बाद पिक्चर है ये।
1: ठीक है, आपको सुनवाते हैं ये गीत, हम तुम्हें कितना प्यार करेंगे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं खुशी कौशल बात कर रही हूँ इंदौर से।
0: इंदौर से खुशी कौशल बात कर रही हैं।
1: जी हाँ।
0: आपका शहर तो बहुत खूबसूरत है और खास तौर पर इंदौर जाना जाता है अपनी साफ सफाई के लिए।
1: जी, मुझे बहुत गर्व है कि मैं इंदौर शहर में रहती हूँ। मतलब प्राउड होता है इंदौर का नाम लेके। हाँ
0: इंदौर का जब हम नाम सुनते हैं तो एक बहुत साफ सुथरी जगह की छवि हमारे जहन में आती है, और आप जैसे जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, इसका बहुत बड़ा सहयोग है कि ये शहर इतना सुंदर है और साफ भी है।
1: जी
0: खुशी, आप क्या करती हैं?
1: मैम, मैं स्टूडेंट हूँ अभी 10th क्लास में।
0: 10वीं में जाएंगी, मतलब 9वीं की आपने परीक्षा दी है अभी,
1: हाँ
0: तो अब 10वीं के लिए तो बहुत अच्छी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी,
1: जी मैम।
0: क्योंकि 10वीं वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से आपकी पढ़ाई की नींव डलती है,
1: जी
0: और फिर इसके बाद में ही आपको अपना करियर चुनने के लिए आगे और क्या पढ़ना है इसमें बहुत मदद मिलती है।
1: जी मैम।
0: खुशी, आप क्या करना चाहती हैं आगे चलकर, क्या बनना चाहती हैं?
1: मैम, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरी मम्मी का सपना था कि मैं मेरी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगी।
0: बहुत अच्छा सपना आपकी मम्मी ने देखा है, लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप जरूर एक दिन बहुत बड़ी कामयाब डॉक्टर बने। और मुझे बताइए
1: जी
0: कि पढ़ाई आप करती हैं, फिर आप रेडियो सुनती हैं, तो ये आपकी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनता, या आपको?
1: नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है रेडियो सुनना। मैं जब बचपन से छोटी थी, मेरे पापा मम्मी दोनों रेडियो सुनते थे। मुझे इतना अच्छा लगता है रेडियो सुनना, मतलब ऐसा लगता है कि तो मेरी फैमिली ही रेडियो। मैं आपसे एक बात बोलना चाहती हूँ। मैंने पापा मम्मी को आज तक मैंने ऐसे सामने से नहीं बोला, पर मैं रेडियो के माध्यम से बोलना चाहूंगी। पापा मम्मी, आप वर्ल्ड के बेस्ट पेरेंट्स हो। मुझे आप दोनों पे गर्व है कि आप मुझे इतना प्यार करते हो।
0: बहुत अच्छी बात है खुशी की, आप जैसी प्यारी बिटिया उनकी है, और खुशी को बहुत खुशी हो रही है कि आज इसका कॉल लग गया, और खुशी से बात करके हमें भी खुशी हो रही है। तो अब बताइए खुशी की, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मेरे मम्मी पापा के लिए अलग गीत सुनना चाहूंगी, मुझे माफ करना, ओम साईं राम।
0: सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का ये वाला गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: कौन सी सहेली हमसे बात कर रही है इस समय?
1: जी, मैं हर्षिता गुजराती बात कर रही हूँ।
0: हर्षिता जी, कहाँ से कॉल लगाया है आपने?
1: मैं हरपन मौला कलाकार किशोर कुमार की नगरी खंडवा मध्य प्रदेश से बात कर रही हूँ।
0: क्या बात है, आपने जो अपने शहर का परिचय दिया है ये बड़ा अच्छा
1: जी
0: था।
1: जी जी मैं बहुत दिनों से हेलो सहेली में फोन ट्राई कर रही थी, आज सफलता मिल ही गई।
0: अच्छा, आप किशोर कुमार
1: जी
0: की नगरी में रहती हैं, तो क्या आपने
1: जी
0: कभी किशोर कुमार का जो वहां पर निवास स्थान है वो देखा है जाकर?
1: जी मैं स्थान पर गई हूँ,
0: जी
1: और जो किशोर कुमार की नगरी है वहाँ पे समाधि है, मैं वहाँ भी गई हूँ। वहाँ पे कार्यक्रम होते रहते हैं, मेरे पापा के साथ में जाती हूँ, मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट है।
0: और आपको भी किशोर कुमार के गाने पसंद हैं,
1: जी
0: और आपके पिताजी को भी किशोर कुमार के ही गाने पसंद होंगे
1: जी
0: ज्यादा।
1: पापा तो पहले से ही किशोर कुमार, रफी साहब, इन सभी के गीत सुनते थे, और धीरे धीरे फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ा, तो उसके बाद फिर मैं पापा से जुड़ गई इस चीज के लिए।
0: हर्षिता, आप क्या करती हैं?
1: मैंने एमकॉम की डिग्री प्राप्त करी है देवी
0: जी
1: अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से,
0: जी

0: और अभी मैं संस्कार भारती की स्कूल सरस्वती विद्या मंदिर में इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ।
1: अच्छा, अपनी डिग्री लेने के बाद में अभी आपने पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया है।
0: जी जी
1: बहुत अच्छी बात है, एक शिक्षक के कांधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इसे आप निभा रही हैं।
0: बिल्कुल जी।
1: और आपके फ्यूचर के क्या, भविष्य के क्या योजनाएं हैं?
0: मेरी भविष्य की यही योजना है कि मैं संस्कार भारती से जो जुड़ी हुई हूँ, विद्या भारती से,
1: जी
0: वहाँ जितना मुझसे हो सके मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगी। वहाँ से मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ।
1: और आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं हर्षिता?
0: मैं आज नाइट इन लंदन फिल्म से बाहोशो हवाज दीवाना,
1: रफी साहब का गाया हुआ।
0: जी जी जी
1: हर्षिता, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का नाइट इन लंदन फिल्म का ये गाना।

0: आज के हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने वाली सभी सखियों का धन्यवाद। आप सभी सखियों से अनुरोध है कि जिनके कॉल आज के कार्यक्रम में शामिल हो गए, अगले 2 महीने तक वो कॉल ना करें, ताकि हमारी अन्य सखियों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ने का मौका मिल सके। हेलो सहेली कार्यक्रम में कॉल करने के लिए आपको करना होगा अगले मंगलवार तक का इंतजार। आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर पर 022-400-2462, 022-28-670-288। नंबर आपको फिर से बता देते हैं 022-400-2462। एक अन्य नंबर है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 022-28-670-288। आज के हेलो सहेली कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर हैं मंगेश सांगले, संपादन सहयोग मिला नम्रता टिकोले से, विविध भारती की ओर से हेलो सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज के हेलो सहेली कार्यक्रम से दीजिए चंचल वर्मा को इजाजत। नमस्कार
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: गीतों भरी कहानी, आइए आज सुनते हैं विधि जैन की लिखी गीतों भरी कहानी रिश्ते। वाचन स्वर विधि जैन का।
2: वक्त की मार, रिश्तों का सार। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। जीवन में अगर देखा जाए तो मनुष्यता की पहचान रिश्ते ही तो है। ये रिश्ते कभी रक्त के बंधन होते हैं तो कभी प्रेम के। ऐसे ही रिश्तों को सहेजना अति आवश्यक कार्य है, क्योंकि मन का सुकून और शांति इससे ही है। आज की कहानी इन्हीं रिश्तों के सम्मान और आवश्यकता की है। चलते हैं गांव की ओर, जिस गांव का नाम है शिवपुर।

शिवपुर गांव की सुबह हमेशा शांत और सौम्य होती थी। तलैया के पास खड़े बरगद के पेड़ के नीचे बुजुर्गों की बातें और सूरज की पहली किरण फसल पर पड़ते ही पूरा गांव मानो जाग उठता। प्रेम है एक दूसरे का, सत्कार है और साथ ही है अपनापन। मंदिर की घंटियां, रहट की आवाजें, गाय का रंभाना, बच्चों की खिलखिलाहट, पनघट पर पनिहारियों की हंसी ठिठोली और संतोष के साथ गुजर बसर करते लोग। इसी गांव के एक कोने में पुराना लेकिन बेहद स्नेह से भरा घर, राम नारायण का घर। राम नारायण और उनकी पत्नी कमला गांव में सबके आदर का पात्र हैं। मेहनती, ईमानदार और रिश्तों को सबसे ऊपर रखने वाले। इनके दो बेटे विक्रम और अमित बचपन से ही एक दूसरे की छाया की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। दोनों में इतना गहरा प्रेम है कि लोग उदाहरण देते हैं कि राम नारायण के दोनों बेटे सच में राम लक्ष्मण जैसे हैं। एक दूसरे के लिए तो सदा खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए भी साथ में खड़े हो जाते हैं। राम नारायण जी ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा दी है तो माँ यानी कमला जी ने उन्हें सांसारिक और आध्यात्मिक। कुल मिलाकर दोनों बालक ऐसे हैं जैसी चाह सभी को होती है और सभी चाहते हैं उनके बच्चे भी ऐसे ही हो जाएं।

विक्रम बड़ा भाई है तो स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार और शांत भाव का है, और अमित छोटा है तो यह तो तय है कि वह चंचल होगा, पर दिल का साफ है। बच्चे विद्यालय जाते, थोड़ा खेलते, पढ़ते और खेतों में पिता के साथ काम करते। माँ के हाथ का बना भोजन बिना नानुकुर के बड़े प्रेम से करते, और शाम को मित्रों के साथ कभी कभी गांव के मेले में भी घूम आते। दोनों की हंसी सुनकर लगता जैसे घर में कभी कोई तूफान आ ही नहीं सकता। प्रेम देखकर लगता कि कोई शक्ति इन्हें अलग कर ही नहीं सकती। जीवन का सारा पाठ बचपन में ही सीख लिया है इन्होंने, और यह सब देखकर रामनारायण जी और कमला जी ईश्वर को धन्यवाद देते। और रामनारायण जी अक्सर कहा करते, मेरी असली कमाई असली धन ये दोनों हैं।

समय बीतता गया। पढ़ाई में होशियार तो थे ही, सो बड़े होते होते दोनों शहर में जाकर पढ़ने लगे और यहीं से आवो हवा बदलने लगी। शहर की चकाचौंध रास आने लगी और मासूमियत कहीं खोने सी लगी। फिर दोनों के जीवन में नए सपने, नए विचार, आगे बढ़ने की आकांक्षा, अनंत तक चलने की दौड़ का हिस्सा बनने की चाह, और जो कि बिल्कुल गलत नहीं था, हर किसी को आगे बढ़ना और नई संभावनाएं खोजना भी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य यह था, इन्होंने कई बातें मासूमियत के कारण सीखी ही नहीं, तो बड़ा बनने की लालसा ने इनके अंदर थोड़ा थोड़ा लालच भी भर दिया। अब विक्रम का विवाह सीमा से हुआ, जो महत्वाकांक्षी थी, परंतु महत्वाकांक्षा के गुण के साथ एक अवगुण भी था, स्वार्थ परता का। उसे सब कुछ अपने हिसाब से और स्वयं के लिए चाहिए था। उसके हिसाब से तो दुनिया भी उसके लिए ही घूम रही थी, परंतु प्रेम के वशीभूत विक्रम ने उसे पसंद कर लिया और इन अवगुणों पर ध्यान तक ना दिया। वहीं अमित की शादी गांव की सादगी भरी राधा से हुई, जो परिवार को जोड़कर रखने में विश्वास करती थी। उसके भी सपने थे जीवन के, पर चाहत सभी के साथ उनको पूरा करने की। दोनों के मन में लालच तो पहले से आ ही चुका था, और विवाह के बाद घर की हवा बदलने लगी। धीरे धीरे ख्वाहिशें विष का काम करने लगी, और जहां कल तक दोनों एक दूसरे के लिए समर्पित थे, आज विषवेल फैलने लगी थी। लालच, अहंकार, स्वार्थ अपनी जड़ें जमाने लगे थे, और इसका प्रभाव पूरे परिवार पर दिख रहा था।

घर की बड़ी बहू विक्रम की पत्नी सीमा अक्सर कहती, इतनी बड़ी जमीन है लेकिन फायदा कुछ नहीं, बांट लेना चाहिए। हमारा अपना भी तो परिवार है, उसको देखना है, कब तक सबको ढोकर चलेंगे। और वहीं छोटी बहू अमित की पत्नी यानी राधा यह सोचकर दुखी होती, जमीन तो रहती ही है पर रिश्ते टूट गए तो घर कैसे रहेगा। हमारा भविष्य अपनों के साथ है, संस्कार है, अपनापन है और यही तो जीवन की पूंजी है। और विक्रम अमित दोनों अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस कड़वाहट का पता ही नहीं चला। कहां क्या अंधकार पनप रहा है जीवन की चकाचौंध में वह देख ही नहीं पाए। धीरे धीरे उनके दिलों में दूरियां और बढ़ने लगी। रामनारायण कमला जी प्रयास कर रहे थे, देख रहे थे कि किसी तरह से इसे संभाल लिया जाए, दोनों बेटों को समझा रहे थे, परंतु उनकी सुनता कौन था। शायद उनके पास सब कुछ संभालने के लिए समय भी बहुत कम बचा था।

कमला यानी दोनों की माँ रात को अक्सर आंगन में बैठकर दीपक की लौ देखते हुए कहती, नारायण जी हमसे कहाँ गलती हो गई। जो लड़के एक रोटी में साथ खा लेते थे आज एक घर में रहने से डरते हैं। कल तक जिन पर पूरा गांव गर्व करता था वैसे ही बालक बनाने की प्रार्थना करता था, आज हम भी लोगों के किस्सों में शामिल हो गए। और वह रोने लग जाती। वहीं रामनारायण जी के पास कोई उत्तर नहीं था, चुपचाप सुनते और दोनों माता पिता जागती आंखों में ही रातें बिता दिया करते।

अब लालच का पेड़ बहुत बड़ा वटवृक्ष बन चुका था और इसी लालच ने रूप ले लिया था बहस का, विवाद का। और एक सुबह जमीन बांटने की बात पर दोनों भाइयों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। परिवार का छोटा बेटा में चिल्लाया, भैया माँ बाप की सेवा की बात करो, तुम बस जमीन के हिस्से गिनते हो, माता पिता की आवश्यकताओं को तो देखना भी आवश्यक लगता नहीं तुम्हें, सब सब मैं अकेले कर रहा हूँ। बड़े बेटे विक्रम ने गुस्से में जवाब दिया, और तुम तो बस यही चाहते हो कि मैं कुछ भी ना बोलूं, सब तुम्हें मिल जाए, सेवा का दिखावा करके पूरा मेवा अकेले खाना चाहते हो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और यही विवाद बैठक से गुजरता हुआ रसोई तक पहुंच गया। साथी सीमा और राधा दोनों के बीच तनाव बढ़ता गया और यह तनाव इतना बड़ा कि रसोई में बना भोजन अमृत नहीं विष का काम करने लगा और दूरियां बढ़ती जा रही थी। और बूढ़े हो चुके माता पिता ने जब रोकने की कोशिश की, अपनी असहायता भी दिखाई, संस्कारों की दुहाई भी दी, उनके बचपन का प्रेम भी याद दिलाया, यूं कहें कि सारे हथकंडे अपना लिए, पर दोनों भाइयों की आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी थी कि प्यार की सारी बातें उसमें ही दब गईं और ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है और आगे कोई रास्ता नहीं। क्रोध में आकर एक दिन अमित घर छोड़कर गांव के दूसरे सिरे पर रहने चला गया ताकि वह विक्रम की पूरी संपत्ति को हत्या लेने वाली बात को गलत साबित कर सके। और विक्रम अपने माता पिता से अलग हो गया क्योंकि पहले भी सेवा तो अमित ही कर रहा था और वह सेवा अब समाप्त हो गई थी। उसी रात कमला ने रोते रोते कहा, नारायण जी अब इस घर की दीवारों में भी हमें अपनापन नहीं लगता, प्रभु ही कोई राह दिखाए।

कुछ ही महीनों में लगातार तनाव से पहले रामनारायण बीमार पड़े। डॉक्टर ने कहा उन्हें शांति चाहिए, लेकिन घर में शांति कहाँ थी, तनाव बढ़ता ही जा रहा था। वैसे सच है, कभी कभी हम बच्चे अपने स्वार्थ में अपने माता पिता की उम्र का भी नहीं सोचते, उनके जीवन के अंत का कारण तक बन जाते हैं। और यहाँ यही हो रहा था। पिता के बीमार होने पर भी दोनों बेटों में बहस जारी रही, पैसों की, जमीन की, जिम्मेदारी की। और एक दिन सुबह राम नारायण ने अंतिम सांस ले ली, और जिसका सब कुछ टूटा था वो थी केवल कमला जी। कल तक जिससे सारे दर्द कह लेती थी, आज वो भी चला गया, सब खत्म कर गया। और 2 महीने बाद लगातार यही दुख झेलते झेलते वे भी संसार से चली गई। मृत्यु के पहले उन्होंने बस इतना ही कहा, काश तुम दोनों फिर से एक हो जाओ। ये बात सुनकर भी दोनों भाइयों का अहंकार कम नहीं हुआ। उनके अंतिम संस्कार तक में वो दूर दूर बैठे थे। काश मां की अंतिम इच्छा सोचकर ही एक हो जाती।

अंतिम संस्कार के बाद पंडित हरिदास, जो कि राम नारायण जी के अभिन्न मित्र थे, दोनों को किनारे पर ले गए और थोड़ी कठोर और सच्ची आवाज में कहा, पिता की चिता ने तुम दोनों को जुदा नहीं किया, तुम्हारे लालच ने उन्हें मिट्टी में मिला दिया। तुम लोग जमीन बांटने में लगे रह गए, तुम्हारे हाथों के रिश्ते जलकर खाक हो गए। विक्रम, अमित, क्या किया तुमने? अपने माता पिता को ही खो दिया अपने लालच में। विक्रम और अमित का सीना भारी उठा। पहली बार दोनों ने महसूस किया कि वे वास्तव में अकेले पड़ चुके हैं, आगे सब अंधकार है। उन्हें पछतावा लग रहा था, कल तक जो एक दूसरे की गलतियां खोज रहे थे, आज कहीं ना कहीं अपनी गलतियां देखने लगे थे। कहा भी है ना, किसी को एक अंगुली दिखाने पर तीन अंगुलियां अपनी ओर रहती हैं, और यहां भी यही हो रहा था। कल तक जो एक उंगली उठी थी, आज उन तीन उंगलियों को भी देख पा रहे थे जो उनकी ओर थी।

अगले कुछ दिन तक घर एकदम खाली सा पड़ा था। दीवारें भी रो रही थी, सन्नाटा था, जीवन में पछतावा था। और पछतावा उम्र भर का कि काश हमने समझा होता तो शायद हमारे माता पिता हमारे साथ होते। एक दिन अमित चुपचाप घर आया। उसने देखा कि विक्रम अकेला बैठा है, माता पिता की तस्वीर साफ कर रहा है। दोनों की आंखें मिली और बिना बोले आंसू बह पड़े। विक्रम ने कांपती आवाज में कहा, अमित माता पिता को तो खो दिया, अब नहीं चाहता कि तुझे भी खो दूं। अमित ने हाथ पकड़ते हुए कहा, भैया दिल में प्यार हमेशा था, बस लालच और गुस्से ने आंखों पर पर्दा डाल दिया था। दोनों पहली बार लंबे समय के बाद गले मिले। दोनों ने एक दूसरे से क्षमा मांगी। इधर राधा और सीमा भी रो पड़ी। उन्हें भी अपनी भूलों का एहसास हुआ।

पंडित हरिदास और गांव के बुजुर्गों ने उन्हें सलाह दी कि तोड़ने वाली ताकतें बहुत होती हैं, पर जोड़ने के लिए संगठन चाहिए। दोनों भाई उसी शाम गांव के किसानों की बैठक में शामिल हुए। वहां जमीन को जोड़कर खेती करने, आधुनिक तरीकों को अपनाने और एक साझा संगठन बनाने पर चर्चा की। विक्रम बोला, हम दोनों ने जमीन बांटने की गलती की, अब हम इसे जोड़कर एक साथ खेती करेंगे। अमित ने समर्थन किया और गांव वालों के लिए भी एक किसान संगठन बनाएंगे ताकि कोई परिवार हमारी तरह ना टूटे, गांव तरक्की करे। हम सभी मिलकर ऐसी खेती करेंगे जिसमें कोई रसायन का प्रयोग ना हो। सोलर सिस्टम से हम पूरे गांव की बिजली की समस्या का निदान करेंगे। हम मिलकर करेंगे तो गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। साफ सफाई, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य, सबका प्रयास अपने परिवार के लिए नहीं, अपने गांव के लिए करेंगे और गांव को आदर्श गांव बनाएंगे। यही हमारे माता पिता के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी और हमारी ओर से क्षमा याचना भी। गांव वालों ने तालियां बजाकर स्वागत किया।

0: हुजूर अब आए कदम चूम लूं या के आंखें बिछा दूं करूं क्या।
1: संगठन बनने के बाद गांव की उपज दुगनी होने लगी, किसानों को बाजार में उचित दाम मिलने लगा, युवक युवतियां गांव छोड़कर शहर जाने के बजाय यहीं रोजगार पाने लगे, रिश्तों में खटास कम होने लगी। विक्रम और अमित ने मिलकर राम नारायण कमला कृषि सहयोग समिति इस नाम से अपने माता पिता की याद में एक केंद्र बनाया। गांव में जब कोई लड़ाई या मनमुटाव होता तो लोग कहते, जाकर विक्रम अमित से बात करो, उनका घर टूटकर

कई सालों बाद विक्रम ने संगठन की सभा में कहा, माता पिता को खोना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन उनकी यादों ने हमें एक कर दिया। हम समझ गए, जमीन, पैसे, चीजें सब दोबारा मिल सकती हैं, पर रिश्ते टूट जाएं तो दोबारा नहीं बनते, और यदि बनते हैं तो संगठन एकता और प्रेम से ही बनते हैं। सभा में बैठे प्रत्येक व्यक्ति की आंखें भर आईं। गांव के बच्चे आज भी कहानी सुनते हैं कि कैसे विक्रम और अमित ने लालच से घर को तोड़ा और प्यार और संगठन से फिर से बना लिया।

रिश्ते। अभी आप सुन रहे थे विधि जैन की लिखी ये गीतों भरी कहानी उन्हीं के स्वर में। संपादन सहयोग काजल भदरगे का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
2: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
2: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
0: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं।
3: एक 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। पेश है युवा श्रोताओं को संबोधित कार्यक्रम युवा वाणी।

0: दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने युववाणी कार्यक्रम में। कार्यक्रम के साथ आज मैं आपका अपना आशीष वर्मा। और दोस्तों आपका आज का ये कार्यक्रम समर्पित है आकाशवाणी के गौरवशाली आकाशवाणी 890 अभियान को, जिसके अंतर्गत देश भर में युवाओं को रेडियो, ज्ञान और संवाद की परंपरा से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में पीएम श्री बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज ओबरा जनपद सोनभद्र में आकाशवाणी के माध्यम से एक भव्य प्रश्न मंच प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता, समसामयिक विषयों की समझ और मंच पर आत्मविश्वास के साथ अपनी प्रतिभा प्रस्तुत करने की भावना को विकसित करना था। विद्यालय परिसर में आयोजित इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने अत्यंत उत्साह और ऊर्जा के साथ भाग लिया। कार्यक्रम का वातावरण ज्ञान, जिज्ञासा और प्रतिस्पर्धा की भावना से सराबोर दिखाई दे रहा था। प्रतियोगिता में विभिन्न विषयों जैसे कि सामान्य ज्ञान, विज्ञान, इतिहास, खेल, साहित्य, भारतीय संस्कृति और आकाशवाणी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे। विद्यार्थियों ने न केवल तेजी से उत्तर दिए बल्कि अपनी सूझबूझ और समझदारी का भी शानदार परिचय दिया। उनमें से कई प्रश्न ऐसे थे जिन्होंने बच्चों की स्मरण शक्ति और तर्क क्षमता दोनों की परीक्षा ली। इस कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के शिक्षक और प्रधानाचार्य ने विद्यार्थियों का उत्साह वर्धन करते हुए कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं केवल जीत हार तक सीमित नहीं रहती बल्कि यह विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास का महत्वपूर्ण माध्यम भी बनती हैं। मंच पर बोलने का आत्मविश्वास, टीम भावना, अनुशासन और सीखने की प्रेरणा, बच्चों में ये सभी ऐसे आयोजनों से विकसित होते हैं। आकाशवाणी ने पिछले 90 वर्षों में देश की संस्कृति, शिक्षा, संगीत, साहित्य और जन जागरूकता को घर घर पहुंचाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और इसीलिए रेडियो आज भी एक ऐसा माध्यम है जो लोगों को जानकारी, मनोरंजन और संवेदनाओं से जोड़ता है। खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में आकाशवाणी की पहुंच आज भी लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी हुई है और जिसमें आपका अपना युववाणी कार्यक्रम युवाओं को अपनी बात रखने, अपनी प्रतिभा दिखाने और समाज से जुड़ने का अवसर प्रदान करती है। आज के डिजिटल युग में भी रेडियो की आत्मीयता और उसकी विश्वसनीयता लोगों के दिलों में कायम है। यही कारण है कि आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि संस्कृति, संवाद और ज्ञान की उस परंपरा का सम्मान है जिसने पीढ़ियों को जोड़ा है। इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, आपको सुनवाते हैं आकाशवाणी ओबरा द्वारा आयोजित इस प्रश्न मंच प्रतियोगिता के संपादित अंश। स्थलीय ध्वनिंकन और संपादन आशीष वर्मा और रानी राजश्री का, प्रस्तुति सहयोग अचल श्रीवास्तव का और प्रतियोगिता के प्रस्तुतकर्ता हैं सचिन कुमार वर्मा। आइए सुनते हैं।
1: जैसा कि हम लोग सब यहाँ पर उपस्थित भी हैं इसीलिए क्योंकि आकाशवाणी अपने 90 वर्षों को सेलिब्रेट कर रहा है और आप सभी स्टूडेंट्स प्रतियोगिता के माध्यम से आप चीजों को समझेंगे, जानेंगे और आकाशवाणी से यानी कि रेडियो से किस तरह से आपका जुड़ाव है इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और जैसा कि 90 वर्षों का ये जो सफर है, आकाशवाणी लगातार इतने वर्षों से समाचार के माध्यम से, जागरूकता अभियानों के माध्यम से, संदेशों के माध्यम से जन जन तक यानी कि आम जनता तक पहुंच रखता है और चीजों के प्रति जागरूक करता है और समझदारी एक तरह से बढ़ाता है। और खासकर आप युवा हैं तो युवा को भी एक कनेक्शन के साथ ये जोड़ता है कि कैसे आप आगे चलकर क्या क्या स्कोप है, इसके बारे में भी आकाशवाणी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से आपको बताता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं इस प्रतियोगिता का। आकाशवाणी अपने प्रश्न मंच प्रतियोगिता के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है आपके समक्ष, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो जो हमारा पहला राउंड है वो है क्विज, यानी कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसका आप एक शॉर्ट आंसर देंगे और इसके बाद हमारा जो दूसरा राउंड होगा एक्सटेम्पोर, यानी कि आपको सिर्फ 2 मिनट का समय दिया जाएगा जिसमें आप लगातार अपने चुने हुए विषय के बारे में आप बोलेंगे। और आकाशवाणी की तरफ से मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ रानी राजश्री और
2: मैं आशीष वर्मा
1: और हम सभी के साथ मौजूद हैं अचल श्रीवास्तव जी और कार्यक्रम अधिशासी हैं सचिन कुमार वर्मा जी। तो चलिए इस प्रतियोगिता के पहले राउंड की शुरुआत करते हैं क्विज के इस राउंड के साथ।
2: तो टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी, आप सभी लोग तैयार हैं? तो फिर प्रश्नों की वर्षा की जाए। चलिए ठीक है, प्रश्न मंच पहला राउंड यहीं से शुरू होता है और आपके लिए पहला प्रश्न यही है, आकाशवाणी ओबरा की फ्रीक्वेंसी क्या है?
3: टीम सी।
2: टीम सी ने हाथ सबसे पहले उठाया है, बताइए।
4: आकाशवाणी ओबरा की फ्रीक्वेंसी है 102.7।
2: बहुत सही, 102.7। और दूसरा प्रश्न अब आपके लिए ये है कि आकाशवाणी इस साल अपने कितने वर्ष पूरे कर रहा है? टीम सी ने सबसे पहले हैंड राइज किया।
4: आकाशवाणी इस साल अपने पूरे 90 वर्ष पूर्ण कर रहा है।
2: बहुत बधाई, बहुत सही उत्तर आपने दिया। आकाशवाणी इस बार अपने 90 वर्ष की गौरवशाली यात्रा को पूर्ण कर रहा है। और अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं।
1: और अगला प्रश्न है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है?
2: फिर से टीम सी, क्या बात है?
4: 14 सितंबर।
2: बहुत सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
1: और अगला प्रश्न है कि जैसा कि संविधान हमें हर चीज का अधिकार देता है, तो ये लागू कब हुआ था हमारा संविधान?
2: टीम डी।
5: हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था।
2: बहुत सही, बिल्कुल सही जवाब,
3: बिल्कुल सही जवाब।
2: और कैसा लग रहा है आप लोग को ये बताइए पहले, अच्छा लग रहा है, तैयार है? चलिए ठीक है, फिर अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। टीम सी का कॉन्फिडेंस ज्यादा अच्छा दिख रहा है। हम लोग का जो ओबरा शहर है या जनपद सोनभद्र किस चीज के लिए मशहूर है, किस चीज के लिए से जाना जाता है?
3: टीम सी।
2: टीम सी ने हैंड राइज किया है।
4: विद्युत उत्पादन के लिए।
2: बहुत सही जवाब। यही तो ऊर्जा की नगरी बोलते हैं इसे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आकाशवाणी आपको यही चीजें समझाती है, यही चीज बताती है कि अपनी जो भी बात है उसको बेधड़क बोलिए, कहना सीखिए, बोलना सीखिए। तो अपने दिल की बात दिल में नहीं रखिए, कोई माइनस मार्किंग नहीं, आप लोग भी प्रयास करिए। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा,
1: बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है, मतलब किस संस्था से जुड़ा है?
2: टीम मेड।
6: ये वाक्य जो है वो आकाशवाणी संस्था से है।
2: बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब। इसका अर्थ मालूम है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये प्रश्न नहीं है, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे।
7: समाज के हित के लिए या सुख के लिए?
2: बिल्कुल। और अब आप सभी के लिए अगला प्रश्न, प्रश्न ध्यान से सुनिएगा और उत्तर दीजिएगा, प्रश्न बहुत आसान है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था?
3: टीम बी।
8: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था।
2: गलत जवाब। अब हम जाते हैं इस प्रश्न के उत्तर के लिए टीम डी के पास।
5: लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था।
2: बिल्कुल सही जवाब, लाल बहादुर शास्त्री जी का कहना था जय जवान जय किसान। अब अगले प्रश्न की बारी है, ठीक है?
1: अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है,
2: जिसे हम योगा डे कहते हैं?
3: टीम डी।
2: टीम डी हैंड राइज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है।
9: 21 जून को।
2: बस यही तो सही जवाब है, 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इसे किसने लिखा है?
3: टीम डी।
5: सारे जहां से अच्छा इकबाल जी ने लिखा है।
2: बहुत सही जवाब, मोहम्मद इकबाल की ये रचना है सारे जहां से अच्छा।
1: अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है?
3: टीम डी।
2: टीम डी एक बार फिर से हाथ उठाते हुए।
5: भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है।
2: हाँ, बिल्कुल सही जवाब। आपको उत्तर पता था तो हाथ उठाने में देर क्यों की?
1: जैसे ही लगे कि आंसर आ रहा तुरंत।
2: हाँ, साइना नेहवाल किस खेल के लिए जानी जाती हैं? टीम ए ने हाथ उठाया है, बताइए।
7: बैडमिंटन।
2: बिल्कुल सही जवाब। और अब आपके लिए अगला प्रश्न आ रहा है ये,
1: भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है?
2: टीम सी।
7: थार डेजर्ट।
2: थोड़ा कॉन्फिडेंस।
7: थार डेजर्ट।
2: बिल्कुल सही जवाब। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? टीम बी।
7: 5 जून।
2: बहुत सही, बहुत सही, 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं।
1: और ये राउंड लगभग आधा हो चुका है, कैसा लग रहा है? सही है। और अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं?
2: टीम सी।
7: भारतीय संसद के दो सभा होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा।
2: बिल्कुल सही जवाब। आकाशवाणी, जिसे हम शॉर्ट में AIR भी कहते हैं, इसका पूरा नाम क्या है AIR का? टीम ए।
10: ऑल इंडिया रेडियो।
2: बिल्कुल, टीम ए ने इस प्रश्न का उत्तर दिया है और इसका सही जवाब है ऑल इंडिया रेडियो। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
9: ऑस्कर पुरस्कार ये किस फील्ड के लिए, किस क्षेत्र से संबंधित है?
2: टीम ए,
11: खेलकूद।
2: सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। और अब बताइए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? टीम डी हैंड राइज करते हुए।
5: भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे।
2: बहुत सही जवाब। टीम डी लगातार आगे अपनी बढ़त बढ़ाते हुए।
9: और अगला प्रश्न है कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? टीम सी,
7: मार्स को।
2: सही जवाब। इतना कौन, थोड़ा कॉन्फिडेंस।
7: मार्स को लाल ग्रह।
2: सही जवाब। जोरदार तालियां हो जाए एक बार। बहुत बढ़िया। रामचरितमानस के रचयिता कौन थे? टीम सी,
7: रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी थे।
2: बिल्कुल सही जवाब।
9: और इस राउंड का आखिरी प्रश्न, और वो है कि कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? टीम डी,
5: कबड्डी के टीम में 6 होते हैं, एक्स्ट्रा रखा जाता है।
9: एक बार जोरदार तालियां हो जाए।
2: बिल्कुल। तो अब हमारा पहला राउंड यहीं समाप्त होता है। दूसरे राउंड की ओर हम आगे बढ़ेंगे बस अब से थोड़ी ही देर में, जहां आपको कुछ पर्चियां दी जाएंगी और उस पर्ची में जो भी सब्जेक्ट, जो भी थीम आपको मिलेगी उसी पर आपको 2 मिनट लगातार बोलना होगा। बस हम दूसरे राउंड के साथ तुरंत हाजिर होते हैं।
12: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: और अब दूसरे राउंड की प्रतियोगिता के साथ हम फिर से हाजिर हो चुके हैं। दूसरा राउंड जिसमें आप सभी को किसी एक विषय पर बोलना है और इसके संदर्भ में आप लोगों को पर्चियां मिल चुकी हैं, टॉपिक्स मिल चुके हैं, तो आप सब तैयार हैं? ठीक, नियम और शर्त बस इतनी है कि 2 मिनट का आपको समय मिलेगा जिसमें आपको जो विषय आपको मिला उस पर अपनी बात, अपनी भावनाएं व्यक्त करनी, आपको बताना है 2 मिनट लगातार। इसमें जो आपको मार्क्स मिलेंगे वो 5 अंक मिलेंगे, वो भी आपके प्रेजेंटेशन पर और आपका जो कंटेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। तो टीम ए, टीम बी, टीम सी और डी, तैयार आप लोग? तो चलिए पहले हम जानते हैं कि आपको टॉपिक्स क्या क्या मिले हैं। टीम ए,
4: करें योग रहे निरोग।
3: करें योग रहे निरोग, आपको कैसा लगा ये टॉपिक?
5: बहुत अच्छा है टॉपिक।
3: टीम बी, आपको क्या टॉपिक मिला?
6: रेडियो का महत्व।
3: टीम सी, आपको क्या टॉपिक मिला?
7: स्वच्छता पे टॉपिक मिला है।
3: स्वच्छता पे, बहुत अच्छी बात। टीम सी,
8: आत्मविश्वास का महत्व।
3: आत्मविश्वास अंदर का कह रहा है कि हम इस विषय पे बोल लेंगे?
8: हाँ, कह रहा है।
3: बहुत अच्छी बात। तो चलिए चारों टीम अपने अपने टॉपिक्स के साथ तैयार है। चारों टीमों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं कि टीम ए आए और अपने विषय के साथ अपनी भावनाएं व्यक्त करें।
9: तो अपना परिचय दें, यहाँ से शुरू करते हैं।
10: मेरा नाम अनीता वर्मा है, मैं क्लास 12th की छात्रा हूँ और मैं राजकीय बालिका इंटर कॉलेज से हूँ। और मेरा आज का टॉपिक है करे योग रहे निरोग।
9: आपका परिचय?
11: मेरा नाम रश्मि है, मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र है और मेरा टॉपिक है करे योग रहे निरोग।
10: आज हम योग के बारे में आप सभी लोगों को एक जानकारी देंगे। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है और योग के गुरु का नाम है गुरु वशिष्ठ। योग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूज शब्द से मिलकर बना है। योग हमारे शारीरिक तथा मानसिक क्रियाओं पर प्रभाव डालता है जो हमें पूर्ण रूप से स्वस्थ शरीर, अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। आजकल के अशुद्ध वातावरण में हमें अपने आप को कैसे स्वस्थ रखना है ये हमें योग सिखाता है। हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। योग हमें एक प्रशिक्षित गुरु के माध्यम से सीखना चाहिए जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी या किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचे। योग हमेशा खुले एवं स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए। योग के बारे में हमें कुछ जानकारी आकाशवाणी के माध्यम से भी मिलती है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें योग करने से हमारे मन को एकाग्रता पर ध्यान देता है जो हमें पढ़ाई, खेल कूद एवं अन्य सभी समस्याओं में भी समाधान करता है। योग करने से हमारा मन एकाग्रत रहता है।
9: टीम ए ने बहुत बढ़िया प्रयास किया और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं टीम बी। आपके परिचय के साथ शुरुआत करते हैं।
12: मेरा नाम रिया है, मैं क्लास 12th की छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को रेडियो का महत्व बताने जाती हूँ।
9: और आपका परिचय?
13: आप सभी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम पूजा है, क्लास 12th बी की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम PM श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र है और आज मैं रेडियो के महत्व के बारे में कुछ चर्चा करूँगी। और आप सभी को आकाशवाणी की 90 वर्ष की बधाई। समाज में आकाशवाणी के मतलब कार्य, अगर आकाशवाणी में मतलब जैसे मनोरंजन का साधन हो गया, उसमें देशभक्ति सॉन्ग और जैसे किसी का मन या मनोबल उसको मनोरंजन के लिए ठीक करने का होता है, जागरूकता में सहायक है। जैसे कि किसी का मतलब कार्य में ध्यान ना हो उसे जागरूकता रेडियो मतलब जो आकाशवाणी है उसे सहायक करता है। और जहाँ इंटरनेट की पहुँच है वहाँ आकाशवाणी की पहुँच है। और किसान को खेती बाड़ी में मदद करता है, जैसे खाद को कौन सा खाद डालना है और मतलब किस चीज़ का सिंचाई करना है, उसे कैसे बचाव करना चाहिए और उसके बारे में किस कीड़े मतलब रोके नहीं रख सकते।
9: ओके, और अच्छा प्रयास रहा। और अब हम आमंत्रित करने जा रहे हैं टीम सी को। आपका परिचय?
2: मेरा नाम शैल कुमारी है, मैं क्लास 11 की छात्रा हूँ और मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओबरा सोनभद्र है। आज हम आत्मविश्वास का महत्व टॉपिक पे कुछ चर्चा करेंगे।
6: मेरा नाम पलक सिंह है, मैं क्लास 10A की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज जो ओबरा सोनभद्र में स्थित है और हम आज जो हमारा विषय है आत्मविश्वास का महत्व उस पर चर्चा करेंगे।
9: बोलिए, टाइम शुरू होता है।
6: ऐसा कहा जाता है कि यदि मानव के अंदर उसका आत्मविश्वास है तो वह बड़ी से बड़ी सीढ़ी, बड़ा से बड़ा कार्य कर सकता है। किंतु अगर मानव के अंदर उसका आत्मविश्वास, उसका मनोबल, उसके अंदर की वह धारणाएं जिसके वजह से वो कार्य करता है वही खो जाएं, तो क्या मनुष्य के अंदर कोई साहस रहेगा कि वह कुछ करे, आगे बढ़े? यदि अगर मनुष्य अपना आत्मविश्वास ही खो दे तो वह अपना कोई भी कार्य नहीं कर पाएगा, उसे हर कार्य से डर लगेगा। अक्सर हमारे समाज में स्त्रियों को कहा, कुछ भी कार्य करने के लिए कह दिया जाता है कि अरे ये क्या करेगी, इससे वो अपना आत्मविश्वास अक्सर खो देती है। सोचती है कि जब लोग मुझे ऐसा कह ही रहे हैं तो क्या मैं सही में नहीं कर पाऊंगी। वो पहले ही उस कार्य को छोड़ देगी जो जिसका करने का उसके अंदर धारणा रहेगी। यदि वो अपने साहस को बनाए रखे, हमारे देश की ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्हें हम देख के आज भी अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि क्रीड़ा के क्षेत्र में साइना नेहवाल और आकाश को छूने वाली कल्पना चावला, सुनीता विलियम जैसे, और सबसे बड़ी

0: वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, जिसे हमारा भारत आज भी नहीं भूल पाया है, यदि हम उनके बारे में चर्चा करें तो हमारा आत्मविश्वास आज भी जागृत रहेगा। और ऐसा अब हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए खासकर हमारे समाज को सही करना जरूरी है, जो हमें अक्सर ये कहता है कि तुम नहीं कर पाओगी। हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी जी हमेशा कहते हैं कि यदि मनुष्य आत्मविश्वास पर निर्भर रहेगा तभी हमारा देश जो है वह आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकेगा, तभी यह एक आत्मविश्वासी भारत बन सकेगा। यदि मनुष्य ही अपना आत्मविश्वास मनोबल खो देगा तो दूसरा देश हमारे देश के आगे प्रचलित होता जाएगा एवं हमारे देश की सीढ़ियां पीछे गिरती चली जाएंगी। इसलिए हमें अपने मनोबल को हमेशा कायम रखना चाहिए। आकाशवाणी ओबरा द्वारा रविवार को बाल गोपाल नाम का कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें हमें ऐसी वार्ताएं सुनने को मिलती हैं जिसे हम सुन के अपने मनोबल को भी बढ़ा सकते हैं एवं अपने हर काम को करने के लिए अग्रण रह सकते हैं।
1: बहुत बढ़िया। और आत्मविश्वास का महत्व टीम सी का टॉपिक था और बेहद आत्मविश्वास के साथ इन्होंने इस टॉपिक को कहा।
2: और अब दूसरे राउंड में टीम डी हमारे सामने है, अपना परिचय दीजिए।
3: मेरा नाम दिव्यांशी कुमारी है, मैं क्लास 12 से हूँ, मैं PM श्री गर्ल्स इंटर कॉलेज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने स्वच्छता के बारे में कुछ बताना चाहूँगी।
4: मेरा नाम सृष्टि केसरी है, मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ और मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका इंटर कॉलेज है ओबरा सोनभद्र। मैं स्वच्छता के बारे में बताना चाहती हूँ।
2: चलिए ठीक है, टीम टी स्वच्छता के साथ तैयार है।
3: स्वच्छता एक ऐसी चीज है जिसे हर स्तर पे उसको पूरा करना जरूरी है, चाहे वह हमारे शारीरिक हो या फिर कोई भी क्षेत्र हो। जैसे हम पर्यटक के क्षेत्र में अपने घर, खुद अपने शरीर का स्वच्छता, जैसे कई एरिया में स्वच्छता रख सकते हैं। स्वच्छता से हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम भी ज़्यादा बढ़ सकता है। जैसे कि अगर हम अपने यहाँ के जो पर्यटक स्थल हैं, जहाँ हमारे यहाँ विदेशों से पर्यटक आते हैं, अगर हम वो स्थल साफ रखें, स्वच्छ रखें, तो हमारा जाहिर सी बात है कि इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो बहुत ऊपर तक जा सकता है। और हमारे ओबरा में उपस्थित आकाशवाणी ओबरा केंद्र, जहाँ से हमें अपने एरिया को या फिर अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखने के लिए जागरूक किया जाता है। स्वच्छता का अभियान हमारे भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर के पर्व पर 2 अक्टूबर को हमारे देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को स्वच्छता का अभियान शुरू किया है। स्वच्छता से लाभ बहुत सारी हैं, बहुत सारी हानियां भी हैं। जैसे लाभ से तो आपको पता ही होगा कि बहुत सारे लाभ होते हैं, बट मैं हानियां कुछ बताना चाहूँगी कि अगर आप जल को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हैजा, पेचिश और मलेरिया, बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है। इसीलिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और मैं आने वाली जनरेशन से उम्मीद करना चाहूँगी कि हर तरफ से स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें, ताकि हमारा देश एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित राज्य देश बन सके।
2: बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां हो जाए। चारों टीम परफॉर्म कर चुकी हैं और अब समय है उस निष्कर्ष पे पहुंचने का जहां पर आप सभी विजेता टीम का इंतजार कर रहे हैं। तो हम हाजिर हैं रिजल्ट के साथ और रिजल्ट ये है कि टीम सी इस प्रतियोगिता की विनर रही है। जोरदार तालियां हो जाए। और इस टीम में शामिल थी पलक सिंह और श्रीजल कुमारी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई, जोरदार तालियों से आप लोगों को। और इसके साथ ही टीम बी, टीम डी और टीम ए, आप लोग को भी जो भी आपने प्रयास किया अपनी क्षमता के साथ, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये प्रश्न मंच यहीं समाप्त होता है।
5: कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को सम्मानित तो किया ही गया, साथ ही सभी विद्यार्थियों को भविष्य में भी इस प्रकार के ज्ञानवर्धक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित भी किया गया। विद्यालय परिवार और आकाशवाणी के इस संयुक्त प्रयास ने निश्चित रूप से विद्यार्थियों के मन में सीखने और आगे बढ़ने की नई प्रेरणा जगाई है। आज के समय में जब युवा मोबाइल और सोशल मीडिया तक सीमित होते जा रहे हैं, तब आकाशवाणी जैसे मंच बच्चों को ज्ञान, संस्कृति और सकारात्मक संवाद से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। प्रश्न मंच प्रतियोगिता के सफल

0: समापन के पश्चात विद्यालय की प्रधानाध्यापिका इस विशेष आयोजन की प्रशंसा करते हुए अपने शब्दों में कहा,
1: मैं अलका वर्मा, प्रधानाचार्य पीएम श्री राजकीय बालिका इंटर कॉलेज ओपरा सोनभद्र की तरफ से आकाशवाणी के इस समस्त परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस तरह के कार्यक्रम कराकर बच्चों का मनोबल बढ़ाया, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया और मैं यही अपेक्षा रखती हूँ कि आगामी दिनों में भी आकाशवाणी द्वारा ऐसा कार्यक्रम किया जाए ताकि बच्चों का मनोबल और भी अच्छा हो और इनके द्वारा जो प्रयोग किए गए हैं वो भी और भी सार्थक हो, बच्चों में इसकी सूचना और भी अच्छी तरीके से जाए। इस बात के लिए मैं आकाशवाणी समूह को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
0: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: आकाशवाणी एट 90
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल
2: तो दोस्तों आकाशवाणी 890 केवल एक उत्सव नहीं बल्कि नई पीढ़ी को देश के संस्कृति और बौद्धिक विरासत से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। हमें उम्मीद है कि पीएम श्री बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज परिवार इस आयोजन का हिस्सा बनकर गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे। बस इन्हीं बातों और विचारों के साथ आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये अंक, आज की ये प्रस्तुति आपको जरूर अच्छी लगी होगी। और अब कार्यक्रम से मुझे यानी आशीष वर्मा को दे अनुमति, सुनते रहें, जुड़े रहें आकाशवाणी ओबरा के साथ।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण महिलाओं का कार्यक्रम घरनी।

सब बहन लोगन के राम राम। बहन लोगन देखा अपने बैठकी में हम हो जुट गई हूँ आप सबसे मुलाकात करे खातिर, कहे कि आप सबसे मिले का एगो मौका हम चुकल ना चाहेला। इतना प्रेम बा आप लोग से कि हम लोगन के मिले के मन करेला, बाकी सोचा ना ये घाम में का हाल होता। बस उहे कहावत हमके अब ही समझ में आवत आ ना कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए कि ये काक का दरिया है और डूब के जाना है। और बात ये ऐसने बा बहिन लोगन कि आप लोगन से इतना अच्छा लगेला बात करे में बतियावे में कि घाम के भी हम लोगन मात देवे के कोशिश करत हैं जा। बाकी बहन लोगन देखा ये आग का दरिया से जूझे के खातिर ना बस एक का तरीका बा अपन शरीर और मन के जल का दरिया बना ले हल। मने हमार कहनगी बा कि ताजा खाना पानी फल इस सब का नियमित सेवन करल जाए, और अपना देह के खातिर और अपने परिवार के खातिर, परिवार से जौन बाकी परिवार का जौन बाकी ध्यान पानी से भरपूर रखल जाए, और एकरे खातिर हम लोगों के ताजा फल फूल और जौन भी बा देखें आज तक काल जौन बाकी बाजारे में पानी से भरपूर तरह तरह के फल बांटे हो के तो आप लोग जानते हैं। और बहन लोगों देखा अपन सरकार भी ना हर घर में पानी मिले एकरा खातिर हर घर जल योजना का शुरुआत कैले, जौन कि देखा ये योजना जल जीवन मिशन का एगो हिस्सा है। एकर शुरुआत 15 अगस्त 2019 के अपन प्रधानमंत्री जी जन हुआ कि उनके द्वारा कैल गेल रहल, और ई योजना का मुख्य उद्देश्य ये है बहन लोगन की देश के सभी ग्रामीण घर में व्यक्तिगत नल के कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ और पर्याप्त पेयजल को उपलब्धता हो के। एक लक्ष्य ये रहल कि 2024 तक सब घर में पानी पहुंचे। बाकी देखे हैं आज भी योजना के लाभ जो छूटल बा ओकर तक पहुंचावल जाता। बाकी कहल जाला ना बहन कि पेट ना होके तो भेंट ना होके, माने जरूरत अगर हमके बा तो एकरा खातिर आवेदन हम लोगन के ही करे के पड़ी, हम ही लोगन के बतावे के पड़ी एकरे बारे में। और एकरे बारे में अधिक जानकारी के खातिर अपने जन ग्राम के प्रधान हों उनसे संपर्क करके जानकारी लेहल जा सकेला, लाभ पावल जा सकेला। और जन देखा कोसों दूर से अपन बहन लोगन भर के पानी ली आवे ली ना, तो देखा ऐसे समस्या से तो छुटकारा मिली जाई। और बहन लोगन ने चिलचिलात घाम में कितना पानी के किल्लत बा और कितना पानी का महत्व बा ऐसे तो हम लोगन के कम जानकारी होके के चाहिए कि हम लोगन के पानी बिना जिंदगानी बिल्कुल नहीं बा। और देखा बात बत कही तो हम लोगन करते रहल जाई, लेकिन आज हम लोगन अपने बैठकी में कुछ और भी जानकारी और मन फिर लेके शामिल है जा। चूंकि देखा शुक्रवार का दिन है, शुक्रवार के भोजपुरी फिल्म संगीत के गीत सुनी रह जा हम लोगन, तो कुछ गीत भी हम शामिल कर ले हैं। तो चला एक भोजपुरी फिल्म संगीत के गीत सुन जाए।

तो बहन लोगन देखा भाई, हम लोगन भोजपुरी फिल्म संगीत के गीत सुनत रही हाँ। जहाँ फिल्म रहल है सैया से करदा मिलनवा हेराम, और आवाज रहल है उदित नारायण और साधना सरगम जी के। बहन लोगन देखा, ई मन फेर का ऐसा नशा होला ना, जौन की बड़ से बड़ थकान भी सुन के दूर हो जाला। दुख होके तो हल्लुक हो जाला, और सुख होके तो रौनक बढ़ जाला। बाकी कुछ लोग ना रौनक लियावे खातिन के, रौनक के बढ़ावे खातिन के जौन माध्यम अपनौले हुआ नशा, जौन की सामाजिक कुरीति के रूप में भी जानल जाला, ओके करेले लोग। नशा से देखा बहन लोगन, ना रौनक होला ना ही कोनो बात बनेला, बल्कि धीरे धीरे ना मातम के जैसन माहौल होखे लागेला। नशा नाश का जड़ है, जे भी कहले है बहन लोगन बिल्कुल एकदम 100% सच बात कहले है। चाहे देखा सुरती हो, गुटखा हो, पान हो, एकर सेवन करे से ना अपन जीवन के साथ साथ जीवन में कई तरह के परेशानी समस्या आवे लागेला। बहन लोगन देखा, ऐसे दूर रहल ही हम लोगन के भलाई बा, और

0: कानून भी कहला। देखिए हमार बातचीत भेल है अतुल प्रताप सिंह जी से, जे अधिवक्ता हुअन, विषय है बातचीत का नशा उन्मूलन के लिए कानूनी प्रावधान। तो ये जानकारी सुनल जाए, बाकी रो से पहले को संदेश बा ओके भी सुन लेल जाए, फिर जानकारी सुने के।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं जैसा कि लगभग सभी लोग ये जानते हैं कि किसी भी चीज की अधिकता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, उसी तरह किसी भी तरह की लत किसी भी व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को बाधित करती है। कहावत कहती है कि नशा एक पारिवारिक बीमारी है, क्योंकि एक व्यक्ति नशा करता है और पूरा परिवार परेशान होता है। इसके साथ हम यह भी कह सकते हैं कि नशीली मादक पदार्थों का सेवन एक प्रमुख सार्वजनिक समस्या है, और कानून में तो हर समस्या का समाधान भी है और कानूनी प्रावधान बने हुए हैं। इस नशे का उन्मूलन करने के लिए कानूनी प्रावधान क्या है, इससे कैसे छुटकारा मिल सकता है, आज इस बारे में जानेंगे हम अतुल प्रताप सिंह जी से, जो कि अधिवक्ता हैं जनपद एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र में। तो बात किया जाए, तो अतुल प्रताप सिंह जी आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: जी अतुल प्रताप सिंह जी, एक ज्वलंत विषय पर बातचीत करने के लिए आपको आमंत्रित किए हैं, नशा। तो सबसे पहले हम और हमारे सभी श्रोताओं को ये बताएं कि नशा की श्रेणी में कौन कौन से मादक पदार्थ शामिल हैं।
2: आपने एक अच्छा प्रश्न किया
0: जी,
2: कि नशा के श्रेणी में कौन कौन से मादक पदार्थ आते हैं। मादक पदार्थ में हीरोइन है, गाजा, ब्राउन शुगर, कोकेन, चरस, शराब, सिगरेट, खैनी, जर्दा, गुटखा, बियर। जो भी शरीर को मादक पदार्थ नुकसान पहुंचाए वह नशा के श्रेणी में है।
0: अच्छा, इस नशा के उन्मूलन के लिए कौन कौन से कानून बनाए गए हैं वकील साहब?
2: देखिए नशा के लिए जो कानून बनाए गए हैं, केंद्र सरकार अलग कानून बना रखी है तथा राज्य सरकार अपने अपने यहाँ अलग अलग कानून बनाती है क्षेत्रीय वाइज। जैसे एक कानून एनडीपीएस एक्ट है, जिसे स्वापक औषधि और मन प्रभावी अधिनियम कहते हैं।
0: अच्छा,
2: यह 1985 में बना। दूसरा कानून सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 में बना। इसके बाद आबकारी एक्ट बना, इसी के साथ औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम भी बना है, जिसके तहत नशा में कौन कौन सी पदार्थ आएगा इसको श्रेणीवार बांटा गया है।
0: अच्छा,
2: और दूसरी चीज यह है कि सरकार कुछ शरीर के लिए जो आवश्यक है नशा या मादक पदार्थ, उसको लाइसेंस दे करके लीगल बनाई है।
0: जी।
2: लेकिन बहुत से ऐसे मादक पदार्थ हैं जो अनलीगल हैं, उन्हीं के ऊपर यह ठोस कानून लागू करते हुए मादक पदार्थ को तस्करी या आम नागरिकों के पहुंच से रोकती है।
0: अच्छा अच्छा, देखिए कुछ लोगों का ये भी कहना होता है वकील साहब कि किसी भी प्रकार की समस्या से निपटने के लिए नशा सेवन एक सरल उपाय है। लोग अपने दुख को भुलाने के लिए शराब, बीड़ी, सिगरेट या नशीली पदार्थों का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप?
2: देखिए यह आम चलन में आ गया है, लेकिन यह कहना कि दुख भुलाने या समस्या हेतु उसका निदान के लिए नशा किया जाए, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि नशा से शारीरिक क्षति हो करके और समस्या बढ़ जाती है।
0: बिल्कुल।
2: या जो समस्या के लिए नशा करते हैं उससे कहीं न कहीं आपराधिक मन
0: को बढ़ावा
2: देता है और वह अपराध की श्रेणी में चला जाता है।
0: जी जी जी।
2: जिससे कि कहीं न कहीं अपराध हो जाता है, और इसलिए यह कहना कि दुख भुलाने या समस्या के लिए नशा करना यह गलत है और इसको हर तरह से रोका जाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने वकील साहब। अच्छा देखें, कई जगहों पर मैंने ये भी देखा है कि जहां सार्वजनिक जगहों पर लिखा होता है कि धूम्रपान निषेध या फिर मद्यपान निषेध, वहीं पर ज्यादा गंदगी देखने को मिलती है जहां लिखा होता है। जहां ये भी लिखा होता है कि यहां थूकना मना है, तो वहां देखिए पान खा करके लोग, खैनी सुरती खा करके थूके हुए लोग रहते हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है। तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है?
2: देखिए ये आपने एक ज्वलंत प्रश्न उठाया है।
0: जी बिल्कुल।
2: क्योंकि इस समय देश में पूरे स्वच्छता का
0: अभियान
2: भी चल रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध, मद्यपान निषेध या थूकना यह सरासर गलत है।
0: जी।
2: इसके लिए कानून भी बनाए गए हैं, जैसे भारतीय न्याय संहिता 2023 में धारा 292 है, यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर कोई भी इस तरह का कार्य करता है।

0: इससे किसी को ठेस पहुंचता है,
1: परेशानी होती
0: परेशानी होती है
1: जी,
0: उसके लिए इस धारा के तहत 1,000 रुपया जुर्माना और दंड से भी दंडित करने का प्रावधान है।
1: अच्छा,
0: इसी के तहत एक और पुलिस एक्ट की धारा 34 के तहत है कि उसे भी जो है के जुर्माना से दंडित किया जाएगा यदि कोई सार्वजनिक स्थान पर
1: थूकता हुआ या फिर ऐसे बीड़ी सिगरेट करता हुआ।
0: बिल्कुल, और बीड़ी सिगरेट के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21 के तहत प्रथम अपराध पर 200 रुपया और यदि लगातार कर रहा है तो 5,000 रुपया तक उसके खिलाफ जुर्माना का प्रावधान है।
1: अच्छा,
0: लेकिन सब कुछ कानून से ही नहीं रोका जा सकता, यह जागरूकता करके लोगों में राष्ट्र हित में राष्ट्र प्रेम की भावना करके रोका जा सकता है। जैसे देखिए इस समय हर जगह स्वच्छता को लेकर के लोग जागरूक हो रहे हैं और जहां कूड़ेदान रखा है उसका प्रयोग कर रहे हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने वकील साहब, और सही बात है कि हर जगह कानून और संविधान ही नहीं उपयोग कर सकते हैं, कुछ हमारी जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो हमारे कर्तव्य होते हैं, अगर उसको हम अपने अंतरात्मा से जगाएं तो निश्चित तौर पर इन सब चीजों पर रोक लगेगी, जो गंदगी जगह जगह होती है या फिर जो गलत कार्य होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा देखें, एक कहावत भी है कि संगत से गुड़ होत है, संगत से गुड़ जात। मतलब यह कि एक नशेड़ी व्यक्ति जो है अपने साथ रहने वाले लोगों को नशा का आदि बना देता है। देखें, जो नशा नहीं करना चाहता है तो उसे उत्तेजनात्मक शब्दों का प्रयोग कर उसे नशा करने पर विवश कर देता है, वो व्यक्ति भी उसी दलदल में फंसने लगता है। तो ऐसे उकसाने वाले लोगों के लिए और उससे इस तरह के जो कार्य कर रहा है इसे रोकने के लिए क्या कुछ कानून बने हैं?
0: देखिए, यह बिल्कुल आपने अच्छा प्रश्न किया है कि संगत से गुण और अवगुण दोनों आते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन नशेड़ी दोस्त के साथ दोस्ताना जीवन काफी संकटमय हो जाता है, ऐसा देखा जाता है, लेकिन इस पर कोई ठोस कानून अभी तक नहीं आया है और सिर्फ यह एक चलन है कि बैर से अच्छा त्याग। यदि कोई मित्र आपको जबरिया मजबूरन ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो आप उसका संघ छोड़ दें, और कोई जबरदस्ती करता है तो आप जरूर इसको प्रशासन या पुलिस से शिकायत करें और उसके लिए वह कोई न कोई आपको रिलीफ देगा,
1: सुरक्षा प्रदान करेंगे।
0: जी जी
1: जी बिल्कुल। अच्छा, अगर कोई किसी के साथ जबरदस्ती शराब पीने के लिए या फिर सिगरेट बीड़ी या किसी भी तरह के नशीले पदार्थों या दवाओं का प्रयोग करने के लिए कहता है तो उसके लिए दंड या जुर्माना जैसा कोई प्रावधान है?
0: जी देखिए, जो कानून है जबरदस्ती को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो बलपूर्वक कोई करता है या एक मजबूर करता है।
1: जी बिल्कुल,
0: इसके लिए जो पुरानी हमारी दंड संहिता थी उसमें 45 धारा में यह एक प्रपीड़न करके था, जो अब BNS में 2/17 में परिभाषित किया गया है।
1: अच्छा,
0: के किस प्रकार का वह मजबूर कर रहा है या बलपूर्वक आपको किसी
1: गलत कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है,
0: प्रेरित कर रहा है, उसकी गंभीरता पर वह अलग अलग दंड का प्रावधान किया गया है।
1: वकील साहब देखें, समय का पहिया इतना तेजी से घूम रहा है, कहा जाए कि आजकल के बच्चे पैदा हुए नहीं कि पैदा होते ही वयस्क बन जाते हैं। कहते हैं कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप। घर में समाज में बड़े लोगों को देख करके, जो नशा कर रहे हैं उनको देख करके, वो भी बच्चे छुप छुप करके इसका प्रयोग करने लग जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अच्छी चीज है, तभी हमारे घर के बड़े लोग जो है नशा कर रहे हैं। और इसका क्या होता है कि धीरे धीरे वो बड़े घर के लोग देख नहीं पाते हैं और वो बच्चे जो है इसका आदि बन जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए या फिर सतर्क होने के लिए क्या कुछ नियम कानून है?
0: जी बिल्कुल, अवयस्क बच्चे जो 18 साल से कम हैं, उनको किसी भी दुकान पर कोई भी मादक पदार्थ या बीड़ी सिगरेट बिक्री पर रोक लगाया गया है।
1: अच्छा,
0: और यदि कोई ऐसा दुकानदार करते पाया गया तो उसके खिलाफ दंड और जुर्माने का भी प्रावधान है।
1: अच्छा,
0: लेकिन जहाँ तक यह बातें आ रही हैं कि घर के बड़े लोगों को देख करके छोटे बच्चे करते हैं, तो यदि कोई परिवार ऐसा करता है तो उस अन्य परिवार के सदस्यों को उसको रोकने की पहल करना चाहिए, क्योंकि अपना परिवार बर्बाद हो रहा है। तो जो बच्चे देखेंगे वो करेंगे
1: जी।
0: तो इसलिए अपने ही परिवार के लोगों को इस पे कठोरता से कार्य करना चाहिए।
1: बिल्कुल, खुद को उस चीज को छोड़ना होगा, तभी बच्चे हमारे उस चीज को छोड़ने का प्रयास करेंगे और बताएं बच्चों को कि ये गलत चीज है, ये खराब चीज है, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा।

0: जी
1: जी देखें वकील साहब, एक विडंबना यह भी है कि नशा सिर्फ पुरुषों या फिर बालकों तक ही सीमित नहीं है। इसका सेवन देखें धड़ल्ले से जो है कि हमारी महिलाएं बालिकाएं भी करती हैं। तो ये बताएं कि इनको समझाने रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास जारी होता है और कुछ कानूनी प्रावधान है?
0: देखिए, यह जो मादक पदार्थ की बिक्री और आजकल हर जगह महिलाएं भी काफी आगे आती दिख रही हैं।
1: बिल्कुल हर काम में आगे हैं, इसमें भी कहीं पीछे नहीं दिख रही हैं।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल, हम लोग कोर्ट कचहरी में हैं तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी इस कार्य में, अपराध में आ रही हैं। लेकिन कहीं भारत के कानून में महिला या पुरुष बांटा नहीं गया है,
1: जी
0: सबको एक ही धारा से, एक ही कानून से संचालित किया जा रहा है। लेकिन महिलाएं घर की सबसे जिम्मेदार पर्सन हैं, इसलिए महिलाओं को अपने परिवार को आगे ले जाने के लिए कम से कम अपने को रोकना होगा। और शराब की दुकान पर लिखा रहता है कि महिलाओं को शराब बिक्री के लिए रोक है, महिलाओं को शराब नहीं बिक्री किया जाएगा। इसलिए हम यह कहेंगे कि महिलाओं को स्वतः राष्ट्र के उन्नत के लिए इसको रोकना होगा और आगे बढ़ करके आना होगा।
1: जी वकील साहब, बड़ी अच्छी जानकारी आपसे मिली। कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो इस दलदल से निकलने के लिए चलते चलते लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए, हम यही कहेंगे कि यह जीवन वह शरीर अनमोल है। आप यदि खाली हैं तो नशा मत करिए, अपने परिवार के उन्नत के लिए आप कोई ना कोई रोजी रोजगार करें। साथ ही सरकार द्वारा भी बहुत से काम दिए जा रहे हैं, उसको करके आप अपना समय उधर लगाएं, नशे के तरफ न लगाएं। महिलाओं के लिए भी सरकार ने काफी समूह से जोड़ रखा है तथा उनको काफी आगे बढ़ाने के लिए सरकार सुविधा दे रही है। तो महिलाओं को नशा को छोड़ करके अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नशा होना चाहिए और नशा का सेवन करके शरीर को रोगग्रस्त न बनाए, बल्कि नशा छोड़कर अपने जीवन को सुखमय एवं परिवार को स्वस्थ रखें। यही एक राष्ट्र के लिए, एक परिवार के लिए और एक अच्छा माहौल बनाने के लिए जीवन का मंत्र है।
1: सही कहा आपने वकील साहब। तो श्रोताओं देखें, आप थे अतुल प्रताप सिंह जी जो कि अधिवक्ता है जनपद एवं सत्र न्यायालय सोनभद्र में। श्रोताओं, मानसिक स्वास्थ्य के बोझ को कम करने के लिए या खुशी में आनंद उठाने के लिए लोग कहीं ना कहीं परेशानियों को न्योता देते हैं। नशा से आज तक न किसी का भला हुआ है और न कभी होगा। कहा ही गया है नशा नाश की जड़ है, तो हमें इस जड़ को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित और खुद के भीतर आत्मविश्वास को जगाना होगा। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, तो आज ही नशा को कहें ना, और तभी कानूनी प्रावधान भी प्रासंगिक होंगे। और अतुल प्रताप सिंह जी, आपको इस जानकारी को देने के लिए और आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।
2: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
3: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
4: हेलो,
2: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
3: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
2: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
3: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
2: ओनली ऑन AIR ओबरा।
1: तो बहन लोगन, देखा बातचीत सुनल गयल, बस जरूरत बा तो हम लोगन के अमल करे के। और देखें अतुल प्रताप सिंह जी कितना बढ़िया बातचीत कहला हाँ बतौला हाँ हम लोगन के। तो हम लोगन नशा से हमेशा दूर रहल जाए और दूसरे के भी दूर करे के खातिन जागरूकता फैलावल जाए। तो अतुल प्रताप सिंह जी के धन्यवाद दिल जाए। बाकी रेको और भोजपुरी फिल्म के साथ, और फिल्म के नाम हा सखी हम ना जाइब ससुर घर में, और आवाज़ सुरेश वाडेकर और संजीवनी जी के।

बहन लोगन देखा मन त करता कि मन फिर सुनत रही जा, बाकी समय के अभाव में हम लोगन के हर काम करल जरूरी बा, और समय रहते सब कुछ काम बढ़िया से हो जाला तो मन भी खुश रहेला। और चला चलावत आप सबसे सिर्फ ये कहे कि बा बहन लोगन की हम लोगन के जौन भी तरोताजा रखे के बा अपने आपके, तो जौन भी बाजार में तरबूज बा, खरबूज बा, खीरा ककड़ी, एक उपयोग करल जाए। तरबूज के तो देखें हम लोगन अगर रस बना के पियल जाए ना, जौन की शीतल पेय पदार्थ के रूप में हुई, तो हम लोगन के स्वास्थ्य के बहुत आराम मिलेला। तो अपने आप के स्वस्थ रखें, मस्त रखें। अब अगली बैठकी में नई जानकारी, नए मन फिर के साथ फिर मिलल जाई। तो चल जाए सब बहन लोगन के राम राम।

अभी ग्रामीण महिलाएं अपना कार्यक्रम घरनी सुन रही थीं। 102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 5:59 हुए हैं। 6 बजे आप गोरखपुर से अनुप्रसारित भोजपुरी समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी की ओर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ ही हम वेद प्रकाश पाठक। सर्वोच्च न्यायालय आज देश के सज्जो उच्च न्यायालय के फैसला सुरक्षित रखने के 3 महीना के भीतर ओके सुनौले का निर्देश देले हो। न्यायालय कहलस कि फैसलन में देरी से याचिका कर्तन के अपूर्णीय क्षति हो सकेला। एगो रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने कहा कि जमानत आवेदनों पर आदेश उसी दिन या अगले दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान काले वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिया से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के साथ ही 12 राज्यन के 10,000 करोड़ रुपया से बेसी का राशि जारी कैले। एह मौका पर श्री चौहान कहले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हवे कि देश में कोनो गरीब मनई कच्चा मकान में न रहे।
2: प्रधानमंत्री जी का संकल्प है हर गरीब को पक्का मकान मिले, पक्का आवास मिले, और उसके लिए 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मऊ में 392 करोड़ रुपया से बेसी लागत का 114 परियोजनन के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल भेल हैं। यह मौका पर वहां के कहने कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में पछिला 12 साल में लोग बदलत भारत के देखले हम हैं। श्री योगी कहने कि प्रदेश सरकारों बिना रुकले या बिना थकले लगातार विकास का कार्य कर रही हो।
3: कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी, 2.5 से 3 घंटे की? आप सोचो ना, आप चाहिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से धड़धड़ा करके 2.5 घंटे 3 घंटे में लखनऊ। यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी, और बाढ़ से बचाव के लिए सरकार कार्य कर रही है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल ही लखनऊ में पुलिस प्रशिक्षण व्यवस्था के लेके एगो उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कैले। इस दौरान मुख्यमंत्री कहले कि पुलिसिंग खाली कानून व्यवस्था ले सीमित नहीं हो, वहां के कहले कि आधुनिक तकनीक, संवेदनशील व्यवहार, संवाद कौशल, साइबर अपराधन का समझ आ फॉरेंसिक दक्षता प्रभावी पुलिसिंग का बुनियादी जरूरत बन गई बा। मुख्यमंत्री कहले कि प्रशिक्षण व्यवस्था में गुणवत्ता, एक रूपता आ पारदर्शिता सुनिश्चित कैल जाए। हमीरपुर जिला में काली देर रात आयल तूफान के दौरान बन रहल पुल गिरले से 6 गो मजूरहन का मौत हो गई। मोराकंदर से कंदौर गांव ले फैलल ई पुल बेतवा नदी पर बनावल जात रहल। ई घटना देर रात 2 बजे ओ समय भइल जब बरखा के बीचे कुछ मजूरहा हाइड्रोलिक मशीन के नीचे खड़ा रहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एह हादसा पर गहरा शोक जतौले हमें। वहां के मृतक लोगिन के परिजनन के 5-5 लाख रुपया आ घाही लोगिन के 50-50 हजार रुपया के आर्थिक सहायता उपलब्ध करवले का निर्देश देले हैं। आज

0: पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह का पुण्यतिथि मनावल जा रहा हो। इस मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में उनके मूर्ति पर फूल चढ़ा के श्रद्धांजलि देने। पत्रकार लोगों से बतियावत वहां के चौधरी चरण सिंह के व्यक्तित्व आ कृतित्व के बारे में चर्चा कैनी।
1: देश के स्वाधीनता आंदोलन के साथ वे जुड़े थे। देश के अंदर कृषि के क्षेत्र में, राजस्व के क्षेत्र में तमाम प्रकार के रिफॉर्म करने का श्रेय चौधरी साहब को जाता है। वे देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव और गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है।
0: मौसम विभाग प्रदेश में बिहनहू कहीं कहीं बिजली गिरले आ तेज झोंकेदार बेयार चलने के ऑरेंज अलर्ट जारी कैले हो। साथ ही कई जगहिन पर गरज चमक के साथे बरखा भइले आ बौछार पड़ले का संभावना जतावल गइल बा। एह बीचे प्रदेश के पूर्वी जिलन में बीतल रात से आंधी पानी के साथे भइल बरखा के बादे आज दिन में मौसम साफ रहल। कई जगहिन पर दिन में हल्का है घाम निकरल, बाकी लोग भीषण उमसा गर्मी से राहत महसूस कइले। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।
2: एक सौ 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: पंचन के सब पंचन की राम राम।
1: जीरा बहन देखा आज हालचाल हम लोगों के कहा बा,
0: हाँ
1: अब छूट गई है अपन पंचायती में, तो
0: तो
1: पहले तू ही बतावा कि आज का हालचाल
0: देखा
1: बा।
0: हाल चाल हमन के जब भी पंचायती में जुटी ला और एकदम सही समय से जुटी ला तो हमन के आपन हाल चाल तो माने करबे करिला। सबसे पहले तो पंच भैया और बहन लोगन के भी हाल चाल जानना भगेलू भैया जरूरी बा कि हमार पंच भैया लोग और बहन लोगन कैसे नहीं। तो हमके तो देखा यही लगा था कि जोन ये मौसम से थोड़ा सा माने कल्ली से जोन आज में परिवर्तन भयल ओसे देखा थोड़ा राहत तो मिलल हला और ये उम्मीद ये बा कि सब लोग ठीक ठाक हुए। लेकिन कहल गल ना कि स्वास्थ्य पे भी देखा कहा से मौसम जोने हिसाब से बदला था कहीं ना कहीं अपने सेहत पे भी कबो माने लापरवाही कैले पे नुकसान कर सकेला। तो ओकरे खातिर हम ये कहबला कि विशेष कर अपन स्वास्थ्य अच्छा रही तबे हम अपने घर परिवार गोरु चौवा और बड़ बुजुर्ग चाहे लड़का परानी माने घर का कोई भी हो सबकर देखभाल कर पाओल जे। और एकरे साथे साथे अगर हम लोग समय निकाल के माने साग तरकारी खान पान तो हम लोगन के ठीक है ही है
1: काय नहीं
0: लेकिन बिल्कुल योग वाली जो बात भी है वो देखा हम लोगन के स्वास्थ्य के लिए एक पूरक उपचार है।
1: देख एकदम पते के बात कहलू काहे कि देखा हम लोग दर दवाई तो करबे करीला,
0: बिल्कुल
1: लेकिन वो से देखा हम लोगन के कबो कबो ऐसा भी होला कि हम लोग अंग्रेजी दवाई कर लेला और कुछ अपन देखा जड़ी बूटी वाला भी दवाई करीला,
0: हाँ
1: लेकिन ऐसे भी हम लोगन के निजात नहीं मिल पावेला। तो
0: हाँ
1: फिर जा करके कुछ जागरूक भैया लोग हवन जोन
0: हाँ
1: तो कहलन कि देखा अगर दर दवाई से भी ठीक नहीं होत बा तो
0: हाँ
1: एक बार देखा योग करला,
0: बिल्कुल
1: तो योग करले से हर तरह के बर बेरामी से निजात मिलत
0: हाँ
1: बा।
0: हाँ
1: और हर जगह योग योगासन करावल जा रहल बा, लोग प्रचार प्रसार भी हो रहल बा, तो ऐसे रोग पर भी निदान हम लोगन पा सकीला। और देखा ये समय जोन मौसम चल रहल बा तो ये में देखा हम लोगन के बहुत सजग और सतर्क रहले के जरूरत बा। काहे कि देखा कबो कबो तो आंधी आ जात बा, कबो पानी आवत
0: पानी आ
1: बा,
0: जात पर
1: और कबो कबो ऐसा देखा लूह बढ़ जात बा कि
0: हाँ
1: ऐसने में
0: हाँ
1: देखा पेट दर्द शुरू हो जात बा, उल्टी दस्त होत बा
0: बिल्कुल
1: और पतला टट्टी भी हो जात बा। तो
0: हाँ
1: इस सबसे हम लोगन के बहुत सजग और सतर्क रहले के जरूरत बा। और सजग सतर्क रहे में ना हम लोगन के हर तरह से भी आज देखा मोबाइल पर भी बिहन्ने से ही
0: हाँ
1: भोरे
0: सायरन
1: से,
0: बजत बा
1: हाँ तो हम लोगन के सायरन बजे के मतलब भी देखा कुछ बा कि
0: हाँ
1: हम लोगन के सचेत करल जात बा कि
0: हाँ
1: देखा हर लोग सचेत रहा, सुरक्षित जगह पर पहुंच जा, आनी
0: बिल्कुल
1: तूफान

0: अभी आवत
1: हाँ
0: बा।
1: हाँ और बिजली भी कड़कता
0: हाँ
1: साथ
0: हाँ
1: में।
0: तो ई सबसे हम लोगन के बहुत सजग और सतर्क रहले के जरूरत बा।
1: देखा, और सतर्क रहे के साथ साथ जोन माने योग वाली बात अभी जैसे कहला भी है कि योग में जाए की चाहिए, तो हम तो ये कब कि पूरक उपचार के यही उद्देश्य कि योग अभ्यास में आए वाली माने सारी बाधाओं के दूर करब। योग के लिए सबसे प्रभारी पूरक हो देखा एकर उपचार, और योग में सात्विक और संतुलित आहार के माने सर्वोच्च स्थान भी देवल गेल है। कहे के मतलब कि अगर शुद्ध खाना खाता है और उसके बाद संतुलित है तो वो आपके लिए बेहतर रहला। और देखा योग के दौरान माने कहल गेल है कि उसके पहले या बाद में माने कैले के बाद भी पानी पिए माने, या तो नारियल पानी पिए ताकि अपने जो मांसपेशी है ना योग कैले के बाद जो ऐठा होला वो ना हो पावे।
0: अरे देखा, कुल मिलाकर के हमार कहे के मतलब ये
1: हाँ
0: बात
1: कि
0: ना कि
1: हाँ
0: देखा पानी ही जिंदगानी बा।
1: बिल्कुल
0: देखा अब कहल भी जाला गांव घर में, बूढ़ पुरनिया लोग जागरूक भैया लोग भी कहलन कि
1: हाँ
0: देखा खाना कम खा
1: पानी
0: लेकिन
1: ढेर
0: गर्मी
1: पी।
0: में पानी खूब पिया।
1: ए भगेलू भैया जोन पानी के बात कहला तो कहे ना चाहिए भाई, जब से ये माने कहल गल कि जोन भीषण गर्मी कहला भयानक गर्मी, एमें पानी माने पानिया से और पानी से संबंधित जितना फल यही देखा हम लोग के शरीर के संभरले वाला।
0: काहे नहीं
1: अभी देखा आपको हो गल हिरमाना हो गल, खरबूजा हो गल, आपका खीरा हो गल, ककड़ी हो गल, बेल हो गल, आपका सत्तू हो गल, आम के पन्ना हो गल, माने अगर ये सब हम लोग जुगाड़ करके चलत हिला तो निश्चित रूप से देखा हमन के जो न की फायदा बा और हम लोग उनके आराम भी है। और जे लापरवाही करा था कि पानी बहुत लोग ना कम पिए लन, लेकिन जे कम पानी पिए तो उनके पेट में जलन होए लगी, फिर जो न उल्टी वाला कहता ऐंठन होए लगी, तो इससे बेहतर कि पानी खूब पिए।
0: और देखा पानी अगर शरीर में रही तो देखा पसीना होला, और
1: हाँ
0: पसीना से देखा हम लोगों के शरीर के अंदर
1: तो
0: जौन भी गंदगी
1: गंदगी
0: रहेला
1: उबाहर
0: तो
1: होला।
0: बाहर हो जाला। तो आज देखा हम लोग अब बात बात कही तो हुईबे करी लेकिन पंच भैया लोगन टकटकी लगौले हवन कि आज पंचायती में का शामिल कैले हवन, तो हम तो कहते ही ना कि बिना देर के लिए बताई देती।
1: देखा आज पंचायती में शामिल बा हमरे जो ना कि आधुनिक रोग और समाधान योग से, एकरे बारे में सचिन तिवारी जोन योगाचार्य हन उनसे अपन अख्तर अली भैया बातचीत के लिए नोके सुनल जाई। और साथे साथे देखा जो ना कि माने कि बाजार भाव भी है हम लोगों के पास मधुपुर के वो के सुनल जो बाचल जाई। और देखा दूसर बा माने जोन जानकारी वो बा देखा सफलता की किसानी हो, सफलता की कहानी सृजन सहजन का व्यवसायिक खेती, एकरे बारे में संगीता देवी से अपन भोला भैया बातचीत के लिए नोके सुनल जाए।
0: और
1: और साथ ही
0: देखा अब तो इतना होइल तो ओकरे साथे साथे देखा अब हम लोगन के बारी आवला मन मनसायन के।
1: बिल्कुल
0: तो मन मनसायन खातिर भी हम लोगन के बीरे लाल गुप्त भैया के गीत गौनाई शामिल कैल गइल बा। तो हम तो कहते हैं ना कि बिना देर कैले अब आज के हम लोगन के मौसम के जानकारी हो ही गई कि देखा न्यूनतम तापमान जवन रहल 25 डिग्री सेल्सियस
1: हाँ
0: और अधिकतम तापमान जवन बा 37 डिग्री सेल्सियस। तो इस हिसाबे से हम लोगन के अपन काम काज करे के बा। तो हम तो कहते हैं कि जब योगा के बात करबे कैलो और आधुनिक रोग के बात, तो काहे नहीं हम लोगन सचिन तिवारी भैया के जवानी सुनी और मुन्ना भैया उनसे बातचीत कैले हवन। तो बिना देरी के लिए हम लोग सुनल जाए।
1: चला सुनल जाए।
2: श्रोताओं, स्वस्थ रहने के लिए जितना आवश्यक है हमारा आहार, उतना ही आवश्यक है हमारे जीवन में योग। श्रोताओं, हम स्वस्थ रहने के लिए समय समय पर उचित आहार लेते हैं और हमारा शरीर रोगों से मुक्त रहे इसके लिए हम हमेशा चिंतित रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, कुछ ऐसा काम करने से हिचकिचाते हैं, बचने का प्रयास करते हैं जिससे कि हम अस्वस्थ ना हो जाएं। लेकिन फिर भी हमारे शरीर में कुछ ऐसे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिनके इलाज के लिए हम फिर चिकित्सकीय सलाह लेते हैं, दवाओं पर निर्भर रहने लगते हैं। लेकिन आज के आधुनिक दौर में योग के माध्यम से भी जो आधुनिक रोग हमारे शरीर में हो रहे हैं उनका निदान संभव हो रहा है और लोग इससे निजात भी पा रहे हैं। इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं योगाचार्य सचिन तिवारी जी। सचिन जी, सबसे पहले तो अपने कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वस्थ रहने के लिए जिस तरह से योग का गुणगान किया जाता है कि योग को अपने जीवन में अपनाया जाए, आप स्वस्थ रहेंगे। यहां तक तो हम लोगों ने जाना, लेकिन आज के दौर में जब योग के माध्यम से हम जितने भी गंभीर रोग हैं उनका भी इलाज संभव होने लगा है, ये थोड़ा हम सभी लोगों के लिए बहुत ही जानकारी योग्य बात हो गई कि अब जाना जाए कि योग के माध्यम से भी हम रोग मुक्त हो सकते हैं। कुछ ऐसे रोग हैं महिलाओं से संबंधित हैं या पुरुषों से संबंधित हैं, जैसे सिर दर्द है, कमर दर्द है, घुटनों में दर्द होता है, कमर दर्द होता है, कई तरह के ऐसे रोग हैं जिनका इलाज दवाओं को खाने से तो केवल आराम मिलता है, पूरा इलाज नहीं हो पाता है। तो सर सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, जो आज के आधुनिक रोग हैं इनका इलाज योग के माध्यम से संभव है?
3: बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार है और आपका पुनः धन्यवाद है कि आपने मुझे इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए मुझे आमंत्रित किया। जैसा कि अभी आपने कहा कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन पर हम केवल जो एलोपैथ की दवाएं हैं उन पर ही आश्रित रहते हैं, और एलोपैथ की दवाओं से तो लाभ तो होता है हमें, परंतु अधिकांशतः हम ये देखते हैं कि जैसे जो गंभीर समस्याएं हैं उनमें उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण वो बीमारी तो ठीक हुई कि नहीं हुई लेकिन उसके वजह से जो उसके लिए हम दवा ले रहे थे उसकी दवा से कई अन्य और समस्याएं उत्पन्न हो गई। जैसे लोग डायबिटीज की दवा खाते हैं तो डायबिटीज की दवा लंबे टाइम पे खाने पर उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं, पेनकिलर खाते हैं तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आते हैं
2: जी।
3: तो योग करके सामान्य जो व्याधियां हैं वो तो दूर होती ही होती हैं, लेकिन गंभीर समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं कि माताओं की जो समस्याएं होती हैं, आप एक बहुत कॉमन नाम सुनेंगे पीसीओडी या पीसीओएस, ये पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर होता है, यानी जो ओवरी होता है उसमें शिष्ट बनने लगती हैं, गांठें बनने लगती हैं। अब इसके लिए दवाएं तो खैर एलोपैथ में है, लंबे टाइम तक उसको उसका सेवन करना पड़ता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं, और कितना दवा काम करेगी नहीं करेगी ये तो अलग विषय है। लेकिन योग करके आप बिना दवाओं का सहारा लिए भी पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या को समाप्त कर सकते हैं।
2: अच्छा, क्या बात।
3: और एक समस्या जो यूट्रस है उसमें फाइब्रॉइड्स होने लगते हैं, उसमें गांठें बनने लगती हैं, तो इसके लिए भी फिर ऑपरेशन वगैरह कराना पड़ता है, इसके लिए भी दवा बहुत काम नहीं करती है। इसके लिए भी ये समस्या भी योग करके माताएं ठीक कर सकती हैं। तीसरा जो सर्वाइकल कैंसर है उसको भी माताएं योग करके ठीक कर सकती हैं, अगर शुरुआती जो चरण है उसमें अगर डिटेक्ट हो जाता है और वो योग करने लगे, प्राणायाम करने लगे तो वो ठीक हो सकता है, उसके लिए फिर ऑपरेशन वगैरह कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो सारी गंभीर समस्याएं हैं इनमें बिना किसी दवा के, बिना किसी अन्य जगह परेशान हुए योग करके वो ठीक कर सकती हैं।
2: तो सचिन जी, ये इतने गंभीर रोग हैं कि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं और डॉक्टर्स के संरक्षण में रह करके अपना इलाज कराते हैं, कई तरह के उनके सुझाव सलाह होते हैं, उनको मानना पड़ता है। तो जैसे आपने कहा कि अगर योग किया जाए तो इनसे हम लोग बच सकते हैं, तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को ये सभी जो रोग चर्चा आपने किया तो अगर उनको है तो योग के जो विभिन्न तरीके हैं
3: जी,
2: उनको लगातार कितने दिन तक करना पड़ेगा?
3: जी देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं बताता हूँ कि इसमें कौन कौन सा योग काम करेगा
2: जी,
3: कौन कौन से आसन, कौन कौन से प्राणायाम क्या क्या करना है और कितने टाइम पर, पूरी आपको प्रक्रिया बताता हूँ
2: जी।
3: सबसे पहले तो अगर पीसीओडी की समस्या है, कोई भी यूट्रस से रिलेटेड समस्या हो, ओवरी से रिलेटेड समस्या हो, कोई भी माताओं बहनों को समस्या हो, चाहे मासिक धर्म में अनियमितता हो, ब्लीडिंग ज्यादा होती हो कम होती हो, किसी प्रकार की लेडीज प्रॉब्लम जितनी भी हैं, उनमें कपालभाति प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही कारगर होता है
2: जी, कपालभाति।
3: कपालभाति प्राणायाम, लेकिन इसमें सावधानी एक ये रखते हैं कि जब पीरियड्स के टाइम होते हैं उस टाइम पे कपालभाति नहीं करते हैं, पीरियड्स के टाइम को छोड़ करके कपालभाति कर सकते हैं। कितने देर करना है, 5 मिनट से शुरू करके 10, 15, 20 मिनट, आधा आधा घंटा, जैसे गंभीर समस्याएं हैं, फाइब्रॉइड्स वगैरह हैं, तो उसमें फिर 1-1 घंटा तक कपालभाति करिए, और इसके ठीक होने का जो समय है वो 1 से 2 महीने में ठीक हो जाएगा, इतना ये इफेक्टिव है। एक तो कपालभाति हो गया। अब इसमें सावधानियां कुछ विशेष बताता हूँ। एक तो पीरियड्स के टाइम पे नहीं करना है, दूसरा अगर कमर में दर्द है तो धीरे धीरे करना है, क्योंकि तेजी से करने पर फिर कमर में दर्द और बढ़ जाता है, इसलिए कपालभाति अगर कोई भी स्पाइनल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें धीरे धीरे करना है, कोई ऑपरेशन वगैरह हुआ है तो उसके 6 महीने बाद ही करना है। ये छोटी छोटी सावधानियां रख करके कपालभाति प्राणायाम को करके

0: ठीक कह सकते हैं, कपालभाति करते कैसे, मैं यहाँ से बता देता हूँ, बाकी माता यूट्यूब वगैरह से आप देख करके वो
1: जी
0: सीख सकती
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: करना क्या, बिल्कुल सिंपल, सीधा होकर के बैठना है और पेट को अंदर पुश करके श्वास को बाहर छोड़ना होता है, किसी कुछ इस प्रकार से आवाज आती है। अब इसमें विशेष, जैसे नाक के सामने मक्खी बैठी है, उसको उड़ाना है तो श्वास बाहर फेंक के उड़ाते हैं, तो बस वही है, पेट अंदर पुश कर दीजिए, श्वास बाहर निकल गया, हो गया
1: जी
0: कपालभाति,
1: जी जी
0: बहुत इजी है। और ये हो गई, ये सावधानी हो गई और इसके ये लाभ हो गए। समय का आपने कहा, तो समय के लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि तीव्र संवेगा नाम आसन, यानी कि किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो संवेगना है, लक्ष्य को प्राप्त करने की जो तीक्षा है, वो जितनी तीव्र होगी फायदा उतना ही जल्दी हो जाएगा।
1: तो एक तो कपालभाति हो गया, इसके साथ साथ और भी कुछ करना पड़ेगा।
0: हाँ, कपालभाति हो गया, इसके साथ साथ पवन मुक्त आसन करना पड़ेगा, सेतु बंधासन करना पड़ेगा, उष्ट्रासन करना पड़ेगा। ये आसन जो है, ये सारे जो लेडीज प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर करते हैं, इसके साथ साथ जो पुरुषों को समस्याएं होती हैं उनको भी दूर करने में बहुत इफेक्टिव, बहुत कारगर। जैसे डायबिटीज हो गया, प्रोस्टेट की समस्या हो गई, प्रोस्टेट की समस्या भी पुरुषों को बहुत ज्यादा होती है, प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाता है या और कोई दिक्कत आने लगती है, तो प्रोस्टेट के लिए भी कपालभाति प्राणायाम बहुत ही इफेक्टिव, बहुत रामबाण है। डायबिटीज को दूर करता है, ये हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम को दूर करता है, किडनी की प्रॉब्लम को दूर करता है, 100 से अधिक प्रकार की व्याधियों को दूर करता है कपालभाति प्राणायाम।
1: सचिन जी, सिर दर्द की बड़ी समस्या रहती है, महिलाओं में भी रहती है, पुरुषों में भी देखने को मिलता है, ये सिर दर्द के बारे में क्या कहेंगे, कुछ इसके लिए क्या योग में व्यवस्था है?
0: जी बिल्कुल, बहुत अच्छे अच्छे आपके प्रश्न हैं, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है सर में दर्द होना,
1: हाँ
0: लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम थकान हो जाती है, तनाव हो जाता है, या खान पान में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी सर दर्द हो जाता है, तो कभी कभी का तो चलिए ठीक है,
1: जी
0: लेकिन यही जब बार बार होने लगता है तो फिर दिक्कत हो जाती है, तब दिक्कत की बात होती है, फिर ये माइग्रेन हो जाता है या सीवियर हेडेक का रूप ले लेता है, फिर आदमी की तो जो दिनचर्या है वो बाधित हो जाती है, फिर और कार्य कार्य नहीं कर पाता है वो। और ये सिर दर्द भी माताओं को बहुत ज्यादा होता है, माइग्रेन की समस्या माताओं को बहुत ही ज्यादा है। तो अब माइग्रेन को दूर करने के लिए क्या करना है, माइग्रेन को दूर करने के लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। सर दर्द किसी भी प्रकार का हो, किसी भी कारण से हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम करके सर दर्द को, माइग्रेन पेन को, सीवियर हेडक को दूर किया जा सकता है।
1: अनुलोम विलोम से।
0: जी, अनुलोम विलोम प्राणायाम से।
1: जी
0: अब
1: जी
0: इसकी भी विधि मैं सिंपल बता देता हूँ कैसे
1: जी
0: करना
1: जी
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: हमारी नासिका के दो छिद्र हैं,
1: हाँ
0: एक
1: हाँ
0: बायां वाला है, एक दायां वाला है।
1: जी
0: तो इसमें करना क्या है, सिंपल, बाईं नासिका से श्वास भरना है,
1: जी
0: दाहिने से बाहर छोड़ देना है, ये
1: हाँ
0: हो गया अनुलोम। विलोम का
1: अनुलोम
0: मतलब क्या होता है,
1: उल्टा, यानी कि
0: उल्टा,
1: दाहिने से लेना है फिर बाएं में छोड़ना है।
0: वेरी गुड, यानी दाहिने से
1: जी
0: लेकर के बाएं छोड़ देना है, तो ये हो
1: जी
0: गया एक अनुलोम विलोम। तो
1: अच्छा
0: इसी प्रकार से बाएं से लेना है, दाएं से छोड़ना है, दाएं से लेकर के बाएं छोड़ना है, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया पूरा।
1: अच्छा। सचिन जी, जैसे ये तो मान लीजिए सिर दर्द हो गया, और आम तौर पे जब उम्र बढ़ने लगती है, आजकल तो कम उम्र में भी, ये जोड़ों का दर्द बड़ा परेशान करता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में?
0: जी, जोड़ों का दर्द यानी जॉइंट्स पेन,
1: जी
0: ये हम अगर योग की भाषा में बात करें तो
1: हाँ
0: विशुद्ध रूप से ये जो है वात रोग है।
1: अच्छा
0: वात इम्बैलेंस होने के कारण, बढ़ने के कारण, बिगड़ने के कारण जॉइंट्स में पेन होने लगता है। अब क्यों होता है, जैसे घुटने दर्द की बात करते हैं, जैसे वात बढ़ेगा, जैसे कपड़ा सुखाते हैं आप, तो कपड़ा सुखाते हैं, हवा अगर चलती है तो कपड़ा जल्दी सूख जाता है ना, तो यानी जहां पर वात रहेगा, वायु रहेगी, वहां पर क्या होगा, रुक्षता रहेगी। वात का यही गुण भी है, रुक्ष शीतो लघु सूक्ष्मक्ष। तो क्या होता है कि जो वात बढ़ता है तो फिर ड्राइनेस आने लगती है बॉडी में, और जो ज्वाइंट्स हमारे हैं, ज्वाइंट्स में साइनोवियल फ्लूड होता है, एक तरल पदार्थ होता है जो कि हमारे जो ज्वाइंट्स, हमारे हाथ पैर हैं, उनमें मोबिलाइजिंग का कार्य वो करता है, मोबिलाइजिंग जो है वो अच्छे से हो जाए, इसलिए वहां पर रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि वात बढ़ेगा तो क्या करेगा, लिक्विड को, तरल
1: सुखा
0: को
1: देगा।
0: सुखा देगा,
1: जी
0: तो जो साइनोवियल फ्लूड है, जो तरल पदार्थ है अपने
1: हाँ
0: ज्वाइंट्स में,
1: जी
0: वो क्या होगा,
1: सूखने लगता है।
0: सूखने लगेगा। जब सूख जाएगा, कम हो जाएगा, तो हड्डियां क्या होंगी, आपस में रगड़ खाने लगेंगी,
1: जी बिल्कुल।
0: है ना, तो रगड़ खाएंगी तो दर्द होगा, घिसेंगी, चाहे घुटने हो चाहे कहीं पर भी, जो भी अपने ज्वाइंट्स हैं, वो पेन होगा, तो एक गठिया का रूप ले लेता है, ज्वाइंट्स पेन होने लगता है। अब इसको भी दूर करने के लिए जो मैंने बताया, अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम, ये दो
1: अच्छा
0: बहुत कारगर हैं। साथ ही इसके साथ भस्त्रिका कर सकते हैं। भस्त्रिका में क्या क्या करते हैं, बस डीप ब्रीदिंग करते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। और अब इसके साथ साथ, जैसे कि आपने कहा कि जॉइंट्स पेन, वात रोग, वात रोग में एक और बड़ी समस्या है कमर का दर्द, स्पाइनल जो हमारी हेल्थ है उसके लिए फिर क्या कर रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि हर एक व्यक्ति को जिसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसको कमर दर्द या तो था, नहीं था तो अभी है, और अभी नहीं है तो कभी ना कभी जरूर होगा।

0: क्योंकि हमारी दिनचर्या ऐसी रहती है।
1: जी
0: तो कमर दर्द से बचने के लिए मैं आपको कुछ विशेष टिप्स बताता हूँ, योगिक उपचार बताता हूँ,
1: बिल्कुल
0: जिससे
1: बिल्कुल
0: कमर दर्द
1: स्वागत है।
0: से बच
1: जी
0: सकते हैं।
1: जी जी
0: क्या करना है, पहले तो अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छी रखनी है। अगर वात रोग है तो आपको थोड़ा सा घी खाना चाहिए, त्रिफला चूर्ण खाना चाहिए, आंवला हरड़ भेड़ा ये होता है उसमें, तो आप ये खाएंगे तो आपका वात बैलेंस रहेगा। त्रयोदशांग गुगल एक बहुत अच्छी औषधि है, उसको ले सकते हैं। चंद्रप्रभा वटी ले सकते हैं, ये सारी औषधियां हैं। फिर खान पान में बहुत जो खट्टे पदार्थ हैं उनका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर रात्रि का जो भोजन है वो जल्दी कर लेना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के पेट आपका अच्छे से साफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान
1: जी
0: रखना
1: जी
0: है।
1: जी
0: पेट साफ
1: जी
0: अगर हो रहा है आपका अच्छे से तो कमर दर्द से आप बच सकते
1: बच
0: हैं।
1: जी
0: पेट साफ नहीं हुआ, गैस बनेगी तो कमर पे दबाव आएगा, कमर दर्द होगी होगी, चाहे सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो, स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम हो, या कोई भी कमर बैक पेन हो। अब इसके लिए कुछ विशेष आसन बताता हूं मैं।
1: जी बिल्कुल
0: कमर दर्द के लिए रामबाण कह लीजिए, ब्रह्मास्त्र कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, भुजंगासन। भुजंगासन के 3 वेरिएंट होते हैं। इन तीनों वेरिएंट को, चूंकि हम लोग ऑडियो ये
1: जी
0: है
1: जी
0: तो
1: जी
0: इसको बताने में थोड़ी सी असहजता है,
1: हाँ हाँ
0: तो माताएं बहनें या जो भी श्रोता बंधु श्रवण कर रहे हैं हमें, वो YouTube वगैरह से जो भी अन्य संसाधन, या किसी अगर आपके पास अच्छे योगाचार्य हैं तो उनसे आप मिल करके ये सीख सकते हैं। तो कमर दर्द हो गया, मरकटासन, कमर दर्द के लिए मरकटासन, भुजंगासन, शलभासन, ये सारे ही आसन बहुत बहुत ही कारगर हैं, जिसमें भुजंगासन तो अद्भुत है। और दूसरा मकरासन है। मकरासन भी बहुत सिंपल है, पेट के बल लेटते हैं, कोहनी लगाते हैं और हथेलियों में ऐसे सर को रख करके पीछे से पैर मोड़ते हैं। पैर मोड़ते हुए श्वास भरते हैं, पैर को जांघ से सटाते हैं, पैर मोड़ते हुए श्वास भरते हैं और पैर पीछे लाते हुए श्वास बाहर छोड़ते हैं। ये मकरासन हो गया। फिर हाथ को जमीन से पेट पेट के बल लेट करके ही जमीन से लगाते हैं और पूरी कमर को नाभि से के आगे का जो हिस्सा है उसको ऊपर की ओर मोड़ते हैं श्वास भर करके, फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आते हैं। तो ये भुजंगासन हो गया। बहुत
1: जी
0: इजी इजी, बहुत सिंपल सिंपल आसन है, और इन्हीं को ध्यान में रख करके अगर नियमित रूप से अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें तो
1: तो
0: समस्याओं को दूर
1: जो
0: कर सकते
1: गंभीर
0: हैं।
1: रोग हैं उनसे निजात मिल सकता है। तो श्रोताओं देखें, आज हमारे साथ थे योगाचार्य सचिन तिवारी जी, और आपसे हमने जाना कि जो आज के आधुनिक रोग हैं, यानी कह लिया जाए गंभीर जो रोग हैं, जो हमारी माताएं बहनें हैं या हम सभी लोगों में कुछ ऐसे रोग हैं, जैसे सिर दर्द हो गया, कमर दर्द हो गया और घुटने का दर्द हो गया, इन सभी रोगों से अगर हम निजात पाना चाहते हैं तो हम योग का सहारा ले सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि इसको नियमित रूप से किया जाए, और जो इसका तरीका है, जो सही तरीका है, उसी के माध्यम से किया जाए और इसमें लापरवाही न बरती जाए, और कुछ बातों का ध्यान में रख करके अगर हम योग से जुड़े रहेंगे तो निश्चित जितने भी गंभीर रोग हैं उनसे हमें निजात मिल सकता है और हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और सचिन जी, आज आपने आकाशवाणी के माध्यम से हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जीरा बहन देखा कितना बढ़िया हम लोगन के बात बात कही, सुने के मिलल योग
3: बिल्कुल
2: योग से कि हर तरह के जौन
3: हाँ
2: गंभीर से गंभीर बीमारी बा
3: उसमें
2: ऐसे हम
3: भी
2: लोगन के निजात मिल सकेला।
3: हाँ
2: तो इतना बढ़िया जब जानकारी हम लोगन के मिली गई,
3: हाँ
2: सचिन तिवारी भैया के जवानी जान लिहल गई, और जौन अख्तर अली भैया भी हौन एकदम बढ़िया फरिया फरिया के पूछलन, तो अब तो हम लोगन के बारी बात धन्यवाद के। लेकिन देखा धन्यवाद तो दिले जाए बीरेलाल गुप्त भैया के गीत गौने हैये बा,
3: हाँ
2: लेकिन ओसे पहले भी देखा कुछ संदेश बा
3: हाँ
2: तो ओके सुन लिहल जाए, एकरे बाद देखा
3: मन
2: धन्यवाद
3: मनसाई
2: दिहल
3: सुन
2: जाए।
3: चला सुन लीजिए।
4: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
5: बेटा आप
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
5: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
6: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
5: चलो
4: कहाँ
5: एडमिशन कराने,
6: खाता हुआ एक्टिव।
4: आरबीआई कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
9: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
10: हेलो
8: फिर क्या, फोन उठाइए वॉल्यूम बढ़ाइए,
9: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
8: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
9: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
8: ओनली ऑन AIR ओबरा।

0: जीरा बहन,
1: हाँ बघेलू भैया।
2: देखा कितना बढ़िया हम लोगन के मन मनसायन बीरे लाल गुप्त भैया के सुने के मिलल। और
1: हाँ
2: जब गीत गौनाई देखा हो जाला तो हम लोगन के फिर से अपन जौन बैठकी के
1: पंचायती
2: रहला,
1: ये हाँ
2: पंचायती बा बैठकी बा, एकर
1: बिल्कुल
2: देखा एकदम ताजगी बढ़ जाला।
1: हाँ
2: तो ताजगी बढ़ने के साथे साथे देखा हम लोग गांव गिराव में रहीला, हम लोग है किसान और हम लोगन के हर तरह के काम पर ध्यान दिहल जरूरी होखला, काहे कि देखा आमदनी के जरिया बनावे के पड़ेला। अब जैसे देखा हम लोग बाग बगीचा करत है
1: हाँ।
2: या

0: होला।
1: हाँ।
0: और ओकरे साथे साथे बीज के चुनाव करब जरूरी होला। और ओकरे साथे देखा हम लोगन के ऐसन करे के चाहिए जहाँ के पानी के लहान जुहान होखे।
1: हाँ।
0: और पानी के निकास बढ़िया होखे। तो ये सब बात के ध्यान लेकर के हम लोगन के अपन बीज के तरफ ध्यान बढ़ोले के जरिया होखेला। तो यही तरीके से हम लोगन के अपन पौध के नर्सरी के बनावल जाए रोजगार के साधन, तब जाकर के हम लोगन के आमदनी बढ़ी।
1: एकदम सही बात कह दो। और ऐसी जगह का चुनाव भी करें, माने कल गल पौध नर्सरी के लिए भी है, जहाँ पे माने कल गल की लोगन का आना जाना हो और मुख्य सड़क के पास हो है, और ताकि ग्राहक जो की नजर ग्राहक का अपने पौधा जैसे हम अगर ले गए बाजार में बेचेंगे तो उनका नजर पड़े। और साथ में कल गल की अगर शुरुआत में ही माने बांस या लकड़ी या पाली हाउस जैसन माने कम लागत वाली अगर हम लोग माने शुरू कर आपका पौधा वाला, तो मैं निश्चित रूप से जो है कि हम मान के देखा फायदा हुई। और पौधा में सबसे ज्यादा अगर नर्सरी अगर हम लोग लगावल जाए तो फूल के रोजगार में देखा बहुत फायदा हो। जैसे सदाबहार फूल होगल, मौसमी सब्जी होगल, फलदार पौधा होगल, ये सबका मांग देखा बाजार में जो है कि ज्यादा होला। और नर्सरी के जो है कि अच्छा बीज माने अगर है तो वही से जो है कि जब नर्सरी तैयार हुई तो वो जो है कि कल गल कम लागत में कहेगा मतलब मुनाफा ज्यादा।
0: तो यही तरीके से हम लोगन के हर तरह के जैसे साग सब्जी हो गई और जैसे धान गेहूं हो गई, मतलब कोनो तरह के और जैसे बाग बगीचा हो गई, हर तरह के पौधन के नर्सरी में हम लोगन के विशेष ध्यान दिहल जरूरी होला, तब जाकर के हम लोगन के नर्सरी सही हुई। अब जैसे देखला कर किरौना भी लगला, तो कर किरौना खाते भी हम लोगन के अपन जुगाड़ अपनौले के जरूरत होला, जैसे कि पाली हाउस हो गई और नेट हो गई एक जाली हो।
1: हाँ,
0: तो यह तरीके से करे के चाहिए। और सबसे गुड़ बात तो ये होला कि देखा धूप भी मिलब जरूरी होला।
1: एकदम सही बात कहला है।
0: तो यही से अब हम लोगन के आमदनी के जरिया बा। और यही से मिलल जुलल कुछ बात भी ऐसा होला कि हम लोग अपन सफलता के कहानी किस तरीके से करी, जैसे कि साग सब्जी से करी, बाग बगीचा से करी। आज पंच भैया लोगन के बीचे एक दुद्धी ब्लॉक के ब्राइडांड गांव से संगीता देवी जवन कृषि सखी हवन,
1: अच्छा
0: इनकर सफलता के कहानी जानल जाए कि सहजन की व्यवसायिक खेती के तरीके से ही कैले हवन और
1: अच्छा।
0: का ऐसे फायदा बा।
1: हाँ।
0: भोला भैया के बात चितवा तो बिना देर के लिए चला सुनल जाए।
1: चला सुनल जाए।
2: दुद्धी ब्लॉक के ब्राइडांड मलदेवा निवासी श्रीमती संगीता देवी जी से मुलाकात हो रही है। आप इस समय बभनी ब्लॉक के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत IPRP पद पर कार्य कर रही हैं। आपको का कुछ अनुभव है कृषि संबंधी, बागवानी संबंधी, ये सब के बारे में? लगभग हर समय वार्ता होती ही रहती है, लेकिन इस समय गर्मी के मौसम है, गर्मी के बाद तुरंत बरसात के पानी जो ही बरसेगा तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, और उसमें औषधि पौधों की अगर बात की जाए तो एक सहजन होता है, और सहजन कितना उपयोगी है मनुष्य के जीवन के लिए, औषधि के कार्य कैसे करता है, ये सब जानकारी प्राप्त करेंगे संगीता देवी जी से। तो संगीता देवी जी, आपको आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर करके देखा जाता है कि गर्मी में लोग गड्ढा खुदाई करते हैं, गड्ढा खुदाई के बाद पौधों को लगाने का पुरजोर प्रबंध करते हैं, ऐसे में एक सहजन के पौधा भी लगाने की प्रथा लोग अधिक से अधिक गांव में करते हैं, लेकिन अब इसका उपयोगिता कितना है, क्या इसका औषधि से भरपूर है, जड़ तना पत्ती फूल फल सब उपयोगी है, या केवल फल जो हम लोग खाते हैं सब्जी के माध्यम से उसी का उपयोगिता है, तो इसके संदर्भ में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे सहजन के बारे में। तो सहजन कितना उपयोगी है?
3: सभी किसान भाइयों बहनों के मेरे तरफ से नमस्कार। सहजन का खेती बहुत आसान है करना
2: जी,
3: जो कि बहुत सारा रोगों में काम करता है। सहजन का फूल पत्ता और उसका फल को हम यूज कर सकते हैं, खा जी, सकते हैं
2: जी।
3: जैसे हम पत्ते को पाउडर बना करके पत्ते तोड़ लेंगे छायेदार स्थान में सुखा करके,
2: अच्छा अच्छा,
3: और उसको किसी खल में कूट करके उसको हम

0: पैक करके रख सकते हैं, प्रतिदिन खा सकते हैं।
1: अच्छा, इससे क्या
0: और
1: फायदा है?
0: इससे खाने से गर्भवती महिला जैसे
1: हाँ
0: कमजोरी हो जाती है,
1: हाँ
0: तरह तरह के दवा को यूज नहीं कर सकते हैं,
1: जी।
0: लेकिन इसमें बहुत पौष्टिक है,
1: अच्छा, इसका यूज कर
0: विटामिन
1: सकते
0: है,
1: हैं?
0: हाँ इसको
1: जी
0: यूज कर सकते हैं,
1: जी जी
0: जिससे उनको ताकत मिलती रहेगी, शरीर में कमजोरी नहीं होगी, आँख का कमजोरी दूर हो जाता है
1: अच्छा, ये पत्ती खाने से?
0: पत्ती को खाने
1: जी
0: से,
1: जी पत्ती का चूर्ण।
0: हाँ पत्ती का चूर्ण खाने से जोड़ों का दर्द में राहत मिलती है।
1: जी।
0: और जैसे हार्ट का पेशेंट हो, उसको पर डे अगर यूज करे तो ऑपरेशन भी नहीं कराना पड़ेगा,
1: जी
0: उसमें भी बहुत राहत मिलती है। तरह तरह के बहुत बीमारियां में ये फायदा करता है।
1: अच्छा, तो ये सब फूल भी सेवन में आ सकता
0: इसको
1: है?
0: फूल को हम सब्जी बना करके खा सकते हैं, पकौड़ी बना करके खा सकते हैं,
1: जी
0: इसको यूज कर सकते हैं। जैसे फल हो गया तो फल के हम सब्जी बना करके खा सकते हैं,
1: जी
0: और जैसे फल मोटा हो गया तो उसको हम स्टोर करने के लिए उसको तोड़ करके अंदर का बीज और जो उसका गुद्दा है निकाल
1: हाँ
0: करके
1: जी।
0: हम छायेदार स्थान में सुखा करके भी रख सकते हैं,
1: अच्छा, छायादार स्थान में ही सुखाना है,
0: क्योंकि छायादार स्थान में सुखाएंगे तो उसका पौष्टिकता ज्यादा
1: नष्ट नहीं होगा?
0: नहीं नष्ट
1: जी
0: होगा,
1: जी जी जी और धूप
0: या
1: में सुखाने से वो जड़,
0: पौष्टिकता नष्ट हो
1: बिल्कुल
0: जाती है।
1: जी जी जी
0: तो वैसे भी हम रख सकते हैं, या उसको हम कढ़ौरी के रूप में भी बना सकते हैं, दलिया मिला करके।
1: अच्छा,
0: अगर
1: कढ़ौरी आप बनाई भी हैं?
0: हाँ कढ़ौरी हम बनाए भी
1: अब
0: हैं,
1: देख रहे हैं कि जो है कि वो बहुत है, लेकिन हम ये जान रहे थे कि वो भूसा की कढ़ौरी बनाए हैं, तो इसको कैसे इतना अच्छा बनाए हैं आप? क्या क्या मिलाए हैं इसमें जो है कि?
0: इसमें हम जो घर का खाने वाला मसाला होता है,
1: जी
0: धनिया, जीरा मरीच, अदरक
1: जी
0: और लहसुन प्याज, ये सारे चीज को हम उसमें कूट करके और पीस करके
1: अच्छा, खल में कूट दें?
0: हाँ मिला दिए,
1: अच्छा
0: और उड़द का दाल फुला करके बढ़िया से
1: जी।
0: उसको चकरी में पीस करके पूरा मिक्स करके और बना दिए छोटा छोटा।
1: अच्छा, नमक भी उसमें है?
0: नहीं नमक नहीं
1: नमक
0: है,
1: नहीं है?
0: सारा मसाला डाला हुआ है,
1: जी।
0: जैसे कि खाने में स्वाद
1: स्वादिष्ट
0: लगे,
1: लगे।
0: स्वादिष्ट लगे।
1: अच्छा, तो ये पोषक तत्व से भरपूर है ये भी?
0: हाँ ये भी पोषक तत्व से
1: जी
0: भरपूर
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: ये सब बना करके हम रख सकते हैं और कभी भी किसी मौसम में यूज कर सकते
1: यूज
0: हैं,
1: कर सकते हैं।
0: जो कि अगर हम प्रतिदिन उसको खाएंगे तो हमारे अंदर जो तरह तरह की बीमारियां होती है वो नहीं होगी
1: जी।
0: और उससे हम बचे रहेंगे।
1: तो ये मतलब इसका इतना अच्छा लाभ है, उपयोग है, तो क्या ये हर जगह किसी भी जमीन में इसको लगाया जा सकता
0: हाँ
1: है?
0: किसी भी जमीन में लगाया जा सकता है,
1: जी।
0: और इसको लगाने के लिए पौधे को काट करके एक छोटा मोटा सा, और तो वन कहीं भी पानी के स्थान पे लगा सकते हैं, मतलब उसको हर
1: कलमी लग
0: में
1: जाएगा?
0: कलम लग जाएगा
1: जी
0: और ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता भी नहीं है,
1: जी जी जी
0: और हमको फल भी मिल जाएगा, और लगाने के दूसरे वर्ष मतलब फल
1: फलना
0: देना
1: शुरू हो जाएगा?
0: हाँ फलना शुरू हो जाएगा।
1: जी।
0: और हम कहेंगे कि सब भैया दीदी किसान भैया को ये चीज लगाना चाहिए, या अपने छोटा सा ना जगह हो लेकिन
1: हाँ।
0: अपने द्वार पे एक मुनगा का पेड़, सहजन का पेड़, इसको
1: बिल्कुल
0: मोरिंगा भी
1: बिल्कुल
0: बोलते हैं, इसको लगाना चाहिए, उनको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा क्षेत्र भी नहीं लेगा और
1: जी।
0: हमको पौष्टिक सब्जी भी मिल
1: अच्छा,
0: जाएगी।
1: इससे जो है कि बहुत छहल मारने की भी बात नहीं आती है,
0: नहीं
1: जैसे
0: नहीं
1: बहुत किसान लोग कहते हैं कि जो है कि पेड़ लगा दिए और छहल मार दिया तो जो है कि वो हमारा फसल नुकसान हो जाता है,
0: नहीं इसको
1: वैसा भी कुछ
0: मेड़ पर
1: नहीं
0: भी,
1: है?
0: मेड़ पर भी लगा सकते
1: जी
0: हैं,
1: जी जी तो
0: कोई नुकसान नहीं करेगा।
1: अच्छा, किसी को अगर ज़्यादा स्वाद के जो है कि इंटरेस्ट ना हो
0: जी
1: तो ऐसे भी पत्ती थोड़ा मोड़ा खा सकता है,
0: जी खा
1: वो भी
0: सकता
1: फायदेमंद
0: है,
1: है?
0: और इसको हम किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं, दो
1: जी जी
0: चम्मच जैसे इसका पाउडर बना लिए
1: हाँ
0: तो किसी भी सब्जी में मसाला, जैसे हम रोज पर डे यूज करते हैं
1: जी।
0: वैसे हम दो चम्मच सभी सब्जी में डाल करके खा सकते हैं।
1: सबसे महत्वपूर्ण बात जो आप गठिया की बात कर रहे थे, या जो है कि प्रसव पीड़ा हो या तो गर्भवती महिलाएं हो, ये सब में भी जो है कि राहत
0: बहुत
1: पहुंचाता
0: राहत
1: है,
0: पहुंचाता है,
1: तो इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आती
0: नहीं
1: हैं
0: आती है।
1: अब, चूंकि अक्सर करके। अच्छा, ये बहुत लोग खान पान के अभाव में और स्वस्थ मतलब नहीं रहते हैं,
0: जी
1: तो क्या ये उसका भरपाई कर सकता है क्या?
0: जी कर सकता है,
1: जी
0: जो अगर लगातार इसका यूज कर रहा है

0: केवल 2 चम्मच,
1: अच्छा
0: हाँ ज्यादा नहीं कि वो भर पेट इसी को खाए,
1: हाँ
0: केवल
1: हाँ हाँ
0: खाने के साथ 2 चम्मच पर डे यूज कर रहा है प्रतिदिन,
1: जी।
0: उसका एक भरपाई कर सकता है।
1: तो अक्सर करके जाना जाता है कि दूध एक पूर्ण आहार है,
0: जी
1: तो क्या ये दूध के पौष्टिकता में भी इसका कुछ तुलना की जा सकती है?
0: जी
1: हाँ।
0: ये अगर रोज यूज किया जाए तो दूध से भी ज्यादा फायदा करता है।
1: अच्छा, मतलब 1 चम्मच लें और चाहे तो जो है कि पर दिन यूज कर सकते हैं।
0: जी
1: अच्छा, ये खाने में क्या सावधानी, भोजन के बाद या पहले खाना चाहिए जो है कि?
0: अगर अगर खा सकते हैं खाली पेट तो खाएंगे तो ज्यादा फायदा करेगा, लेकिन अगर खाली पेट नहीं खा सकते हैं तो हम भोजन के साथ खा सकते हैं।
1: जी
0: जैसे
1: जी
0: सब्जी बना रहे हैं 2 चम्मच डाल दें, तब भी हमारा फायदा करेगा। अब कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि जूस ही पिए,
1: जी,
0: तो अगर हम खाली पेट पीते हैं तो ज्यादा फायदा करता
1: ज़्यादा
0: है,
1: फायदा करता है
0: लेकिन अगर कड़वा है तो हम नहीं पी सकते हैं, तो
1: जी
0: उसकी किसी भोजन के साथ हम यूज कर सकते हैं।
1: जी जी जी तो रेडियो के माध्यम से अब चूंकि आप ऐसे भी कृषि में जो भी भाग लेते हैं लोग उनका सहयोग करती हैं,
0: जी
1: IPRP हैं आप, इसीलिए प्रशिक्षण देने के लिए हैं भी,
0: जी
1: और चूंकि चलते फिरते तरह तरह के जो फसल हैं उसमें तो जो भी पौष्टिकता है ये है,
0: जी
1: लेकिन वनस्पतियों में जैसे अब आप ही कह रहे हैं, मुनगा कह रहे हैं, बहुत सारे लोग महुआ को भी खाने में, उसमें भी जो है कि पोषक तत्व तो होते हैं, तो ये जो ये मुनगा है
0: जी
1: इसको संरक्षित करने का भी आप विधि विधान बता रही हैं कि इसको
0: जी
1: मैंने रखा जा सकता है, बहुत सारे लोग ऐसे सूख जाता है तो छोड़ देते हैं, तो ऐसे श्रोता लोगों से क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जो है?
0: जी हम सभी किसान भाइयाँ और दीदी से कहना चाहेंगे
1: जी
0: कि ऐसे मुनगा को हर पत्ते या फल हो
1: जी
0: उसको नष्ट ना करें,
1: जी
0: वो उसको किसी भी प्रकार से वो खाएं,
1: जी जी
0: या वो ताजा खाएं
1: जी
0: या सुखा करके खाएं, लेकिन उसको नष्ट ना करें,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि ये बहुत अच्छा ताकतवर पौधा है।
1: जी
0: ये हम अपने जैसे फील्ड में काम करते हैं
1: जी
0: तो वहाँ पे हम मुनगा का पौधा लगवाते हैं, जब बरसात का दिन आता है
1: अच्छा,
0: तो अपने फील्ड में हम अपना इसका मुनगा का पौधा लगवाते हैं और इसका प्रशिक्षण भी देते हैं सभी किसान भैया
1: जी
0: दीदी सो, मतलब अपने NRLM के जितना भी सदस्य रहता है उनको हम इसके बारे में बताते हैं,
1: जी
0: और जैसे अभी सीजन आया तब भी उनको प्रशिक्षण देते हैं कि ऐसे इसको यूज कीजिए, इसको नष्ट मत कीजिए। तो सभी लोग मतलब प्रशिक्षण को सुन जान करके अपना उसको सही,
1: करते हैं और
0: हाँ
1: लाभान्वित
0: करते
1: भी हो
0: हैं,
1: रहे हैं।
0: हाँ लाभान्वित भी हो रहे हैं।
1: तो ये दुधी ब्लॉक के बराईडांड मलदेवा के निवासी श्रीमती संगीता देवी जी हैं जो इस समय बभनी ब्लॉक में हैं, और आप राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत IPRP पद पर कार्य करती हैं, और लगभग लगभग महिलाओं को तो इतना जागरूक करती हैं कि आज सारे लोग जो कुपोषण के शिकार होते थे, बच्चे या महिलाएं, उन लोग में भी ये जानकारी आ गई है कि हम लोग के इर्द गिर्द आसपास में भी तमाम औषधीय पेड़ पौधे हैं, फल फूल हैं, जिसको हम लोग नहीं जान पाते हैं, उसका सही जगह पर सदुपयोग कैसे किया जाए और किस तरीके हम लोग जो है कि इससे अपना स्वास्थ्य लाभ ले सकें, इतना अच्छा जानकारी दे रही थी संगीता देवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जीरा बहन देखा,
1: हाँ,
2: हम
1: हम लोगों के
2: लोगन
1: तरफ से भी धन्यवाद बा काहे कि इतना बढ़िया हम लोगों के जानकारी देलन, सफलता अपन सफलता के कहानी बतौलन सहजन
2: हाँ।
1: के व्यवसाय खेती के बारे में, तो
2: और
1: धन्यवाद।
2: बिल्कुल भैया, सहजन की जहाँ बात हो अगर जानकारी बढ़िया देलन, और साथे साथे देखा ये जानकारी से ये भी गुने की जेके नहीं बा जानकारी की ऐसे कितना फायदा बा ओकरे बारे में, बर बीमारी से हर तरह से माने कर गल कि फूल हो पत्ती हो सहजन हो अगर ओकर हम लोग सेवन करती तो निश्चित रूप से हमारा स्वास्थ्य बढ़िया रही।
1: और ओकरे साथे देखा जे एकर उपयोग करत बा तो करते बा, और
2: हाँ
1: जे भैया लोग नाही करत होन एक
2: हाँ
1: बार एकर उपयोग करके देखन
2: देखें
1: तब तो जा करके एकर गुण
2: बिल्कुल
1: के
2: सही
1: पता
2: बात हो।
1: चले।
2: और आप बता दी पहले से एक डिमांड भी ज्यादा बढ़ गलो बाजारी में, और देखा थी कि अच्छी बिक्री भी होता मुनाफा भी होता, तो देखा जब मुनाफा की बात करा दी ना भगेलू भैया
1: तो
2: तो
1: वही देखा जब मुनाफा के बात जब कही देलू
2: हाँ
1: तो हम लोगन के देखा हर और ये अपन नजरिया दौड़ोले के जरूरत होला,
2: बिल्कुल
1: काहे
2: खेत
1: कि
2: से लेके बाजार तक।
1: हाँ, तो खेत से लेकर के बाजार तक के बात बात देखा तो तोहरे हाथ में
3: कहाँ के बाजार भाव लगल बा, कौन पाती मिलल बा और कौन भैया भेजले हवन, तो तनी फरिया फरिया के बताई दे। तो
4: देखा आज के बाजार भाव आपके भेजले हवन उन्वासी चौहान भैया मधुपुर मंडी से, और ये देखा बा कुंतल में।
3: अच्छा अच्छा।
4: लाल आलू आपका बा 1000 रुपया कुंतल, सफेद आलू बा आपका 800 रुपया कुंतल, टमाटर 1000 बा, हरा मिर्चा 3200 रुपया बा, हरा धनिया आपका 4000 बा, परोरा आपका माने परवल हो 9000 बा, और बोड़ा आपका 1500 है, लहसुन 8000 है, प्याज आपका 1300 है।
3: अच्छा अच्छा।
4: कटहल आपका 1800 है, और लंबा वाला बैगन 1500 है, और गोल वाला बैगन आपका जो है कि वो 3000 बा, और देखा भिंडी के भी माने रेट जो बा की वही बा 3000, और आपके बता दें नेनुआ आपका जो है कि 800 रुपया बा, करेला आपका 1600 रुपया है।
3: अच्छा अच्छा।
4: और पालक आपका जो है कि 2000 बा, चौराई आपका 1500, खीरा 1500, ककड़ी आपका जो है कि 2000 है, तरबूज आपका जो है कि 1800 है, और खरबूजा आपका जो है कि 1600 बा, चुकंदर आपका 2000 है, पपीता आपका 1600 रुपया बा, कच्चा आम जो है वो 2000 बा, पुदीना आपका देखा 3000 बा, और मूली 2000 बा, लौकी आपका जो है कि 2200 है, कोहड़ी 500 है।
3: अच्छा,
4: सूरन 3500 है, और फूल गोभी बा देखा सैकड़ा में आपका 1500 रुपया फूल गोभी बा, पत्ता गोभी आपका 1800, नींबू आपके जो है कि 400 रुपया सैकड़ा, ये आपके मधुपुर के ताजा बाजार भाव।
3: ये मधुपुर के टटका बाजार भाव रहल जो उनके पुनर्वास चौहान भैया भेजले रहलन, तो अब जब हम लोगन के पाती मिली गई जानकारी हो ही गई तो भैया के धन्यवाद दिया जाए, लेकिन देखा खाली खाली नहीं।
4: हाँ।
3: बीरे लाल गुप्त भैया के एक किसानी गीत से भैया के धन्यवाद दिया जाए।
4: चला सुन लीजिए।

0: हीरोइन देखा कितना बढ़िया बीरेलाल गुप्त दुआ के गीत गोने सुने के मिलल कि हम हो बनबे किसनिया किसानी करबे ना तो देखा हर कुछ किसान किसानी पर ही निर्भर बा काहे कि देखा रुपया पैसा कितनो कमा लेवा लेकिन देखा जब तक अनाज नहीं रही तो भैया पेट नहीं भरी ना कुछ अपन शरीर सही रही तो यही बात के साथ हम ये कहल चाहते कि चलत चलाओ तो अपन भैया लोगन से एक यही बात के साथ विदा लेवल जाए कि वोकल फॉर लोकल बात पर बात करत है कि एक देखा एकर मूल रूप से का अर्थ बा देखा हम अपन जरूरत खातिर रोजमर्रा के उत्पादन करी ला और हम लोग ऐसा काम काहे नहीं करे कि अपन देश अपन गांव अपन शहर के कारीगरन
1: बिल्कुल
0: के उद्यमी जोन बनावल जा रहा है ना ओके खरीदी और दूसरे जगह के जैसे विदेशी चीज कुछ आवत बा तो इस सब से हम लोग बची और ऊपर निर्भर न रही है कि ऐसे देखा हम लोगन के कई तरह के लाभ भी होला जैसे देखा अब रोजगार के अवसर मिल जाला अब जैसे देखा हम गांव घर में हम लोगन के बनत बा जैसे रेशम उत्पादन होत बा कपड़ा बनाई के काम होत बा तो अब जब कपड़ा बुनाई हम लोग करब तो वो हमें देखा रोजगार मिल गई और ओके बेच करके दो पैसा
1: की आमदनी भी हो गई
0: और जैसे दोना पत्तल हो गई तो दोना पत्तल भी बनावे के साथ साथ हम लोगन के आमदनी के तो जरिया रहबे करी और घर परिवार के लोगन के एक सीख भी मिल जाए हर लोग काम बटे है तो हर लोगन के काम के साथ ही ना हर लोगन के दो पैसा मिली यही बात के साथ देखा आज पंच भैया लोगन से अब विदा लेवल जाए अब अगली बैठकी में फिर जुटल जाए तो नया नया जानकारी लेकर के आवल जाए तो यही के साथ है और पंच भैया लोगन से ये कहत है कि भैया देखा समय के हिसाब से अपन सब काम कर ले के जरूरत बा तो अब पंच भैया लोगन से विदा ले लिया जाए
1: चला
0: तो सब पंचन के
1: राम
0: राम, राम, राम।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7 बजे हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम लोकगीत। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं वीरेलाल गुप्ता। तो पेश है सबसे पहले इनका गाया ये कहरवा।

श्रोताओं, आकाशवाणी उग्र से सतत आप सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत। कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वीरलाल गुप्ता की गाई ये लाचारी।

श्रोताओं, लोकरंग कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे वीरेलाल गुप्ता की गाई ये लचारी। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से सप्ताह सुन रहे हैं कार्यक्रम लोकगीत, और लीजिए अब सुनिए वीरेलाल गुप्ता का गाया ही ये निर्गुण।

वीरलाल गुप्ता के गाए इस निर्गुण के साथ ही कार्यक्रम लोकगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। शाम के 7:15 हुए हैं। श्रोताओं, खोए हुए व्यक्तियों के विषय में सूचना सुने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार मनोज राम पुत्र जोखन राम निवासी राजकिशन पंप हाउस NCL पानी टंकी के पास थाना शक्तिनगर जनपद सोनभद्र जो दिनांक 3 मार्च 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र लगभग 40 से 45 वर्ष के मध्य, लंबाई 5 फीट 6 इंच, इनका रंग गोरा, चेहरा लंबा, बदन इकहरा है तथा इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। इन्होंने पीली टी शर्ट तथा नीला जीन्स पहना हुआ है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। श्रोताओं, इसी क्रम में एक सूचना और सुने। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सोनमती पत्नी श्रवण कुमार निवासी ग्राम लीला डेवा थाना बीजपुर जनपद सोनभद्र जो दिनांक 20 मार्च 2026 से लापता हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है। उम्र 20 वर्ष, इनकी लंबाई 5 फीट 5 इंच है, इनका रंग सांवला, चेहरा लंबा तथा दाहिने नाक में कील है। इनके बाल काले व भूरे रंग के हैं। इन्होंने गुलाबी रंग का शलवार समीज व दुपट्टा ओढ़ा हुआ है, पैर में काले रंग की चप्पल पहनी हुई है। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। सूचना समाप्त हुई। पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। आइए अब एक नजर डालते हैं हमारी आज की सभा के शेष प्रमुख कार्यक्रमों पर। रात 9:30 पर सुनिएगा दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात 10:30 पर सुनिएगा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन। यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का हम आपके लिए लेकर आएंगे रात 9:15 पर। सबरस यह कार्यक्रम सुनिएगा शाम 7:31 पर। सुगम संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा रात 8:00 और 8:30 पर। फिल्म संगीत कार्यक्रम का समय होगा रात 8:15 पर। रसधारा यह कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 10:00। ये थी रूपरेखा हमारी आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। 7:17 हुए हैं। थोड़ी ही देर में यानी 7:20 पर आप लखनऊ से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 114 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छी सरकार विकास लेकर आती है। ये विकास बिना भेदभाव नागरिकों के जीवन स्तर को उठाने का माध्यम होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी तो सभी ने 12 वर्ष में बदलते भारत को देखा। श्री योगी ने बताया कि आज प्रदेश में 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत व मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मऊ से विभिन्न शहरों की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है।
1: मऊ जनपद आज फिर से एक नई विकास की यात्रा में आगे बढ़ा है। इस विकास यात्रा के 100 यात्री आपके सामने हैं। कोई सोचता था कि गोरखपुर से वाराणसी का मार्ग 4 लेन का होगा? कोई सोचता था कि मऊ से लखनऊ की दूरी अब मात्र 3 घंटे की हो जाएगी? तो यहाँ आपके लिए प्रदेश की राजधानी इतनी नजदीक हो गई, गोरखपुर नजदीक हो गया, काशी नजदीक हो गया, प्रयागराज की दूरी घट गई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी।
0: मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक, चाबी, लैपटॉप, स्वीकृति पत्र आदि देकर सम्मानित किया। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने मऊ के ताजोपुर में ग्रामीण सैनिक हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान दिए गए पंच प्रण का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का सपना गांव के विकास से ही साकार होगा।
1: गांव स्वावलंबी होंगे तो आत्मनिर्भरता की इकाई हम गठित कर पाएंगे। ग्रामीण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को आगे बढ़ने के सामयिक प्रयास है, और यही तो प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने कहा था, विकसित भारत की संकल्पना। भारत विकसित होगा तब जब प्रदेश विकसित होगा, प्रदेश विकसित होगा तब जब जनपद विकसित होगा, और जनपद विकसित तब होगा जब ताजोपुर जैसे गाँव विकसित होंगे।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत माँ का महान सपूत और किसानों का मसीहा बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में कृषि राजस्व के क्षेत्र में तमाम रिफॉर्म का श्रेय उन्हें जाता है। उनका स्पष्ट मत था कि देश के विकास का रास्ता गाँव, खेत व खलिहानों से होकर जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान विकास के एजेंडे और सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए। शासन की योजनाएं किसानों को ध्यान में रखकर तैयार की जानी चाहिए।
1: देश के किसानों के मसीहा थे और उनका स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांव के खेत और खलिहानों से होकर के जाता है, और इसलिए विकास के एजेंडे में किसान होना चाहिए, किसान सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा होना चाहिए, उन्हें ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं तैयार होनी चाहिए।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज देश के सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीने के भीतर उसे सुनाने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि फैसलों में देरी से याचिकाकर्ताओं को अपूर्णीय क्षति हो सकती है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में त्वरित निर्णय की आवश्यकता पर बल दिया। पीठ ने

0: दिन सुनाया और अपलोड किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि जमानत या सजा निलंबन का आदेश सुनाए जाने के तुरंत बाद जेल अधिकारियों को सूचित करना अनिवार्य है। विचाराधीन कैदी को उसी दिन या अधिकतम अगले दिन रिहा किया जाना चाहिए। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि पेपर लीक की घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डीडी न्यूज को दिए एक विशेष साक्षात्कार में श्री प्रधान ने आश्वासन दिया कि पुनर्परीक्षा प्रक्रिया उचित और व्यवस्थित तरीके से बिना किसी त्रुटि के संपन्न की जाएगी।
2: जो घटना हुई है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है, नहीं होनी चाहिए था। अभी दोबारा जब हम लोगों ने री नीट की घोषणा किया है और री नीट सुव्यवस्थित हो जाए, इसमें निर्भुलता के साथ हो, ये अभी हमारा दायित्व है। इस काम पे सभी का सहयोग हम अपेक्षा रखते हैं।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज जनभवन में स्थापित हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई का उद्घाटन और अवलोकन किया। ये इकाई जनभवन गौशाला में गौवंशों को वर्ष भर मानक के अनुरूप पर्याप्त पौष्टिक और रसायन मुक्त हरा चारा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। यह हाइड्रोपोनिक चारा उत्पादन इकाई प्रतिदिन लगभग 100 किलोग्राम हरा चारा उत्पादन करने में सक्षम है। निपुण भारत मिशन के तहत राज्य स्तर पर कार्यरत मिशन के जिला समन्वयक और जिला समन्वयक प्रशिक्षण के लिए 1 और 2 जून को राज्य स्तरीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCERT लखनऊ में आयोजित होने वाले इस प्रशिक्षण में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के जिला समन्वयक प्रतिभाग करेंगे। प्रदेश के विशिष्ट शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार कार्य कर रही है। निपुण भारत मिशन के माध्यम से बच्चों में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान विकसित करने के साथ साथ विद्यालयों में सीखने के परिणामों को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जनपद हमीरपुर के ललपुरा थाना क्षेत्र के मुरान कादर गांव के पास बीती रात बेतवा नदी में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना में श्रमिकों की मौत पर गहरा शोक प्रकट किया है। श्री योगी ने मृतकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए तथा घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में बीती देर रात आए तेज आंधी तूफान, बारिश व आकाशीय बिजली से कई जिलों में भारी नुकसान और जनजीवन प्रभावित हुआ है। सहारनपुर के सिद्धपीठ माता शाकंभरी देवी क्षेत्र में शिवालिक पहाड़ियों में हुई तेज बारिश के बाद अचानक आए पानी के बहाव से कई वाहन बह गए। हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों को तत्काल फील्ड में जाकर सर्वे कर नुकसान का आकलन करने और राहत राशि शीघ्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत और बचाव कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और हर 3 घंटे में स्थिति की अद्यतन रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अयोध्या स्थित श्रीराम मंदिर परिसर में बने मां भगवती के मंदिर के शिखर पर आज ध्वजारोहण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति और साध्वी रितंभरा ने ध्वज को शिखर पर स्थापित किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 में संस्कृति विभाग द्वारा संग्रहालयों की स्थापना, विकास एवं क्यूरेशन कार्य की 17 नवीन परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इन परियोजनाओं के तहत संग्रहालयों की स्थापना, उच्चीकरण, नवीनीकरण, क्यूरेशन आदि के कार्य कराए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ में 392 करोड़ रुपए से अधिक की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में बदली है भारत की तस्वीर। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी उच्च न्यायालयों को फैसले सुरक्षित रखने के 3 महीनों के भीतर आदेश सुनाने का दिया निर्देश। हमीरपुर में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 6 मजदूरों की मौत। मुख्यमंत्री ने हादसे में मारे गए श्रमिकों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने के दिए निर्देश। और प्रदेश में बीती देर रात आए आंधी तूफान से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की जारी की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:30 और इसी के साथ प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम।
4: अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द लिसनर्स ऑफ द इंग्लिश प्रोग्राम। आई एम योर होस्ट शिवा राकेश। इन टुडे
5: 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, 7:31 हुए हैं और पेश है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का ये पहला गाना लीजिए, सुनिए अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाज में फिल्म बेटा से। गीत को लिखा है नक्श लायलपुरी ने और धुन तैयार की है अमर उत्पल ने।

0: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम का ये अगला गाना लीजिए, सुनिए अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में। गीतकार हैं समीर और धुन तैयार की है नदीम श्रवण ने। फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं।

श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस। ये गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में। गीतकार थे समीर और संगीतकार नदीम श्रवण। फिल्म का नाम था दिल है कि मानता नहीं। 102.7 FM पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी ओबरा को। श्रोताओं, जनपद में बढ़ती हुई गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए ये सूचना जनहित में जारी है। हीट वेव यानी लू प्राकृतिक आपदा की तरह खतरनाक हो सकती है। इसके बचाव के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजे फल, हल्का ताजा पौष्टिक भोजन, तरल पेय पदार्थ जैसे दही, छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें। अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। शरीर को ठंडा रखने के लिए बाहर निकलते समय हल्के और ठंडे रंगों के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। धूप चश्मा, टोपी और छाते का

प्रयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर खुद को और परिवार को गर्मी और लू के खतरे से सुरक्षित रखें। याद रहे, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। धन्यवाद। 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है और कार्यक्रम है सबरस। तो लीजिए सुनिए कार्यक्रम का ये अगला गाना, फिल्म कयामत से कयामत तक से। गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याज्ञिक ने, रचना मजरूह सुल्तानपुरी की है, धुन तैयार की है आनंद मिलिंद ने। तो पेश है फिल्म कयामत से कयामत तक का ये गाना।

102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरसी कार्यक्रम सबरस। श्रोताओं, कार्यक्रम का ये अगला गाना लीजिए, सुनिए कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत को लिखा है महबूब ने और धुन तैयार की है इस्माइल दरबार ने। फिल्म का नाम है हम दिल दे चुके सनम।

चांदनी, इस फिल्म में अभी आपने सुना लता मंगेशकर और बाबला मेहता को। गीतकार थे आनंद बख्शी और धुन तैयार की थी शिव हरि ने। इसी के साथ कार्यक्रम सबरस अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात के 8 बजे हैं और डीजे अब सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की ये पहली गजल लीजिए, सुनिए जगजीत सिंह की आवाज में। कलाम गुलजार का है।

जगजीत सिंह की पुरसोज आवाज में अभी आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा कलाम। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की अगली गजल लीजिए, सुनिए गुलाम अली की आवाज में संत दर्शन सिंह का लिखा हुआ।

जगजीत सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे वाजिदा तबस्सुम की लिखी गज़ल। इसी गज़ल के साथ कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है।

102.7 FM पर यह आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का ये पहला गाना लीजिए, सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। रचना आनंद बख्शी की है, धुन तैयार की है आनंद राज आनंद ने और फिल्म का नाम है एक हिंदुस्तानी।

उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में अभी आप सुना फिल्म एक हिंदुस्तानी का गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की थी आनंद राज आनंद ने। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। बढ़ते हुए गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए ये सूचना जनहित में जारी है। हीट वेव यानी लू प्राकृतिक आपदा की तरह खतरनाक हो सकती है। इसके बचाव के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताज़े फल, हल्का ताज़ा पौष्टिक भोजन, तरल पेय पदार्थ जैसे दही, छाछ, नींबू, नारियल पानी आदि का सेवन करें। अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। शरीर को ठंडा रखने के लिए बाहर निकलते समय हल्के और ठंडे रंगों के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। धूप चश्मा, टोपी और छाते का प्रयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर आप खुद को और अपने परिवार को गर्मी और लू के खतरे से सुरक्षित रख सकते हैं। याद रहे, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। धन्यवाद। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं इस समय कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात।
2: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
3: हेलो,
1: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
2: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
1: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
2: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
1: ओनली ऑन AIR ओबरा।
4: एक सौ 2.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, ये कार्यक्रम है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना लीजिए, सुनिए अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है आनंद मिलन ने और फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम।

अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म छुपा रिस्तम रुस्तम का गीत। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

श्रोताओं, रात के 8:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की ये पहली गजल लीजिए, सुनिए।

मिताली सिंह की आवाज में कार्यक्रम की पहली गजल, इसे लिखा है कतील राजस्थानी ने और धुन तैयार की है भूपिंदर सिंह ने। तो पेश है कतील राजस्थानी के लिखी ये खूबसूरत गजल।

मिताली सिंह की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे कतील राजस्थानी की लिखी गजल। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम की ये अगली गजल लीजिए, सुनिए भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में। कलाम इब्राहिम अश्क का है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी ओवरे से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम का ये अगला गजल लीजिए, सुनिए मिताली सिंह की आवाज में। कलाम यास्मीन जयपुरी का है।

मिताली सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे यास्मीन जयपुरी की लिखी गजल। इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 8:44 हुए हैं। 8:45 पर आप दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी समाचार और 8:30 पर दिल्ली से ही रिले अंग्रेजी समाचार सुनेंगे।

0: आंखें की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य छात्रों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में और आईपीएल क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: बीएसएफ की सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और बीएसएफ के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसानों को पर्याप्त बीज उपलब्ध कराने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया गया है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में उन्होंने उर्वरक वितरण में पारदर्शिता, कालाबाजारी की रोकथाम तथा किसानों को उचित आपूर्ति सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सरकार नकली कीटनाशकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है।
2: सबने मिलकर ये तय किया है कि जो घटिया पेस्टिसाइड है वो एक बड़ी समस्या है। बीज भी गुणवत्तापूर्ण मिले और घटिया पेस्टिसाइड, उस पर जितने सैंपल उठाना चाहिए उतने सैंपल उठाएं। राज्यों में है लेकिन उनको परफेक्ट करने का काम करें। NABL प्रमाणित लैब उन राज्यों में हो, उस पर भी व्यापक पैमाने पर चर्चा हुई है। हम लोग इस पर भी नकली के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, व्यापक अभियान चलाया जाए।
0: कृषि मंत्री ने बताया कि देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर 376 करोड़ टन से अधिक हो गया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस का स्तर पर काम कर रहे हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में कहा कि देश में प्रतिदिन 92,000 मीट्रिक टन रसोई गैस का उत्पादन हो रहा है जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और ऊर्जा बचाने की अपील की।
3: सरकार सभी घरों तक LPG सिलेंडर्स की उपलब्धता और डिलीवरी सुनिश्चित कराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसके साथ सरकार सभी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भी प्रयासरत है। इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें और अपने दैनिक उपयोग में ऊर्जा को बचाने का हर संभव प्रयत्न करें। बल्क और इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स से अपील है कि वो ऑथराइज्ड प्रोक्योरमेंट चैनल से ही डीजल की खरीद करें।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ वाणिज्यिक पोत निसोस केरोस होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित निकल गया है और 3 जून तक इसके विशाखापट्टनम पहुंचने की आशा है। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग लाइंग कल 5 दिन की भारत यात्रा पर आ रहे हैं। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमा के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय वार्ता में आपसी संबंधों को प्रगाढ़ करने पर चर्चा होगी। भारत और अमरीका के बीच व्यापार वार्ता पर उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह अमरीका के व्यापारिक दल के भारत आने की उम्मीद है। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए गठित कार्य समिति की हाल की बैठक पर श्री जायसवाल ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही। दोनों पक्षों ने परिसीमन, सीमा प्रबंधन, कार्यतंत्र निर्माण और सीमा सहयोग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेशी घुसपैठियों पर श्री जायसवाल ने कहा कि भारत में रहे जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। DD न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया।
3: छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि जो गलती हुई है हमारी ट्रस्ट को ब्रिज किया गया है, जो रक्षक था वही भक्षक हुआ, जो शिक्षक को हमने जिम्मेवारी दिया था क्वेश्चन बनाने के लिए उन्होंने ही कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उन्हीं के कारण ये अव्यवस्था शुरू हुई है। हमने एक कठोर निर्णय किया कि हमने एक भी सही विद्यार्थी के हक को परीक्षा माफियाओं के हाथ में सौंपना नहीं चाहते थे, उनके षड्यंत्र की शिकार नहीं होना चाहते थे। हम बच्चों की मानसिक स्थिति को सम्मान करते हैं, उनको संभालना चाहते हैं और हमको एक एरर फ्री एग्जामिनेशन देने का पूरा हमारी प्रयास।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनः मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। छठे राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण में बताया गया है कि भारत ने मातृ और शिशु स्वास्थ्य, पोषण तथा वित्तीय सुरक्षा क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। 95.9% गर्भवती महिलाओं को प्रसव पूर्व देखभाल मिली है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में जांच कराने वाली महिलाओं की संख्या 70% से बढ़कर 76.2% हो गई है। भारत की कुल प्रजनन दर 2 बनी हुई है। 12 से 23 माह के 96% से अधिक बच्चों को जरूरी टीके लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कोचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कोचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट इस वर्ष मार्च के अंत तक 20.6% की वृद्धि के साथ 91,97,000 करोड़ रुपए हो गई। रिजर्व बैंक की आज जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ये बढ़ोतरी घरेलू निवेश तथा स्वर्ण और विदेशी निवेश में वृद्धि के कारण हुई है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है अमित गोयल।
2: घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 1.5% की गिरावट दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 1092 अंक के नुकसान से 74,776 के स्तर पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 359 अंक की गिरावट से 23,548 के स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 70 पैसे की मजबूती से 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
1: मौसम विभाग ने कहा है कि देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण गर्मी में कमी आई है और कल से मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में भी गर्मी कम होने की संभावना है। आज से 31 मई तक देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में ओलावृष्टि और आंधी तूफान की संभावना है। राजस्थान में भी धूल भरी आंधी की आशंका है। पाकिस्तान अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को लेकर लगातार आलोचना का सामना कर रहा है। मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने खैबर पख्तूनख्वा सूबे की राजधानी पेशावर से पश्तून तहफूज मूवमेंट PTM के कार्यकर्ता फरीदुल्ला अफरीदी को कथित रूप से जबरन अगवा किए जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी ने पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स डबल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सात्विक और चिराग ने मलेशिया के कांग खई शिंग और आरोन ताई को हराया। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान ने 15वें ओवर में 5 विकेट पर 137 रन बना लिए हैं। मैच की विजेता टीम रविवार को अहमदाबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रौद्योगिकी और नागरिक भागीदारी सहित 4 स्तरीय सुरक्षा उपायों के साथ सीमा प्रबंधन में बड़े बदलाव की घोषणा की। कहा, अवैध प्रवासन पर अंकुश देश की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण। सरकार ने किसानों को बीज उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,74,000 क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार स्थापित किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई और योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स तथा ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में और IPL क्रिकेट में दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटन्स तथा राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Home Minister Amit Shah announces major shift in border management leveraging technology and four-layered security involving citizens, says eradicating illegal immigration is vital to protect nation's demography. Government establishes national seed reserve of 1,74,000 quintals to ensure seed availability to farmers. Education Minister Dharmendra Pradhan assures strict action against examination mafias and protection for deserving students. Indian shuttlers Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty enter men's doubles semi-final of Singapore Open Badminton. Mixed doubles duo Dhruv Kapila and Tanisha Krasto also advanced to semi-final. And in IPL cricket, crucial qualifier 2 match underway between Gujarat Titans and Rajasthan Royals in New Chandigarh.

102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 9:15 हुए हैं और हम हाजिर हैं आपके साथ आपके अपने खूबसूरत और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम यादों के झरोकों से सफर 90 वर्ष का लेकर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे आपके साथ आपके रेडियो सेट पर आपके रेडियो के ही बारे में और साथ ही सुनवाएंगे आपको बेहतरीन गाने। दोस्तों, वायरलेस कम्युनिकेशन यानी बेतार संचार से लेकर आज के आधुनिक डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग तक का एक रोमांचक इतिहास है। यह आविष्कार थॉमस एडिसन और गुग्लिएल्मो मार्कोनी के दौर से शुरू होकर आज के एफएम और पॉडकास्ट तक पहुंच चुका है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में रेडियो की यह यात्रा बेहद दिलचस्प और गौरवपूर्ण रही है। रेडियो के बारे में बातें अभी और भी होंगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: पापा कॉलेज की फीस ज्यादा है।
1: बेटा
2: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
1: दो साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
3: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने।
3: खाता हुआ एक्टिव,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: गाइए गुनगुनाइए कहिए हमसे दिल की बात,
7: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
8: हेलो,
6: फिर क्या फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
7: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए,
6: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
7: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
6: ओनली ऑन AIR ओबरा।
9: श्रोताओं, जनपद में बढ़ती हुई गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए ये सूचना जनहित में जारी है। हीट वेव यानी लू प्राकृतिक आपदा की तरह खतरनाक हो सकती है, इसके बचाव के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, ताजे फल, हल्का ताजा पौष्टिक भोजन, तरल पेय पदार्थ जैसे दही, छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें। अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें शरीर को ठंडा रखने के लिए। बाहर निकलते समय हल्के और ठंडे रंगों के सूती वस्त्रों का प्रयोग करें। धूप चश्मा, टोपी और छाते का प्रयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर खुद को और परिवार को गर्मी और लू के खतरे से सुरक्षित रखें। याद रहे, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। धन्यवाद।

दोस्तों, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई। रेडियो जनसंचार का एक सबसे सस्ता और सुलभ साधन है। यह बिना इंटरनेट और बिजली के भी दूर दराज के क्षेत्रों तक सूचना, शिक्षा और मनोरंजन पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। संकट के समय और आपातकालीन स्थितियों में रेडियो लोगों को जोड़े रखने का सबसे सशक्त माध्यम है। रेडियो ने शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रेडियो के माध्यम से किसानों के लिए कृषि संबंधी कार्यक्रम, स्वास्थ्य, विज्ञान और शिक्षा से जुड़े ज्ञानवर्धक शो प्रसारित किए जाते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होता है। इसके साथ साथ यह मनोरंजन का सशक्त माध्यम भी है। रेडियो पर विभिन्न भाषाओं में संगीत, नाटक और हास्य कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जो हर उम्र के लोगों का मनोरंजन करते हैं। साथ ही रेडियो के माध्यम से देश दुनिया की सटीक और त्वरित खबरें तुरंत प्राप्त की जा सकती हैं। भूकंप, बाढ़ या तूफान जैसी आपदाओं के समय जब मोबाइल टावर और बिजली गुल हो जाती है, तब रेडियो ही एकमात्र ऐसा साधन है जो लोगों को आपात

तो श्रोताओं, रेडियो से संबंधित तमाम जानकारियों और प्यारे प्यारे गीतों के साथ ही हम अपना कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का भी यहीं समेटते हैं। तो दीजिए यह कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति। एक सौ 2.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 9:29 हुए हैं। 9:30 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अनुप्रसारित कार्यक्रम करंट अफेयर्स।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने सुना राजेंद्र कृष्ण का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था मदन मोहन ने और फिल्म का नाम था जहांआरा। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। श्रोताओं, जनपद में बढ़ती हुई गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए ये सूचना जनहित में जारी है। हीट वेव यानी लू प्राकृतिक आपदा की तरह खतरनाक हो सकती है। इसके बचाव के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ताजे फल, हल्का ताजा पौष्टिक भोजन, तरल पेय पदार्थ जैसे दही, छाछ, नींबू पानी और नारियल पानी का सेवन करें। अधिक आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें। शरीर को ठंडा रखने के लिए बाहर निकलते समय हल्के और ठंडे रंगों के सूती वस्त्रों का प्रयोग ही करें। धूप चश्मा, टोपी और छाते का प्रयोग करें। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। छोटी छोटी सावधानियां बरतकर खुद को और परिवार को गर्मी और लू के खतरे से सुरक्षित रखें। याद रहे, आपकी जागरूकता ही आपका बचाव है। धन्यवाद। 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का ये अगला गीत लीजिए, सुनिए। गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में कमाल अमरोही का लिखा हुआ गीत को गाया है लता मंगेशकर ने और फिल्म का नाम है पाकीज़ा।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे कमाल अमरोही का लिखा गीत खयाम के बनाए संगीत निर्देशन में। फिल्म का नाम था शंकर हुसैन। श्रोताओं, आकाशवाणी ओबरा से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। कार्यक्रम का ये अगला गाना लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म तीसरी कसम से। रचना है हसरत जयपुरी की, तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने सुना हसरत जयपुरी का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने और फिल्म का नाम था तीसरी कसम। इस फिल्म के साथ ही कार्यक्रम रसधारा अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इसके अंतर्गत लीजिए सुनिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग मियां की मल्हार पर आधारित बांसुरी वादन।

शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का राग मियां के मल्हार पर आधारित बांसुरी वादन। इसी के साथ कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात के 10:59 हुए हैं। 11 बजे आप दिल्ली से अनुप्रसारित हिंदी समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सीमाओं को सुरक्षित करना और अवैध प्रवासन पर अंकुश लगाना राष्ट्र की जनसांख्यिकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। गुजरात के भुज में भारत पाकिस्तान सीमा पर महत्वपूर्ण G7 और G13 सीमा चौकियों के उद्घाटन के बाद गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार लीक प्रूफ सुरक्षा ग्रिड स्थापित करने के लिए ड्रोन, रडार और आधुनिक बाढ़ सहित अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रही है। उन्होंने नई सुरक्षा ग्रिड के साथ सीमा प्रबंधन में बदलाव की घोषणा की।
1: BSF के सीमा सुरक्षा के कंसेप्ट को पूर्णतया बदलने का निर्णय किया है। एक चतुष्कोणीय कंसेप्ट के साथ एक सुरक्षा ग्रिड हम आने वाले दिनों में बनाएंगे और बॉर्डर सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा का एक नया कंसेप्ट भी लॉन्च करेंगे और BSF के जवानों की तो प्रमुख जिम्मेदारी रहेगी ही रहेगी। ये मिलाकर समग्र बॉर्डर बांग्लादेश और पाकिस्तान की सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाने का काम हम स्मार्ट बॉर्डर सुरक्षा के प्रोजेक्ट के तहत हम ले रहे हैं।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में परीक्षा माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI इस मामले की पूरी जांच करे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में श्री प्रधान ने योग्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का आश्वासन दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले में चूक की जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। न्यायालय की पीठ आज इस मामले में दायर याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। इनमें एक याचिका में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA के पुनर्गठन या इसे हटाने का निर्देश देने और इसके स्थान पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए एक सशक्त और स्वायत्त निकाय के गठन की मांग की गई थी। पीठ ने केंद्र से हलफनामा दायर करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होगी। दिल्ली में 21 जून को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के लिए परीक्षार्थी DTC की बसों में निशुल्क यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस सुविधा का लाभ लेने के लिए परीक्षार्थियों को केवल अपना वैध नीट प्रवेश पत्र दिखाना होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल सोमवार 1 जून से शुरू हो जाएगा। उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए ये पोर्टल शुरू किया जा रहा है। इससे मूल्यांकन का सर्वोच्च मानदंड स्थापित होगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में घुसपैठ और इसके कारण जनसांख्यिकी बदलाव की आशंका व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार घुसपैठ के मुद्दे पर कोई कार्रवाई करने में नाकाम रही। यही कारण था कि तृणमूल प्रशासन ने केंद्र से समय से निर्देश मिलने के बावजूद जनगणना कार्य की शुरुआत नहीं की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC ने आज नई दिल्ली परिसर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एकेडमी की शुरुआत की। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव चंचल कुमार ने कहा कि इस अकादमी की शुरुआत से संस्थान पारंपरिक मीडिया शिक्षा से आगे बढ़कर भविष्य की मीडिया तकनीकों पर काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि AI की जानकारी केवल बड़े शहरों के न्यूज रूम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए बल्कि पूरे भारत के मीडिया क्षेत्र तक पहुंचनी चाहिए। वाइस एडमिरल अजय कुचर ने आज 48वें नौसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। पुणे में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र वाइस एडमिरल अजय कुचर ने जुलाई 1988 में भारतीय नौसेना में कमीशन प्राप्त किया था। न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के दूसरे क्वालिफायर में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी रहा। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने गुजरात को निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 215 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में ताजा समाचार मिले तक गुजरात ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बनाए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: 102.7 FM पर ये आकाशवाणी का ओबरा केंद्र है। रात के 11:05 हुए हैं। संपन्न होती है हमारी आज की सभा। कल प्रातः 5:59 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। जय हिंद।